यार गुरु ब्राह्मण की ओ हम चढ़ पे आ गए।

नानक तग न टुटई जे तक होवे जोर।

पर कूब बोल कर आहार संतन का डेरा दूर नानक कूर रहया परपूर मथे टिका पेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जब तक आसाई नील बस्त पर वह प्रलाप।

ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਈਏ ਪੌੜੀ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिं खां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, विचूड़ कुझु निकिता आहे। थोरी देरि में तव्हां हमेशा भगत कलाम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो। अॼु अवां कलाम गीत ऐं कुझु भॼन ॿुधंदा। न्यूज़ हेडलाइंस प्रोग्राम जे आख़िर में ब्रॉडकास्ट कयूं आहिनि। या त असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधंदा, या छो त भगत कलाम साहब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: कलाम आगाज़ करियूं आबिदा परवीन जी आवाज़ सां।

तो आकाशवाणी की सिंधी सर्विस विरहिंग पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। भारत बराबरी वारे आलमी नक्शे जे यूएन रिज़ोल्यूशन जी हिमायत कई आहे ऐं चयो आहे त भारत जे ख़ुदमुख़्तियार इलाइक़े खे ॾेखारणु घुर्जे, बराबरि नमूने ॾेखारणु घुर्जे, तंहिंमें जम्मू ऐं कश्मीर ऐं लद्दाख इलाइक़ा पाण साफ़ साफ़ ऐं सही नमूने सां ॾेखारियल हुअणु घुर्जनि। ईरान ऐं अमरीका मंझि छिकताण इलाइक़े में फौजी जहिड़े सबब अञा वधीक वधी वई आहे। बलूचिस्तान जे ज़हरी तहसील में कर्फ्यू खे वधीक वक़्त लाइ वधायो आहे। हुन ते फौजी कार्रवाई हली रही आहे। इन खां अलावा पाकिस्तानी सलामती फौजियुनि पारां माण्हुनि खे रोके पियो वञे ऐं हवाई हमला पिण कया पिया वञनि। इंडोनेशिया में वॉल्केनिक इरप्शन सबब 1,00,000 खां बि वधीक मुसाफ़िर फासी पिया आहिनि, छो घणनि हवाई अॾनि ते उड़ाननि जूं कार्रवाइयूं मुकमल कयूं वयूं आहिनि। ऐं बैडमिंटन में भारतीय मेंस डबल जोड़ी सत्विक साई राज ऐं सत्विक साई रनी रेड्डी ऐं चिराग शेट्टी शेनज़ेन में चाइना मास्टर्स में ख़िताब हासिल कयो आहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तथा जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारतीय प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही। इससे

0: इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। ये इमारत पेइंग गेस्ट आवास के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत ढहने के समय उसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वे संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉ मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। भारत ने एएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 7 years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषाम, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविध को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता हैज ऑर्डर्ड अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनटू द बिल्डिंग कोलैप्स इंसिडेंट इन सत्यनिकेतन एरिया ऑफ न्यू दिल्ली एंड डायरेक्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR अगेंस्ट द बिल्डिंग ओनर। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस सेड द डिसीजन वाज टेकन फॉलोइंग एन ऑन साइट रिव्यू एंड अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द इंसिडेंट। The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, fire service, Delhi police and other agencies are working at the site to clear the debris. यह हम

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंडो प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हो चुके हैं। समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग आपकी मॉर्निंग को गुड करने के लिए आज आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट मनीषा बोस। और दोस्तों सुबह हम सभी के जीवन में आती हैं और इन सुबहों में बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते हैं और उनमें से एक ख्याल जो हमेशा हमें उम्मीद से जोड़ जाता है वो होता है जो बीत गया वो सपना था लेकिन जो आज है वो हमारा अपना है। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी उन्होंने भी एक बात कही थी कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और वो सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उन्हें जागते हुए पूरा करने का

प्रयास करते हैं। इसलिए सुबह का समय हमारे जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, जब हम पूरे दिन भर की योजना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का साथ और उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। और हमारी बस यही दुआ है कि ये प्रार्थनाएं आपके साथ सदा बनी रहें। तो चलिए एक प्रार्थना आपके लिए

सच में ईश्वर की पनाह के साथ हम जीवन के उन मूल्यों को सीखते हैं और अपने जीवन में सार्थकता की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो सुबह सुबह की हमारी जो मॉर्निंग है यानी गीतों भरी जो गुड मॉर्निंग है वो और भी खुशनुमा हो जाती है। और चूंकि यही एक वो समय होता है दोस्तों जो सुबह का हमें हमारी जिंदगी में पूरे दिन भर के लिए एक आईने की तरह काम करता है। हम इस समय जो सोचते हैं जैसा सोचते हैं वैसा ही लगभग हमारा पूरा दिन का कलेवर बन जाता है। तो हम चाहते हैं आपका दिन खुशनुमा हो, सफलता से भरा हुआ हो और आप हमारे साथ जुड़कर ऐसे ही खुशियों का और उत्साह का अनुभव करते रहें। तो चलिए प्रकृति की इस छटा को हम एक और गीत उनको समर्पित करते हैं जो प्रकृति के आसपास रहकर अपने जीवन को बहुत खुशियों से भर रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, हमारे जो प्रकृति है वो हमें ऐसा संदेश ही तो देती है, प्यार से भरा हुआ मिलजुल कर रहने का, जीवन की खुशियों को एक साथ समेट कर जीने का। और प्रकृति की इन्हीं नायाब बातों के साथ, इन्हीं संदेशों के साथ हम अपने आज की जो सुबह है, अपनी आज की सुबह को तरोताजा करने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। और आपसे एक

सवाल है, आप बताइए, आप रोज सुबह उठकर कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं? क्या मोबाइल के साथ आपके दिन की शुरुआत होती है, या फिर खुशनुमा प्रकृति के नजारों को देखकर? और मुझे यकीन है, यदि आप प्रकृति के नजारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो फिर सुबह उठते ही आप एक ग्लास गुनगुना पानी पीते होंगे और फिर जमीन को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत के लिए आगे बढ़ते होंगे। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आशाओं से भर जाते हैं और आपका पूरा दिन आशा से भरा रहे, इसके लिए एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ।

0: जी तो वेरी गुड मॉर्निंग में मनीषा के साथ आप अपने आज के दिन को सुरीला बना रहे हैं और गीतो भरी गुड मॉर्निंग में हम आपको बताते हैं कि विज्ञान भी कहता है कि जो सुबह सुबह हमारा मन होता है वो एक कोरे पन्ने की तरह होता है। हम जैसा भाव उसमें उस समय रख लेते हैं, सोच लेते हैं, वैसा ही हमारा पूरा दिन बन जाता है। तो आपके दिन को सुरीला बनाने की कोशिश है हमारी और इसीलिए हम ये करते हैं प्रयास आपके लिए।
1: उठ सबके कदम देखो रंग पम पम

गीतों भरी गुड मॉर्निंग मनीषा के साथ हैं आप। आज आपके गीतों को, आपके गीतों के साथ आपके इस दिन को सुरीला बनाने के लिए, तो सुबह सुबह आपको याद दिलाना है कि जिंदगी बहुत खास है। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना, उलझना नहीं है किसी परेशानी में, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। लेकिन पॉजिटिविटी का मतलब सिर्फ हंसना नहीं, बल्कि ये भी समझना है कि जो है वो आज है और इसे आज ही जीना है। तो चलते चलते गीतों भरी गुड मॉर्निंग में ये एक गीत आपके लिए, जो आपके पूरे दिन को बना जाएगा।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट

0: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार है, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
1: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of

0: humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
2: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
3: देश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध हैं।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट। इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
4: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 01123310481, 01123717171 और 01123314444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद सर फिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिन्दुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवम्बर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Then Chief Minister Rekha Gupta orders ministerial inquiry into Satyaniketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Indian Home Minister Amit Shah to chair 28th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 7 years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with more momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
8: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
7: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing science.

0: a report.
1: The decisions come after OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting comes against the backdrop of continuing disruption to oil exports, including those linked to the conflict involving Iran and disruptions around Strait of Hormuz. These disruptions have limited the impact of OPEC Plus production decisions on global oil supplies and price. It is worth noting that the UAE had left the alliance in May this year, citing national interest and commitment to contributing effectively to meeting the market's pressing needs. OPEC Plus is expected to meet again in October to review market conditions and production levels. Ishani, Akashwani News.
0: Iran's top security official has announced that a new restricted zone will be declared outside the Strait of Hormuz in the coming days, and that any vessel entering the area without coordination with them will be placed on an Iranian sanctions list. Major General Mohsen Rezai, Secretary of the Supreme National Security Council, SNSC, said that the zone will begin from the U.S. Navy's blockade line and extend into parts of the Persian Gulf. Ships that move towards the strait from either side and enter this area will face sanctions, the Iranian state media reported. The royal procession of Lord Mahakaleshwar in Ujjain will be broadcast live on Akashvani today. Akashvani Ujjain will broadcast the procession continuously from 2 p.m. to 10 p.m. The broadcast will be available on all Akashvani stations in Madhya Pradesh. Devotees can also listen to the broadcast on FM 102.5 MHz and the news on AIR mobile app. The broadcast will cover the full route of the procession, important stops, religious rituals and the devotion of the devotees. This special coverage has been nominated for the World Book of Records and the Limca Book of Records. In today's final royal procession, Lord Mahakal will appear in seven different forms for devotees. The flood situation in Bihar remains serious, with the Ganga and several other rivers flowing above the danger mark. However, there is some relief from the Son River. Discharge from the Indrapuri barrage has dropped sharply from 5.54 lakh cusecs on Wednesday to 1.96 lakh cusecs by Sunday afternoon. As the Son joins the Ganga near Patna, the reduced discharge has eased pressure at Digha and Gandhi Ghat. Flood waters are now slowly receding and the situation is expected to improve further. Relief and rescue operations continue in the affected areas, with NDRF and SDRF teams and government boats deployed for assistance. India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of northeast India for today. Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, Karnataka and Tamil Nadu today. In football, India qualified for the AFC Under-20 Asian Cup main tournament for the first time in 20 years after a 3-0 win over Bangladesh in the final qualifying match in Tashkent yesterday. In the final Group B qualifier, Danny Methei Leshram opened the scoring in the 25th minute before Vishal Yadav doubled India's lead with an acrobatic finish on the hour mark. Substitute Mohammad Arbash made it 3-0 in the 79th minute. The victory, India's second in the qualifiers, took them to 6 points from 3 matches. India then waited for the result of the Syria-Uzbekistan match. Uzbekistan's 3-0 win over Syria confirmed India's qualification as one of the 7 best runners-up across the 8 groups. India last featured in the AFC Under-20 Asian Cup in 2006. In badminton, Indian pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title at the China Masters in Shenzhen. The Indian duo defeated China's Hu Ziting and Run Xiang Wu 11-21, 21-13, 21-17 in the summit clash yesterday to secure India's first ever title at the China Masters. The victory marks the duo's second title of the season. They had earlier won the Singapore Open Super 750 and finished runners-up at the Thailand Open Super 500. Sattvik and Chirag booked their place in the final after defeating Malaysia's Nur Muhammad Azrin Ayub and Tan Wee Kyong 21-15, 18-21, 21-11 in the semifinals. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on Lok Adalat, quick, affordable and accessible justice. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481, 011-2371-7117 from 9:30 p.m. onwards tonight. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
2: Thank you, Abhishek. Israel says it will not be privatized, nor its importance be diminished, reports The Pioneer. The Asian Age quoting Union Home Minister Amit Shah says drug-free India by 2029 roadmap is ready. The Tribune quotes Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS Chief Mohan Bhagwat as saying, love, not hatred, drives RSS work. 135 films, 40 countries, JNK hosts first international film festival from today, informs the Economic Times, adding, prominent Bollywood personalities expected to attend 4-day event. Schools in Delhi to remain closed on Friday for BRICS summit, states the Times of India. And finally, the Statesman quoting Brazilian football legend and 2002 FIFA World Cup winning captain Cafu as saying, need to promote football alongside education from school level. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Then Chief Minister Richa Gupta orders magisterial inquiry into Satyaniketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Home Minister Amit Shah to chair 28th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC Plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for the AFC Under-20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की खास अहमियत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने सत्यनिकेतन इमारत इंहदाम हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसरो ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात का मकसद एक वसी तर मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निजाम तश्कील देना है और इसे इको निजाम की वसत और सलाहियत में इजाफे के तौर पर देखा जाए न कि निजकारी के जरिए से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई बरसों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सदर मैखों के साथ मिलकर दोनों ममालिक एक खसूसी आलमी दिफाई शराकत दारी की तामीर कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेरिस में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के इफ्तिताह के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत AI और दिफा से लेकर खला और आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई तक दोनों ममालिक मिलकर एक नई रफ्तार और नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ये साल इख्तरा के भारत फ्रांस साल के तौर पर मना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की एक खसूसी नौइयत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है।
4: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
3: उन्होंने कहा कि तारीख फ्रांस में भारतीय सिपाहियों की कुर्बानियों की गवाह है, एक ऐसी तारीख जो इज्तिमाई यादों और जज्बात में पिन्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि जो लोग जबानों में दिलचस्पी रखते हैं वो ये भी जानते हैं कि फ्रांसीसी दानिश्वरों ने संस्कृत को फरोग देने और मकबूल आम करने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अजीमुशान बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर की शक्ल में भारत फ्रांस गहरे सकाफती ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा किया जा रहा है।
4: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषा, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
3: वजीर आजम ने कहा कि आजकल भारत फ्रांस मुश्तरका प्रोजेक्टों के इम्कानात पर काफी बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस इम्कान में भी एक नए पहलू का इजाफा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर मेड इन इंडिया है जबकि इसे फ्रांस में तामीर किया गया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत मुनदम होने के वाकये की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच का हुक्म दिया है और इस इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत जारी की है। वजीर आला के दफ्तर ने बताया कि यह फैसला जाए हादसे के जायजे और इस वाकये की इब्तदाई जांच के बाद किया गया है। वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि इस अलमनाक वाकये के जिम्मेदार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल रात जाए हादसा से एक और लाश निकाले जाने के बाद इस वाकये में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। एनडीआरएफ, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और दीगर एजेंसियां तलाश और बचाव की कार्रवाई में मसरूफ हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता से बात की। जनाब शाह ने बताया कि जख्मियों को तमाम जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने जाए हादसा का मुआयना किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इस इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम जारी था। इस अलमनाक वाकये के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने कयासाराइयों और गुमराहकुन मालूमात पर मबनी मीडिया में गर्दिश करने वाली इन खबरों पर वजाहत जारी की है कि इसरो को प्राइवेट करने या इसके रोल को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो इसे प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और न ही इसकी अहमियत को किसी तरह कम किया जाएगा। तंजीम ने यह भी कहा कि खला में प्राइवेट शोबे की शराकत का मकसद यह है कि इसरो भारत के खलाई प्रोग्राम के अगले दौर में पुख्ता टेक्नोलॉजीज और सलाहियतों में इजाफा करने के साथ साथ अपनी सरगर्मियों को मजबूत तर बनाने पर तवज्जो मरकूज करे। इसरो ने कहा कि खलाई शोबे की असलाहत का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निजाम तश्कील देना है। इसरो ने कहा कि भारतीय सनत अपनी पुख्ता सरगर्मियों में इजाफा कर सकती है, इससे बड़े पैमाने पर पैदावार तिजारती अंदाज इख्तियार करने, इख्तरा और आलमी मार्केट तक रसाई की जा सकेगी और इसरो की साइंसी और तकनीकी अफरादी कुव्वत, जदीद तरीन तहकीक, अगले दौर की टेक्नोलॉजीज और पेचीदा कौमी मिशनों पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा की राजधानी पनाजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का इनेकाद उमूर दाखिला की वजारत के बैन रियासती काउंसिल का सेक्रेटरिएट करेगा और इसकी मेजबानी गोवा सरकार करेगी। मगरबी जोनल काउंसिल गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, नीज मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली, नीज दमन और दीव पर मुश्तमल है। तफसील हमारे नामानिगार से।
5: इस मीटिंग में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के वज़ीर आला और सीनियर वज़रा शिरकत करेंगे। दादरा और नगर हवेली मेज दमन व दीव के नुमाइंदे भी इसमें हिस्सा लेंगे। मीटिंग में ऐसे मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा जिनके हल के लिए रियासतों के दरमियान या मरकज रियासतों के दरमियान बेहतर तालमेल जरूरी है। काउंसिल के इस प्लेटफॉर्म से बाहमी तालमेल में इजाफा करने और मुश्तरक मफादात के मामलात पर यकजा होकर आगे बढ़ने का मौका फराहम होता है। मीटिंग में मरकज और रियासतों के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को पर्चा

0: लौटा करेंगे। पणजी से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता करेंगे। आज रियासत के उनके दौरे का आखिरी दिन है। हुसैन अबी की यह तकरीब रियासती पुलिस फोर्स के लिए एक फखरिया लम्हा होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ये तकरीब तराई गांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद की जाएगी। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर या राष्ट्रपति का निशान पुलिस फोर्स को दिए जाने वाले आला तरीन एजाजात में शामिल है। गोवा पुलिस के लिए ये एजाज खुद को वक्फ कर देने वाली खिदमात, उसमें पसंदी और रियासत के आवाम के तहत साबित कदमी का एतराफ है। इस तकरीब से पहले जनाब अमित शाह मगरबी जोनल काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें इलाकाई अहमियत के मामलों पर बातचीत की जाएगी। निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ओपेक प्लस के सात असल ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान में कल वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसका मकसद आलमी मार्केट में तालमेल और मजमू हालात का जायजा लेना था। उन्होंने आलमी गैर यकीनी सूरतहाल के दौरान अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार से मुतालिक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। तो पेश है एक रिपोर्ट।
0: ये फैसला ओपेक प्लस की तरफ से तेल की पैदावार में सितंबर के महीने में तकरीबन 188,000 बैरल रोजाना के इजाफे के बाद किया गया है। यह इजाफा तेल की पैदावार में तकरीबन 10,65,000 बैरल रोजाना की रजाकाराना कटौती के अमल को पूरा करने के बाद किया गया है। अमल का यह सिलसिला 2023 में शुरू हो गया था। यह मीटिंग ईरान और आगनाए हुरमुस के आसपास तनाजे में मुलविस मुल्कों समेत तेल बरामदात में लगातार रखना अंदाजी के पस मंजर में मुलाकात की गई है। इस रुकावट की वजह से आलमी तेल सप्लाई और तेल की कीमतों से मुतालिक ओपेक प्लस की पैदावार के फैसलों पर महदूद तौर पर असर पड़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस साल मई में इत्तेहाद से अलग हो गया था। उसने कहा था कि वो कौमी मफाद और मार्केट की अशद जरूरतों को पूरा करने के लिए मौसर तौर पर तआवुन का पाबंद है। उम्मीद है कि ओपेक प्लस की मीटिंग मार्केट के हालात और पैदावार की सतह का जायजा लेने के लिए अक्टूबर में मुलाकात होगी। ईशानी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: ईरान के सरकर्दा अफसर ने ऐलान किया है कि आइंदा दिनों में आबनाए हुरमुस से बाहर एक नए पाबंदी वाले इलाके का ऐलान किया जाएगा और उनके साथ राब्ते किए बगैर इस इलाके में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को ईरान की बंदिशों वाली फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा कि यह इलाका अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी की हद से खलीज फारिस के इलाकों की हद तक होगा। जो जहाज किसी भी तरफ से आबनाए हुरमुस की तरफ जाएंगे और इस इलाके में दाखिल होंगे, उन्हें बंदिशों का सामना करना होगा। यह बात ईरान के सरकारी मीडिया ने बताई है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी को आज आकाशवाणी पर लाइव नशर किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन इसे दिन में 2 बजे से रात 10 बजे तक नशर करेगा। ये नशरिया मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के सभी स्टेशनों पर दस्तियाब होगा। सैलाब ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। गंगा, गंडक और कोसी नदी समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पानी की सतह के पेश नजर हुक्काम करीबी नजर रखे हुए हैं। पटना में मुख्तलिफ घाटों पर दरिया की आबी सतह खतरे की बुलंद तरीन सतह को पार कर गई है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। 24 जिले अब भी सैलाब से मुतासिर हैं और कई नदियों में अब भी तुफानी है। इंतजामिया ने गर्रा और खतरा नदियों के किनारे और नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। इधर मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फुटबॉल में भारत ने 20 साल तक की उम्र के एएफसी एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत को यह कामयाबी 20 साल में पहली बार हासिल हुई है। उसने ताशकंद में ग्रुप बी के अपने फाइनल क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। एएफसी का 20 साल तक की उम्र का यह एशियन कप टूर्नामेंट चीन में अगले साल 24 मार्च से 10 अप्रैल तक खेला जाएगा। बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कल शेंजेन में चाइना मास्टर्स में मर्दों के डबल्स का खिताब हासिल कर लिया। भारतीय जोड़ी ने इस फाइनल मैच में चीन की हे जिनतिंग और रेंग जियांग यू की जोड़ी को 11-21, 21-13, 21-17 से हराकर चाइना मास्टर्स का पहली बार यह खिताब जीत लिया।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राग नटभैरव में शुभम कुमार का गायन। तबले पर संगति दी थी मुस्तफा हुसैन ने और सारंगी पर थे गुलाम मोहम्मद।

सत उजला उजला आपका नाम रोशन रोशन आपकी सीरत।

निराला सबसे अनोखा आपका नाम। बद्र उहुद में गारे हिरा में गारे सौर में देखा है,

मुझको अजब तस्कीन मिली है, मुझ पे अजब फैजान हुआ। मुझको अजब तस्कीन मिली है, मुझ पे अजब

पुक का नाम आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए कि सारे ही असहाबे पैगंबर रुश्दो हुदा के तारे हैं, सारे ही असहाबे पैगंबर रुश्दो हुदा

0: ये अब आपको एक बार फिर बॉलीवुड सिनेमा के लिए चलते हैं। फिल्मों की दुनिया में कुछ निर्देशक ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि अपने दौर की धड़कन को पर्दे पर उतार देते हैं
1: जी।
0: और उन्हीं में से एक थे बी.आर. इशारा, जिनकी आज जयंती है। खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, कई खूबसूरत गीत

गैर शहरी फिल्मों में रिश्तों की उलझन थी, सामाजिक सवाल थे और समय के बदलते हुए शहरी जीवन की झलक थी। और अब ऐसी कहानियों के साथ हमेशा आशा, प्रेम और जुदाई के गीत तो जुड़े रहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है उनकी फिल्म का, चलते चलते आइए उस गीत के साथ हमने याद

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

कल रात जाए हादसा से एक और लाश निकाले जाने के बाद इस वाकये में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। एनडीआरएफ, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और दीगर एजेंसियां तलाश और बचाव की कार्रवाई में मसरूफ हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता से बात की। जनाब शाह ने बताया कि जख्मियों को तमाम जरूरी टिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने जाए हादसा का मुआयना किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इस इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम जारी था। इस अलमनाक वाकये के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज आज बंद रहेगा। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने कयास आरायों और गुमराह कुन मालूमात पर मबनी मीडिया में गर्दिश करने वाली इन खबरों पर वजाहत जारी की है कि इसरो को प्राइवेट करने या इसके रोल को कम करने की कोशिश की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा है कि ना तो इसे प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा और न ही इसकी अहमियत को किसी तरह कम किया जाएगा। तंजीम ने यह भी कहा है कि खला में प्राइवेट शोबे की शराकत का मकसद यह है कि इसरो भारत के खलाई प्रोग्राम के अगले दौर में पुख्ता टेक्नोलॉजीज और सलाहियतों में इजाफा करने के साथ साथ अपनी सरगर्मियों को मजबूत तर बनाने पर तवज्जो मरकूज करे। इसरो ने कहा है कि खलाई शोबे की असलाहत का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निजाम तश्कील देना है। इसरो ने कहा है कि भारतीय सनत अपनी पुख्ता सरगर्मियों में इजाफा कर सकती है। इससे बड़े पैमाने पर पैदावार, तजारती अंदाज इख्तियार करने, इख्तिरा और आलमी मार्केट तक रिसाई की जा सकेगी और इसरो की साइंसी और तकनीकी अफरादी कुव्वत, जदीद तरीन तहकीक, अगले दौर की टेक्नोलॉजीज और पेचीदा कौमी मिशनों पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा की राजधानी पणजी में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का इनेकाद उम्र दाखिला की वजारत के बैन रियासती काउंसिल का सेक्रेटेरिएट करेगा और इसकी मेजबानी गोवा सरकार करेगी। मगरबी जोनल काउंसिल गोवा गुजरात और महाराष्ट्र, निज मरकज के जेर इंतजाम इलाके दादर और नगर हवेली, निज दमन और दीव पर मुश्तमिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर अता करेंगे। आज रियासत के उनके दौरे का आखिरी दिन है। हुस्नयाबी की यह तकरीब रियासती पुलिस फोर्स के लिए एक फखरिया लम्हा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओपेक प्लस के साथ असली ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान में कल वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसका मकसद आलमी मार्केट में तालमेल और मजमूई हालात का जायजा लेना था। उन्होंने आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार से मुतालिक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। ईरान के आला सरकर्दा अफसर ने ऐलान किया है कि आइंदा दिनों में आबनाए हुरमुज से बाहर एक नए पाबंदी वाले इलाके का ऐलान किया जाएगा और उनके साथ राबता किए बगैर इस इलाके में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को ईरान की बंदिशों वाली फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा कि यह इलाका अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी की हद से खलीज फारस के इलाकों की हद तक होगा। जो जहाज किसी भी तरफ से आबनाए हुरमुज की तरफ जाएंगे और इस इलाके में दाखिल होंगे उन्हें बंदिशों का सामना करना होगा। ये बात ईरान के सरकारी मीडिया ने बताई है। रिजाई ने यह भी दावा किया है कि आबनाए हुरमुज से गुजरने की कोशिश करने वाले अमरीकी जहाज यहां फंस कर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान इन जहाजों को इनमें तेल लदे होने के सबब माहौल को दरपेश खतरे के पेश नजर गर्क करने से गुरेज किया है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी को आज आकाशवाणी पर लाइव नशर किया जाएगा। आकाशवाणी उज्जैन इसे दिन में 2 बजे से रात 10 बजे तक नशर करेगा। ये नशरिया मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के सभी स्टेशनों पर दस्तियाब होगा। अकीदतमंद FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के जरिए भी इसे सुन सकते हैं। सैलाब ने बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलाती जिंदगी को मुतासिर किया है। गंगा, गंडक और कोसी नदी समेत तमाम बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पानी के सतह के पेश नजर हुकाम करीबी नजर रखे हुए हैं। पटना में मुख्तलिफ घाटों पर दरिया की आबी सतह खतरे की बुलंदतरीन सतह को पार कर गई है। उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। 24 जिले अब भी सैलाब से मुतासिर हैं और कई नदियों में अब भी तुहयानी है। सैलाब से मुतालिक

0: हादसों में 5 अफराद हलाक हुए हैं। शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुताल्लिक एजेंसी ने कहा है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। फुटबॉल में भारत ने 20 साल तक की उम्र के AFC एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत को यह कामयाबी 20 साल में पहली बार हासिल हुई है। उसने ताशकंद में ग्रुप बी के अपने फाइनल क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी की खास अहमियत है क्योंकि यह देरीना सकाफती और सियासी राबतों के मजबूत बुनियाद पर कायम है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन इमारत इन्हदाम हादसे की मजिस्ट्रेट के जरिए जांच के अहकाम जारी किए हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसरो ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात का मकसद एक वसी तर, मजबूत तर और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय खलाई इको निजाम तश्कील देना है और इसे इको निजाम वसत और सलाहियत में इजाफे के तौर पर देखा जाए न कि निजकारी के नजरिए से। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। पेश खिदमत है अखबारे जरी का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शवद परहेजगार। आम तौर पर इंसान को जिंदगी के 3 मराहिल उबूर करने पड़ते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन के दिन सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत होते हैं। इन अय्याम में इंसान तमाम तरह की जिम्मेदारियों से आजाद होता है। घर और खानदान के हर फर्द की निगाह उसी की तरफ मरकूज होती है और बहुत ही मौज मस्ती से जिंदगी के अय्याम बसर होते हैं। बचपन की ही तरह बुढ़ापे की जिंदगी होती है। बचपन में माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह बुढ़ापे में औलाद। इन मराहिल में से सबसे अहम मरहला जवानी का होता है। इस उम्र में बैक वक्त मुख्तलिफ जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। इस उम्र में इंसान एक तरफ अपने बच्चों को कर्ज दे रहा होता है ताकि बुढ़ापे में उससे वसूल सके, वहीं दूसरी तरफ अपने बूढ़े वालदेन का कर्ज अदा कर रहा होता है जो उन्होंने बचपन में उसे दिया था। जवानी अल्लाह ताला की नियमतों में से बहुत बड़ी नियमत है जिसका शुक्र हर नौजवान के जिम्मे जरूरी है। यही वजह है कि इस्लाम ने जवानी की इबादत और रियाजत और तौबा को तो खूब पसंद किया ही है, साथ ही साथ अक्सर पैगाम और हिदायत के मुखातब भी नौजवान ही है। इसीलिए शेख सादी ने कहा है, जवानी में इबादत करना और परहेजगारी की जिंदगी गुजारना पैगंबरों का तरीका है। बुढ़ापे में तो जालिम और खूंखार भेड़िये भी परहेजगार बन जाते हैं। इसकी वजह भी जाहिर है कि किसी भी चीज का मजा उसी वक्त है जब उसको करने की ताकत हो। बुढ़ापे में जालिम भेड़िया इस कदर लागर और कमजोर हो जाता है कि अब उसमें शिकार की कुव्वत ही नहीं रहती, तो अब परहेजगारी इख्तियार करके क्या फायदा। इसी तरह बुढ़ापे की उम्र में बहुत से गुनाहों की भी लज्जत और उसे करने की ताकत खत्म हो जाती है, तो अब तौबा तो मजबूरी है। तौबा, तकवा, परहेजगारी और इबादत तो उस वक्त ज्यादा अहम है जब इंसान के अंदर गुनाह को अंजाम देने की ताकत हो, मगर वो उसे छोड़ दे, उसी की तरफ शेख सादी का इशारा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सी अहादीस मौजूद हैं जिनमें आपने जवानी की इबादत की अहमियत और फजीलत को बयान किया और नौजवानों के सिलसिले में बहुत सी बशारतें भी सुनाई हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नौजवान जिसने जवानी के अय्याम को अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजारा हो के मुतालिक इरशाद फरमाया, कयामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए में पनाह देगा। जब उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उनमें से एक जवानी में इबादत करने वाला शख्स भी होगा। इससे अंदाजा होता है कि जवानी

0: लोगों को पांच चीजों से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, अमीरी को फकीरी से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। ये हकीकत भी है कि जवानी में इंसान पूरे तौर पर तंदुरुस्त होता है, किसी भी काम को अंजाम देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, यहीं से उसकी जिंदगी का रुख भी मुतय्यन होता है। जिस जगह पर चल पड़ता है जिंदगी उन्हीं खतूत और निशान पर गुजरती है। इसीलिए शरीयत ने जवानी की इबादत को बुढ़ापे की इबादत से अफजल करार दिया है। इसी तरह की एक और हदीस है जिसे इमाम तिर्मिजी ने नकल किया है, उसमें अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन किसी बंदे के कदम उस वक्त तक न उठ सकेंगे जब तक वो चार सवालों के जवाब न दे दे। इन चार सवालों में एक सवाल ये भी होगा कि अपनी जवानी को किस तरह गुजारा। इससे नौजवानों को सबक लेने की जरूरत है, जिंदगी का कुछ पता नहीं, इसी उम्र में सही सिमत मुतय्यन करने की जरूरत है। सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, मौत ऐसी चीज है जो न जवानी देखती है और न बचपन, कभी भी आ सकती है। इसलिए वक्त से पहले जवानी की उम्र में ही अपने फराइज को बहुसन खूबी अंजाम देने की जरूरत है।
1: अभी आप सुन रहे थे अकबाले जहरी का प्रोग्राम शम्मी फरोजा। आज का मौजूद था अकबाले सादी, पेश कर रहे थे जनाब अब्दुल बारी। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर जारी है। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल।

इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए गीतों भरी कहानी मंजिल की तलाश, तहरीर जनाब जितेंद्र पाल सिंह की है।

0: समीर कॉलेज पहुंचा तो चारों तरफ हलचल मची हुई थी। हो भी क्यों ना, आज कॉलेज में सालाना जलसा जो है, उस जलसे में समीर को भी शिरकत करनी है। वो खचाखच भरे हाल में पहुंचा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके मुकाबले में नूरी गा रही है। दोनों ने गाना शुरू कर दिया।
1: तेरे प्यार का

आके मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके ओ मेरे कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ।

0: इस जबरदस्त मुकाबले के खत्म होते ही खचाखच भरा हाल तालियों से गूंज उठा। बेशक इनाम समीर को मिला, लेकिन उसमें नूरी का भी पूरा योगदान था।
1: मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा गाया।
2: अच्छा तो आप गाते हैं, तभी तो आपको इनाम मिला।
1: मेरे ख्याल से इनाम की तो आप हकदार हैं। इतनी अच्छी आवाज और उस पर आपका ये खूबसूरत चेहरा।
2: आप तो खामखा मेरी तारीफ करने लगे।
1: नहीं, सच कह रहा हूँ, जजों ने फैसला करने में जरूर कोई गलती की है।
2: खैर, जो हुआ सो हुआ, आपको इनाम मुबारक हो।
0: समीर की नूरी के साथ ये पहली मुलाकात थी। वो उसकी आवाज

0: पीछे हाथ में क्या छुपा रखा है समीर?
1: तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ।
0: अच्छा तो फिर जल्दी दो ना। देरी किस बात की है?
1: पहले बताओ इसमें क्या है।
0: अरे भाई तोहफा तुम लाए हो तो तुमको पता होना चाहिए। और वैसे भी तुम जो दोगे मैं ले लूंगी। वैसे इतने बड़े पैकेट में साड़ी या कोई गहना हो सकता है, है ना?
1: बस लो ये खोलकर खुद देख लो।
0: अच्छा, अरे ये क्या, फूलों की पौध और ये छोटा सा गमला?
1: हाँ यही है मेरा तोहफा, है ना अनोखा?
0: अरे ये कैसा पागलपन है, ये भी कोई तोहफा हुआ?
1: देखो साड़ी गहने सभी दे सकते हैं, लेकिन आज की जरूरत के मुताबिक ये तोहफा बहुत कीमती है।
0: यानी तुम चाहते हो मैं खेती बाड़ी करूँ? लेकिन मेरे पास जमीन कहाँ है समीर? मैं तो एक छोटे से फ्लैट में रहती हूँ जहाँ कोई गुंजाइश नहीं है।
1: यही तो मैं बताना चाहता हूँ, आज इंसान ने पेड़ पौधों के जंगल को खत्म कर कंक्रीट का जंगल बना लिया है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। आज जरूरत फिर से पेड़ पौधे लगाने की है, इसलिए मैं तुम्हें यह तोहफा दे रहा हूँ। इसे तुम अपने घर की खिड़की पर रखना, गमलों में यह पौधा खूब पनपेगा।
0: बहुत नायाब तोहफा है तुम्हारा।
2: इम्तिहान के बाद जिंदगी की नई

0: शुरुआत करने का वक्त आ गया। समीर नौकरी की तलाश में जुट गया। इसके बावजूद वो नूरी से मिलने का वक्त निकाल ही लेता।
1: सुनो समीर, मुझे तुमसे एक खास बात कहनी है।
2: हाँ कहो।
1: मेरे वालिद जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं।
2: यानी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: इससे पहले कि वो अपनी मंशा जाहिर करें, तुम बात कर लो ना समीर।
2: बस एक बार नौकरी मिल जाए, मैं फौरन तुम्हारे घर बात करने आ जाऊंगा।
1: कब मिलेगी तुम्हें नौकरी?
2: मैं कल दूसरे शहर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। नूरी
1: जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
2: जरूर।
0: समीर नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चला आया। दर बदर भटकने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कहीं उससे काम का तजर्बा मांगा जाता तो कहीं सिफारिश। उधर नूरी के वालिद ने उसकी शादी मुकर्रर कर दी। नूरी बेचैन हो उठी। वो कैसे समीर से मिले, उसका तो कोई पता ठिकाना भी नहीं। आखिर मजबूरन उसे अपनी वालिद की जिद के आगे झुकना पड़ा। फिर भी वो आखिर तक समीर का इंतजार करती रही।

वहीं समीर को एक इदारे में नौकरी मिली इस शर्त के साथ कि एक साल तक उसे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और उसकी तैनाती इदारे के मुताबिक होगी। समीर ने उस इदारे में नौकरी करनी शुरू कर दी। इस दौरान उसने कई खत नूरी को लिखे मगर एक भी खत का जवाब नहीं आया। आखिर उसे एक दिन मालूम चला कि नूरी की शादी हो गई है। समीर को यकीन नहीं हुआ लेकिन हकीकत को वो पूरी तरह से नकार भी तो नहीं सकता था। उसका दिल टूट गया।

0: समीर के वालदेन उसकी शादी करने पर जोर देने लगे, लेकिन समीर ने शादी करने से साफ मना कर दिया। वक्त यूं ही बीतता गया। इस दौरान समीर का तबादला दूसरे शहर में हो गया। एक दिन वो दफ्तर जा रहा था तो एक पार्क के बोर्ड को देखकर वो चौंक गया। वो पार्क के अंदर गया। अंदर सफेद लिबास में खातून फूलों की क्यारियों और छोटे छोटे पौधों को सींच रही थी। वो उसके करीब पहुंचा तो चौंक गया। वो नूरी थी। नूरी उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। कुदरत ने उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। पहले तो उससे उसकी मोहब्बत छीनी, फिर जैसे तैसे उसने तकदीर का फैसला मानकर अपनी मोहब्बत को भूल अपना नया घर बार संभालना शुरू किया तो एक हादसा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन नूरी अपने शौहर के साथ स्कूटर पर अस्पताल जा रही थी, तभी तेज रफ्तार से गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। नूरी चोट खाकर बेहोश हो गई। अस्पताल में जब होश आया तो पता चला कि उसके शौहर वहीं हादसे में खत्म हो गए। नूरी तो बच गई, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा खत्म हो चुका था। नूरी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। जब वो अस्पताल से घर वापस आई तो ससुराल वालों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। मायके आई तो वहां भी उसे तवज्जो नहीं मिली। उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। आखिर उसने अपनी मंजिल खुद तलाशनी शुरू कर दी। नूरी ने अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाने के बाद समीर से गिला शिकवा करना शुरू कर दिया। समीर ने भी अपनी मजबूरियों का खुलासा किया। मोहब्बत करने वाले दो बिछुड़े पंछी आज फिर एक मोड़ पर मिल गए। लेकिन नूरी ने अपनी एक नई मंजिल तलाश ली है। उसका मुकाम कुछ और ही है।
1: समीर, याद है तुमने मुझे एक तोहफा दिया था? आज वही मेरे लिए जीने की राह बन गया है।
2: मैं समझा नहीं।
1: जब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए तो मुझे इस तोहफे ने रास्ता दिखाया। मैंने थोड़ी सी ये जमीन खरीदी, इसे मैंने एक पार्क के रूप में संवारा और उधर पेड़ पौधों की नर्सरी खोली। वो नर्सरी मेरी आमदनी का जरिया बनी और ये पार्क लोगों की सेहत, उनकी तंदुरुस्ती को बनाए रखने में मदद कर रहा है। यहाँ सुबह शाम भीड़ लगी रहती है।
2: तुमने तो अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी भटक रहा हूँ।

0: szemét. Miért bosszú?
1: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी, जिसका उन्वान था मंजिल की तलाश। तहरीर जनाब जितेंद्र पाल सिंह की थी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

मनीष कर की आवाज में ये नगमा अभी आपने मौसम फिल्म से सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश सुलक्षणा पंडित की आवाज में फिल्म है आहिस्ता आहिस्ता।

मजदूर फिल्म का नगमा आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है दिल की राहें।

0: सर्द फिल्म का नगमा आपने सुना लता मंगेशकर का गाया हुआ, और इसके साथ ही आज का मेरे पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग। रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। माँ बनने का एहसास जितना अनमोल है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ बच्चे का पालन पोषण और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है माँ के दूध से। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। स्तनपान केवल शिशु का पहला आहार नहीं बल्कि उसके स्वस्थ जीवन और बीमारियों से सुरक्षित रखने की पहली शुरुआत है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारा विषय है मातृ और शिशु देखभाल यानी मदर एंड चाइल्ड केयर। गर्भ अवस्था से लेकर जन्म के बाद तक माँ और बच्चे की सेहत, स्तनपान, पोषण और जानेंगे उन जरूरी बातों के बारे में जिन्हें हर परिवार को जानना चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता दास, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
0: और हमारे साथ हैं डॉक्टर ललन के भारती, HOD पीडियाट्रिक, JPC हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट NNF इंडिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
2: शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कोई कपल अगर बेबी प्लान कर रहा है तो किन बातों का ध्यान रखे जिससे गर्भधारण सही से हो और बच्चा स्वस्थ हो।
1: जी शिल्पा जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। इसमें कई बातें हैं जो एक कपल को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपनी कुछ जांचें करवा लें जिससे आगे गर्भधारण में भी आसानी होती है और डॉक्टर्स को भी उसे फॉलो करने में बहुत आसान रहता है। आगे जो भी है तो कुछ खून की जांचें हैं जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच है या ब्लड ग्रुप की जांच है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में आरएच नेगेटिव ग्रुपिंग है तो डॉक्टर्स को इस बात का खास ख्याल रखना होता है। कुछ टीके भी लगते हैं। इसके अलावा HIV की जांच है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को करवानी चाहिए। HPS एंटीजन की जांच है, HCV की जांच है, और एक थैलेसीमिया की जांच है जो बहुत जरूरी है, जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को होनी चाहिए ताकि ये जो बीमारी है, जो अनुवांशिक बीमारी है, वो बच्चे में आगे ना पहुंचे। तो इस तरह की बहुत सी जांचें हैं। इसके अलावा अगर मरीज कुछ और दवाइयां ले रहा है पहले से, हृदय रोग की दवाई है या किडनी डिजीज की दवाई है या थायराइड की दवाई है या खून की कमी है, उसके लिए वो आयरन कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, तो ये सारी जानकारी डॉक्टर्स को देना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत जरूरी है।
0: डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे अगर कोई बच्चा न्यूबॉर्न बच्चा है तो उसके लिए फर्स्ट गोल्डन आवर किसे कहते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है?
2: गोल्डन आवर यानी जन्म के बाद का पहला घंटा जो बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान सही देखभाल से नवजात की जान बचाई जा सकती है और आगे का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम इस समय सही से देखभाल करेंगे तो लॉन्ग टर्म आउटकम जो उसका बहुत ही अच्छा होगा। इस एक घंटे में कुछ बहुत जरूरी कदम होते हैं, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को अच्छी तरह सुखाना और गर्म रखना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे को हम गर्म रखें, क्योंकि बच्चा जो माँ के पेट के अंदर आता है तो वहाँ टेम्परेचर माँ से मिलता है, और अचानक बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वहाँ हमारा काम होता है कि उसको हम गर्म रखें, गर्माहट दे, टेम्परेचर मेंटेन करें। यदि जरूरत हो तो उस बच्चे को हमें रिससिटेशन भी देना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा है अपने से तो तुरंत हमें सांस देना है। वहां हम गोल्डन मिनट की बात करते हैं। अगर बच्चा ऐसा होता है कि 10 में अगर 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सांस नहीं लेता अपने, उस बच्चे को हमें सांस देना होता है, और ये सांस फर्स्ट मिनट में देना पड़ता है। इसलिए इसे हम फर्स्ट गोल्डन मिनट

0: बोलते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि फर्स्ट गोल्डन आवर, उस तरह से फर्स्ट गोल्डन मिनट होता है जिसमें कि बच्चे को हमें सांस देना पड़ता है और इसको हम न्यूरोनल रिसस्टेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात जो फर्स्ट गोल्डन आवर में होता है वो होता है कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जो नाल होता है उसको हमें तुरंत नहीं काटना चाहिए, उसे एटलीस्ट 60 सेकेंड्स के बाद ही काटना चाहिए अगर बच्चा रो रहा है, सांस ले रहा है। इससे क्या होगा कि मां के शरीर का जो ब्लड है वो बच्चे में जाएगा और बाद में बच्चे में एनीमिया का चांस कम होगा। तीसरी बातें जो है कि मां को अपने बच्चे को छाती से लगा के रखना चाहिए, जिससे दो फायदे हैं, एक तो मां से गर्माहट मिलेगी बच्चे को, दूसरा ये है कि बच्चा से एक बॉन्डिंग बनेगा और उससे क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन में और सिक्रेशन में हेल्प मिलता है। तो ये भी हमें विद इन वन आवर बच्चे को मदर्स मिल्क स्टार्ट कर देना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो फर्स्ट फ्यू डेज और फर्स्ट फ्यू आवर्स जो मिल्क सिक्रेट होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत ही उपयोगी होता है, उसे फेंकना नहीं चाहिए उसे और उसको देना चाहिए। उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। बच्चे को बिना जरूरत मां से अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो तो उस समय हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। हो सकता है इस बच्चे को हमें नर्सरी के अंदर एडमिट भी करना पड़ सकता है। सो गोल्डन आवर में सही देखभाल जीवन भर बेहतर स्वास्थ्य की नींव रखती है, इसलिए गोल्डन आवर के बारे में हमें जानना चाहिए, हमारे श्रोता को भी जानना चाहिए और खास करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है, जो डिलीवरी अटेंड करते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन, उनको जानना चाहिए। इसी समय हमें यह भी पता करना होता है कि कौन सा बच्चा को एडमिट करना है नर्सरी में, कौन से बच्चे को सांस ऊपर से देने की जरूरत पड़ सकती है, कौन से बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि इस गोल्डन आवर में बच्चे को मां का दूध शुरू कर देना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे को हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखते हैं मां के साथ और इस गोल्डन आवर में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हैं तो मिल्क का वॉल्यूम ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि जो फेलियर रेट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का वो भी कम हो जाता है। देखा गया है, अभी आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वो 90% से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो कि एक घंटा के अंदर होना चाहिए वो उतना नहीं है, वो 50% 55% के आसपास है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट गोल्डन मिनट में बच्चे को गर्माहट, दूसरी बात मां के कांटेक्ट में रखना चाहिए, कॉर्ड को डिले काटना चाहिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको डिले करना चाहिए काटने के लिए, और ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली पॉसिबल शुरू करना चाहिए।
1: अगर किसी परिवार में कोई बच्चा आता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वाकई में सारी दुनिया उस तक ही सीमित रह जाती है। तो डॉक्टर सुजाता आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई पहली बार मां बनने वाली जो महिलाएं होती हैं तो उनको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए।
2: जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो माताएं गर्भधारण कर रही हैं, उनके लिए कुछ बातें जो हैं, चार पांच मुख्य रूप से जो बातें हैं वो मैं यहां जरूर बताना चाहूंगी। पहली बात, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हॉस्पिटल में अपना एंटीनेटल कार्ड बनवाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके साथ ही हिस्ट्री टेकिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है जो पेशेंट का, उसी कार्ड पर लिखा जाता है। ब्लड प्रेशर की जांच है, पल्स की जांच है, हाइट है, वेट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कार्ड पर मेंशन की जाती है। तो रजिस्ट्रेशन जो है सभी महिलाओं का बहुत जरूरी है और भारत सरकार का काफी प्रयास रहा है। और अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो प्रतिशत है वो 25 पॉइंट से भी ऊपर उठ के आया है। तो रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही जो कुछ खून की जांचें हैं, कुछ पेशाब की जांचें हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड हैं जो बहुत जरूरी हैं, चाहे सीबीसी की जांच हो या ब्लड ग्रुप की जांच हो, चाहे एचपीएस एंटीजन की जांच हो या वीडीआरएल की जांच हो या एचआईवी टेस्टिंग की जांच हो हस्बैंड या वाइफ की, या शुगर की जांच हो ताकि प्रेगनेंसी में अधिक शुगर ना बढ़े, जिससे गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी होती है और शिशुओं को भी परेशानी होती है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर की जांच बहुत जरूरी है, एचपीएलसी यानी कि थैलेसीमिया की जांच बहुत जरूरी है। कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी करवाते हैं। तो कब जांच करवानी है अल्ट्रासाउंड की वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। सो ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है कि कब अल्ट्रासाउंड की जांच करें, कब खून की जांच करें, पेशाब की जांच करें। इसके साथ ही समय समय पे डॉक्टर के पास आके अपनी जांच करवाना बहुत जरूरी है। एएनसी की जांच एक ऐसी जांच है जिसके द्वारा हम तीन चार चीजें जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, शुगर का ज्यादा होना,

0: बच्चे का ठीक से ना पनपना, आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी है, या समय से पहले बच्चे का दर्द शुरू हो गया, तो ये सब कुछ प्रेगनेंसीज जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आते हैं। तो हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो है वो लो रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है, तभी हम एंटीनेटल फॉलोअप और एंटीनेटल की जांच सही ढंग से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब भी माताएं हमारे पास आती हैं, एक एक ओपीडी विजिट में हमें क्या क्या उनको जानकारी देनी है ये बहुत जरूरी है। किस प्रकार का भोजन करें, कैसा भोजन करें, आयरन और कैल्शियम की जो खुराक है वो कब लें, कैसे लें, इसके साथ ही कोई अन्य दवा चल रही है तो उसके लिए भी डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है, किस तरह से उस दवाई को लेना है वो बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी हृदय रोग की दवा हो या थायराइड की दवा हो या पहले से शुगर की दवाई चल रही है, तो ये सारी चीजें डॉक्टरी सलाह पे ली जा सकती है। इसके साथ ही जो कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हैं जो प्रेगनेंसी में बताई जाती है, हर तरह की एक्सरसाइज नहीं की जा सकती लेकिन कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हैं जो प्रेगनेंसी में की जा सकती है, तो वो डॉक्टरी सलाह के साथ ही करनी चाहिए। कुछ वॉक है, कुछ खाने के बाद 15-20 मिनट का वॉक है जो हम बताते हैं, और इस तरह से कई तरह की जानकारियां जो है जो हम एंटीनेटल पीरियड में हम अपनी गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उन्हें पिकअप जल्दी कर सकते हैं।
1: डॉक्टर सुजाता, जैसे कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी में महिलाएं क्या खाएं क्या ना खाएं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर भारती ने जैसे कि अभी हमें गोल्डन आर के बारे में बताया था कि गोल्डन आर के बारे में तो हमें पता लग गया, लेकिन ये है कि अगर बच्चा हो गया, हम घर पे ले गए, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन क्या ऐसे कोई डेंजर साइंस होते हैं कि जिसके बाद हमें लगे कि हाँ हमें तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, ये सवाल हर एक पेरेंट्स को जानना चाहिए कि बच्चे को कब हॉस्पिटल ले जाना है या कब घबराने की बात है। तो यदि बच्चा दूध ना पी रहा या पहले से कम दूध पी रहा है, बहुत सुस्त हो गया, जग नहीं रहा है, उनकी सांस तेज या कठिन हो रही है, छाती अंदर धस रही है, होंठ नीले पड़ रहे हैं, शरीर बहुत गर्म या ठंडा लग रहा है, बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चा अचानक ढीला पड़ गया, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसी तरह पीलापन, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, अगर ये जॉन्डिस सोल में या पाम में आ गया, पहुंच जाए, नाभि से मवाद आ जाए, शरीर पर कई कई फोड़े दिखाई देने, एक दो तो हो सकते हैं लेकिन अगर 5 से ज्यादा पड़ने लगे, या बच्चे की गतिविधि अचानक कम हो जाए, तो जांच बहुत जरूरी है। 3 महीने से छोटे बच्चे में बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, घर पर अपने आप एंटीबायोटिक्स या बुखार की दवा देकर इंतजार करने के बजाय उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो WHO का क्लियर कट गाइडलाइन है कि अगर बच्चा दूध ना पिए, सुस्त हो जाए, तेज या कठिन सांस लेने लगे, शरीर बहुत गर्म या ठंडा होने लगे, दौरा पड़ने लगे, हथेली या तलवा पीला होने लगे, तो इसे हम प्रमुख खतरे के संकेत मानते हैं और इस समय हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नवजात शिशु में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बच्चे का गर्माहट। तो अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है किसी पेरेंट्स के पास, तो हाथ से भी, हाथ के उल्टे जो पाम के अपोजिट साइड से, उसको हमें एक पेट पर और एक तलवे पर रखना चाहिए, दोनों गर्म होना चाहिए। अगर पेट पर गर्म है और तलवे में ठंडा है, तो इसका मतलब बच्चा को हाइपोथर्मिया की तरफ जा रहा है, तो उसे तुरंत हमें गर्म करके रखना चाहिए।
1: ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कई बार हम बाहर हो, हमारे पास ट्रेवल कर रहे हो, थर्मामीटर नहीं हो, तो हम बच्चे का इंस्टेंटली चेकअप कर सके।
2: एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जितना कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को एक लेयर अपने से ज्यादा पहनना चाहिए नवजात बच्चे को, क्योंकि उसमें गर्माहट देना बहुत जरूरी है और ये बच्चे यूजुअली हाइपोथर्मिया की ओर जल्दी से जल्दी जा सकता है।
1: ममता की गर्माहट के साथ ये भी जरूरी है। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर सबको।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: विश्व बेबी बोल रहे हो, पंचकूला से।
1: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी थैंक यू। मेरा 2-3 क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि प्रेग्नेंट का डाउन सिंड्रोम टेस्ट होना मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी के बच्चे हुए, बहुत बड़ा नर्सिंग होम पर वो टेस्ट नहीं करवाया और बच्चा डाउन सिंड्रोम से पैदा हुआ और 4 महीने में वो खत्म हो गया, ग्रो ही नहीं किया। दूसरा ये कि क्या बड़ी एज में प्रेगनेंसी होने से ज्यादा स्पेशल चिल्ड्रन आ रहे हैं दुनिया में?
0: जी आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें पूछी है, कुछ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम, आजकल डाउन सिंड्रोम की तरफ अगर हम देखें तो बढ़ती उम्र में अगर प्रेगनेंसी की जाती है तो डाउन सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है

0: डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर पॉपुलेशन. तो डाउन सिंड्रोम की जांच बहुत जरूरी है, सभी बड़े अस्पतालों में की जाती है, जिसको हम डुअल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कहते हैं, जो कि हर बड़े संस्थान में, हर छोटे संस्थान में की जाती है और वो बहुत जरूरी है, हर प्रेगनेंसी में होनी चाहिए. पहली बात, कुछ अल्ट्रासाउंड के फीचर्स भी होते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 18 से 20 हफ्ते, 22 हफ्ते के बीच में जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी स्पेशल बातें हैं जो सामने उभर के आती हैं, जिससे ये काफी हद तक पिकअप किया जा सकता है कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, उसमें शायद इस तरह की कुछ परेशानी है, और जिसको हम खून के टेस्ट के द्वारा या बच्चे के आसपास जो पानी है उसे लेके उसके टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सचमुच डाउन सिंड्रोम है. तो आजकल डाउन सिंड्रोम की जांच डेफिनेटली की जाती है और सभी प्रेगनेंसीज के लिए की जाती है. ये आपका पहला प्रश्न था. आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि बढ़ती उम्र की महिलाओं में प्रेगनेंसी, जो गर्भधारण है, वो एक हाई रिस्क फैक्टर है. डेफिनेटली वो एक हाई रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इसमें जो हमारी जेनेटिक डिजीजेस हैं जो बच्चे की तरफ जाती हैं, उसका प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाता है. तो ऐसी प्रेगनेंसीज के साथ डॉक्टर्स भी बहुत सावधान रहते हैं. कई तरह की जांचें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा जांचें होती हैं, खून के पेशाब की जेनेटिक काउंसलिंग होती है, जेनेटिक टेस्ट होते हैं. आजकल तो हमारे पास इतने बड़े बड़े टेस्ट हैं कि हम होल जीनोम सिक्वेंसिंग तक कर लेते हैं. तो इस तरह की कुछ स्पेशल जांचें होती हैं जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है. तो डेफिनेटली बढ़ती उम्र में कुछ अनुवांशिक बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है बच्चे का. यस
1: नहीं, ये डाउन सिंड्रोम टेस्ट किस मंथ में होता है?
0: देखिए, प्रेगनेंसी में फोर्थ मंथ में डाउन सिंड्रोम टेस्ट, थर्ड मंथ के बाद डाउन सिंड्रोम टेस्ट हो जाता है. एक टेस्ट फोर्थ मंथ के बाद होता है, एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है फोर एंड हाफ मंथ पे. तो इससे पता चल जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की समस्या है.
1: तो क्या फिर वो बेबी अबॉर्ट करा देना चाहिए?
0: जी, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो स्पैन है, वो बहुत ज्यादा नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट की काउंसलिंग के द्वारा, जो माता पिता है उनकी काउंसलिंग के द्वारा, इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है कि प्रेगनेंसी को आगे ना बढ़ाया जाए.
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेरे दिल से एक बोझ उतारा है, मैंने किसी को बताना.
2: थैंक यू वेरी मच. ये तो डॉक्टर साहब आपने इसके बारे में बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी माता पिता खुशहाली से अपने बच्चों को अपनाए, तो हेल्दी प्रेगनेंसी हो उसके लिए माँ क्या खाएं क्या ना खाएं?
0: जी, जो जो न्यूट्रिशन है, जो प्रेगनेंसी में जो एंटीनेटल मदर्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जिस प्रकार का भोजन चाहिए, वो बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारे पास अधिकतर महिलाएं जो आज भी आ रही हैं, 50 से 55% महिलाओं में खून की कमी है, एनीमिया है, चाहे वो माइल्ड फॉर्म में हो, मॉडरेट फॉर्म में हो या सेवियर फॉर्म में हो. ये एक चिंता का विषय है. सभी बड़े अस्पतालों में आयरन और कैल्शियम की गोली मुफ्त दी जाती है. उन्हें हर एंटीनेटल विजिट पे समझाया जाता है कि इन गोलियों को लेना बहुत जरूरी है. लगातार प्रेगनेंसी में कब तक लेनी चाहिए, उसके बाद भी डिलीवरी के बाद 2 या 3 महीने लेनी चाहिए, आपके अंदर खून की कमी ना हो, किस तरह का भोजन करें, वो बहुत जरूरी है. तो 3 बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. किस तरह से आप अपने जो कैलोरी इनटेक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डाइट हम लेते हैं, उस पे अतिरिक्त 300 कैलोरीज का जो वो है फूड इनटेक, वो अधिक होना चाहिए. हमारे खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां हो, सलाद हो, ठीक है, दूध है, दूध से बनी चीजें हैं, दही है. कम से कम माताओं को 1 लीटर दूध प्रतिदिन लेना चाहिए. अगर वो एग्स लेते हैं तो 2 एग्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं. तो इस तरह से आप अपना आयरन इनटेक और अपना प्रोटीन इनटेक डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं. और जैसा हमने कहा, 300 कैलोरीज पर डे की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 9 मंथ्स, और 500 कैलोरीज प्रतिदिन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, डिलीवरी के बाद, जब तक माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उसके बाद. एंड प्रोटीन इनटेक भी डेफिनेटली 1 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा जो खान पान है वो किस तरह से हो. तो हम अपने मील को इस तरह की कोई उस तरह का खाना ना ले कि एक साथ बहुत सारा ले लिया या तेल मिर्च मसालेदार भोजन ले लिया. हमें अपने मील्स को प्लान करना होता है. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जैसे हम मेजर मील्स कहते हैं. इसके साथ ही हम बीच बीच में कुछ माइनर मील्स ले सकते हैं. इसका मतलब होता है भोजन के बीच में अतिरिक्त हमने कुछ सलाद ले लिया, कुछ फ्रूट्स ले लिया, कुछ फ्रूट जूसेस ले लिया जो घर में बने हुए हों, या हमने कुछ सूप्स ले लिया. इस तरह से हम अपने जो खान पान है उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं और उसको ठीक से प्लान भी कर सकते हैं. तो एक एक चीज जो है वो सभी अस्पतालों में हर एंटीनेटल विजिट पे मरीजों को समझाई जाती है. जी,
2: लेकिन कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि जो मन है वो खाओ, जब मन के हिसाब से खाओगे तभी बच्चा स्वस्थ होगा. तो क्या कुछ ऐसा है जो हमें अवॉइड करना चाहिए?
0: बहुत सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए. जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला जो भोजन है ऐसा नहीं करना चाहिए. इस तरह का भोजन

0: लिए ना आपके बच्चे के लिए पौष्टिक है। पानी जो है दूषित नहीं होना चाहिए, जो हमारा भोजन है दूषित नहीं होना चाहिए। खाना खाएं, बनाएं, हाथ धोने के बाद ही भोजन ग्रहण करें और हमारा जो भोजन है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ शुद्ध घर का बना हुआ होना चाहिए। बाहर से भोजन खाना खतरे से खाली नहीं है, कई तरह के पेट के संक्रमण और बाकी रिस्क है जो बच्चों को हो सकते हैं, माताओं को भी।
1: जो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, सीजेरियन भी होती है, सी सेक्शन डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए?
0: जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारी माताएं हैं जो गर्भ धारण कर चुकी हैं या डिलीवरी हुई है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो स्तनपान है वो कब शुरू किया जाए। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्तनपान जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, प्रेफरेबली एक घंटे के अंदर, डिलीवरी के एक घंटे के अंदर माताओं को अपना दूध देना चाहिए अपने नवजात शिशुओं को। जिसको पहला जो दूध होता है जो पीला और गाढ़ा होता है वो बहुत जरूरी है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम के अपने कई फायदे हैं, इसमें जो एनर्जी दी जाती है, जो मिलती है बच्चों को वो काफी ज्यादा होती है। इसके साथ ही बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं जिससे शिशुओं को कई तरह के रोगों से लड़ने में काफी ज्यादा कैपेसिटी उनकी डेवलप होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक घंटे के अंदर स्तनपान कराएं अपने बच्चों को। तो ये आपके सवाल का पहला हिस्सा हुआ।
1: और एक दूसरा चीज ये भी जानना चाहूंगी कि इस आदमी की ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन कौन सी समस्याएं अक्सर माँ को होती हैं?
0: हाँ, चार पांच तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि अगर डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी भी है या सीजरियन सेक्शन भी है, तो जो पेन है, जो माताओं को निचले हिस्से में पेन होता है जिसकी वजह से वो बैठकर या किसी भी पोजिशन में दूध नहीं पिला पा रही है, ये पहली समस्या है। दूसरी बात जो बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि माताओं की शिकायत होती है कि पर्याप्त दूध की मात्रा नहीं आ रही है। ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमें उन्हें समझाना होता है कि जो बच्चा है उसकी जो कैपेसिटी है, स्टमक की कैपेसिटी है, वो बहुत कम होती है, 5 ml या 10 ml। तो जितना दूध आपका आ रहा है वो बच्चे के लिए सफिशियंट है। ये काउंसलिंग पार्ट जो है जो सभी माताओं के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें बैठ के समझाना किस तरह से आप स्तनपान कराएं, किस पोजिशन में कराएं, कितनी बार कराएं, ये एक एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि माताएं अगर ठीक से अपना दूध नहीं पिला पा रही है तो हम जिसे कहते हैं दूध छाती का भर जाना, जिसे एंगॉर्ज्ड ब्रेस्ट कहते हैं, या क्रैक निपल्स होते हैं जिनकी वजह से माताओं को बहुत पेन होता है, जो माताएं अपने बच्चों को ठीक से स्तनपान नहीं करवा पाती हैं। तो इस तरह की कुछ आम समस्याएं हैं जो देखने में आती हैं। जी,
1: जैसे कि अभी डॉक्टर सुजाता ने कहा कि दूध कम आ रहा है, तो डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार होता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा दी है, बच्चा फिर भी रो जा रहा है, लगता है कि उसने अभी भूखा है, तो कैसे पता लगे कि बच्चा ने डाइट पूरी हो गई है या वो भूखा है? या और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और पानी कब देना चाहिए बच्चे को?
2: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मैं लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो जन्म से पहले 6 मंथ तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी, गाय का दूध या कोई भी अन्य चीज देने की आवश्यकता नहीं है। माँ के दूध में ही बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। 6 मंथ पूरे होने पर माँ का दूध जारी रखते हुए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना चाहिए। घर का ताजा, नरम और पौष्टिक भोजन जैसे दाल, चावल, खिचड़ी, मसली हुई सब्जियां और फल देना शुरू कर सकते हैं। माँ का दूध 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रखना चाहिए। अब आपका मैं दूसरा सवाल लेता हूँ कि कैसे पता चले कि बच्चा सही तरह से दूध पी रहा है। बच्चा स्तनपान के बाद तुरंत शांत हो जाता है और संतुष्ट दिखता है। 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 बार यूरिन पास करता है। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चा फीड करने के बाद सो रहा है अच्छे से और 6 to 7 times यूरिन पास कर रहा है। उसका वजन बढ़ रहा है, एटलीस्ट 20 to 30 grams एक दिन में उसका वजन बढ़ रहा है। स्तनपान के समय बच्चा अच्छी तरह से स्तन को पकड़कर निगलने की आवाज माँ सुन पा रही है, तो इससे पता चलता है कि बच्चे को मिल्क मिल रहा है। ये सवाल आता है, मदर्स आती है हम लोग की ओपीडी में ये बता करके कि बच्चे को दूध नहीं हो रहा है, क्या हम अलग से ऊपर से दूध पिला दें? तो माँ को ये बताना बहुत जरूरी है, माँ को काउंसिल करना बहुत जरूरी है, माँ को एम्पावर करना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को अगर वजन सही से बढ़ रहा है, बच्चा सो रहा है सही समय से, बच्चा यूरिन पास कर रहा है, तो आपको ऊपर का दूध देने का जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखें कि पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें, 6 महीने के बाद पूरक आहार के साथ माँ का दूध दें, और 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान करें। यही स्वस्थ बच्चे की सबसे मजबूत नींव है।
1: डॉक्टर भारती, जैसे कि आप प्रेसिडेंट हैं एनएनएफ के, तो ये एनएनएफ इंडिया क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: एनएनएफ यानी नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया, यह भारत में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एनएनएफ का उद्देश्य है कि देश के हर नवजात शिशु को जीवन की सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत मिले। इसके लिए हम डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं, नवजात देखभाल के मानक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, स्रोत को बढ़ावा देते हैं और सरकार तथा अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं, सो दैट की न्यूनेटल मोर्टेलिटी कम हो। बेबी शुड रिसीव द मिनिमम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर दिल्ली में पैदा हुआ तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले और कोई बच्चा बहुत दूर दरार गांव में हुआ तो वहां ना मिले। तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि हर एक जगह एक मिनिमम न्यूनेटल स्टैंडर्ड से बच्चों को का देखभाल हो। एनएनएफ की सबसे महत्वपूर्ण पहल है न्यूनेटल रिसस्टेशन एनआरपी, समय से पूर्व जन्मे शिशु का देखभाल, जैसे जिसका कि हमने अभी बताया केएमसी, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, इन्फेक्शन का रोकथाम के लिए काम करना और एनआईसीयू की गुणवत्ता को सुधार करना। हमारा एक्रीडेटेड सेंटर है, हमारे पूरे देश में एनएनएफ का 300 से ज्यादा एक्रीडेटेड सेंटर है। इसका ये मतलब हुआ कि उस सेंटर में एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया मैंडेटरी क्राइटेरिया वो हॉस्पिटल फुलफिल कर रहा है तभी हम लोग उसको सर्टिफाइड करते हैं। तो उस सेंटर पर जाकर के लोग अपने बच्चे को रख सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो हमारा विश्वास है कि हर नवजात का जीवन अनमोल है और सही देखभाल सही समय पर सही हाथों से मिलनी चाहिए, यही एनएनएफ का संकल्प है।
1: और ये एनआरपी क्या है?
2: सो एनआरपी का पूरा नाम है न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है जन्म के समय हर नवजात शिशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार सही देखभाल मिले। अक्सर लोग सोचते हैं एनआरपी केवल उन बच्चों के लिए है जो जन्म के बाद नहीं रोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 90% न्यूबॉर्न जन्म के बाद अपने आप रोते हैं और सामान्य रूप से सांस लेते हैं। एनआरपी हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे स्वस्थ बच्चे को भी एसेंशियल न्यूबॉर्न कैसे दिया जाए। इसमें बच्चों को गर्म रखना, मेंटेनिंग टेम्परेचर, देर से नाल काटना दैट इज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जन्म के पहले 1 घंटे में माँ का दूध शुरू करना, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के साथ साथ इन्फेक्शन ना हो, वो सारी बातें भी एनआरपी में सिखाई जाती है।
1: और डॉक्टर भारती, आप चाइल्ड केयर के लिए,
2: पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया, और मेरा पहला संदेश होगा कि बच्चे को गर्म रखें, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बनाकर रखें और ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दें और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक कराएं। बच्चे को बिना सलाह शहद, घुट्टी, पानी या दवाएं ना दें। बच्चा दूध ना पिए, सुस्त हो जाए, सांस लेने में कठिनाई हो, शरीर बहुत गर्म या ठंडा हो, दौरा आए, पीलिया बढ़े तो इंतजार ना करें, तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाएं। और परिवार बच्चे की माँ का, बच्चे के साथ साथ माँ का भी ध्यान रखें।
1: तो दोस्तों, माँ का स्नेह, माँ का स्पर्श और माँ का दूध, यही वह अनमोल उपहार है जो किसी भी बच्चे को जीवन की सबसे मजबूत शुरुआत देते हैं। स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु एक परिवार की ताकत है। आज की चर्चा से यही संदेश मिलता है, माँ और शिशु की अच्छी देखभाल, सही जानकारी, सही पोषण पूरे परिवार के सहयोग से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रही डॉक्टर सुजाता दास, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और हमारे साथ है डॉक्टर ललन के भारती, एचओडी पीडियाट्रिक, जेपीसी हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनएनएफ इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
2: आपका भी बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और खुशहाल परिवार, यही है बेहतर कल की नींद। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुजरता शुमारे की रिकॉर्डिंग। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अब खबरें नशर की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी की खास अहमियत है क्योंकि ये देरीना सकाफती और सियासी राब्तों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम ज़ेवियर बैटल से बातचीत करेंगे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस यूक्रेन तनाज़े खत्म करने की खातिर अमरीका के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरिड कुशनर से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मुत्तहिदा अरब इमारात के अपने दौरे के दौरान मध्य प्रदेश को सरमायाकारी के सिलसिले में अहम मकाम करार दिया। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सदर मैखों के साथ मिलकर दोनों ममालिक के खसूसी आलमी दिफाई शराकतदारी की तामीर कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेरिस में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के इफ्तिताह के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, एआई और दफा से लेकर खला और आबोहवा से मुतालिक कार्रवाई तक दोनों ममालिक मिलकर एक नई रफ्तार और नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ये साल एक तरह के भारत फ्रांस साल के तौर पर मना रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी की एक खसूसी नौयत है क्योंकि यह देरीना सकाफती और सियासी राब्तों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। उन्होंने कहा कि तारीख फ्रांस में भारतीय सिपाहियों की कुर्बानियों की गवाह है, एक ऐसी तारीख जो इज्तिमाई यादों और जज्बात में पिन्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि जो लोग जबानों में दिलचस्पी रखते हैं वे ये भी जानते हैं कि फ्रांसीसी दानिश्वरों ने संस्कृत को फरोग देने और मकबूल आम करने में अहम रोल अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि आजकल भारत फ्रांस मुश्तरका प्रोजेक्टों के इम्कानात पर काफी बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस इम्कान में भी एक नए पहलू का इजाफा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर मेड इन इंडिया है जबकि इसे फ्रांस में तामीर किया गया है। लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ज़ेवियर बैटल अपने सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वज़ीरे खारजा ने बताया है कि जनाब बैटल आज कौमी राजधानी में वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर से मुलाकात करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीरे खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरे से भारत और लग्जमबर्ग के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम होगा। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस यूक्रेन तनाज़े को खत्म करने की खातिर कल कीव में अमरीका के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरिड कुशनर के साथ बातचीत की। इस मीटिंग में इलाकाई मामलात, सिक्योरिटी से मुतालिक यकीन दहानी, यूक्रेन के मुस्तकबिल और इक्तिसादी बहाली के बारे में तबादले ख्याल किया गया। विटकॉफ ने कहा कि अमरीका सिफारती हल के तय पुरज़म है जबकि कुशनर ने रूस के मकासद पर गौर करने की जरूरत पर जोर दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की फौजी ताकत किसी भी सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए मरकजी हैसियत की हामिल होगी। उन्होंने आइंदा मुशाविरतों में यूरोपीय ममालिक की शिरकत का खैर मकदम भी किया। مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو تین روزہ دورے پر کل متحدہ عرب امارات پہنچے. وہ دبئی میں سالانہ سرمایہ کاری میٹنگ کانگریس میں شرکت کریں گے اور سرمایہ کاروں سے بات چیت کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد مدھیہ پردیش کے لیے لاجسٹکس، کان کنی، زراعت، خوراک کی ڈبہ بندی، ٹیکسٹائل اور مصنوعی ذہانت سمیت کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے، جس میں تجارت کو مضبوط بنانے اور ریاست کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع

0: तुम्हारा।
1: क्या हुआ?
2: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
1: अच्छा जी
2: एक बहाना बन गया अच्छा
1: अच्छा

किशोर कुमार के साथ ये आवाज थी लीना चंद्रावरकर की और फिल्म थी मनचली। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी के साथ आवाज आप सुनेंगे शर्मिला टैगोर की। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

महल फिल्म का नगमा आपने सुना, आवाजें थी आशा भोसले और उनका साथ दे रहे थे देवानंद। प्रोग्राम की अगली पेशकश वैजयंती माला और मुकेश की आवाजों में, फिल्म का नाम है संगम।

शागिर्द फिल्म के इस नगमे में मोहम्मद रफी के साथ आपको बिट्स सुनने को मिलेंगे आईएस जौहर साहब के, और लास्ट में एकदम थोड़ी सी आवाज मन्ना डे साहब की भी है।

0: मौसम बहार था, रख ले दिल बेकरार था, मेरे हाथों मैं हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये नगमा शागिर्द फिल्म से था। अब वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का, मौजू है हिंदुस्तानी मौसीकी, तहरीर महमूद हाशमी की है।
2: हिंदुस्तानी मौसीकी की इब्तदाई तारीख वेदों के अहद से शुरू होती है। कहा जाता है कि अवली मौसीकार के हाथ में वीणा थी और उसने जो साज सुर निकाले उनसे फितरत को मिजाज और अंदाज मुयसर आए। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में हिंदुस्तानी मौसीकी का इर्तका जारी रहा। मुगलों के अहद में हिंदुस्तानी मौसीकी को और भी ज्यादा तवाना और कदरदानी से भरपूर अहद मुयसर आया। मुगलों के जमाने तक हिंदुस्तानी मौसीकी ने बहुत से ईरानी रागों को भी अपने मिजाज में रचा लिया था। मसलन एवन कल्याण जो ईरानी राग यवन का नया रूप था। इसी तरह ईरानी नौरोज हिंदुस्तानी मौसीकी में तहलील हो जाने के बाद नौरो चकाया के नाम से पुकारा गया। ईरान का एक और राग जंगोला जब हिंदुस्तानी मौसीकी से हम आहंग हुआ तो इसका नाम जंगला पड़ गया। सलातीनी दहली के जमाने में हिंदुस्तानी मौसीकी को गैर मामूली मकबूलियत भी मिली और बेहतरीन फनकारों को अपने तख्लीकी जौहर दिखाने का मौका भी मिला। हजरत अली खुसरो एक अजीम सूफी और बुलंद पाया शायर होने के साथ साथ मौसीकी के माहिर भी थे। उन्होंने बहुत से राग और रागनियां ईजाद की, मसलन तराना, कौल, गारा, मजीद, साजकारे, पहलन, फरगना वगैरह। पंद्रहवीं सदी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन शौकी ने ख्याल गायकी को ईजाद किया, जिससे वाजे होता है कि मुसलमान बादशाहों को हिंदुस्तानी फनून लतीफा से गैर मामूली इश्क था। बाबर की महफिलों में बहुत से मौसीकार शामिल थे। खुद बाबर ने तुजक बाबरी ने अपने अहद के जिन मौसीकारों का तस्करा किया है उनमें शेख मयाई और कुल मोहम्मद का नाम खास तौर पर काबिले जिक्र है। तुजक बाबरी में तहरीर है, एक बार शेख मयाई ने अपने सांस पर कोई नया राग बांधा, कुल मोहम्मद हजार कोशिशों के बावजूद भी उस राग को सांस पर न बांध सका। शेख मयाई ने फौरन ही कुल मोहम्मद से सांस छीन लिया और उस पर अपने निकाले हुए राग को आने वाहिद में बांध लिया। शेख मयाई और कुल मोहम्मद के अलावा बाबर ने शाह कुली की भी तारीफ की है और लिखा है कि उस जमाने में इससे अच्छा कोई रबाब नवाज नहीं था। एहद अकबरी में हिंदुस्तानी मौसीकी का वो अजीम फनकार सामने आया जिसे हम सब तानसेन के नाम से जानते हैं। तानसेन की खास ईजाद मियां की मल्हार है। ये राग काफी ठाट का छह सुर का राग है और बरसात में गाया जाता है। अकबर के अहद में बेशुमार और बेमिसाल मौसीकार मौजूद थे। जहांगीर के अहद हुकूमत में हाफिज नादिर अली, जहांगीरदार, चतुर खां, खुर्रमदार और ऐसे ही बड़े नामवर मौसीकार दरबार से वाबस्ता थे। शाहजहां को ध्रुपद से बड़ी दिलचस्पी थी। ध्रुपद का मुमताज मौसीकार लाल खां अहद शाहजहानी का फनकार है। शाहजहां ने अपने अहद के एक और माहिर मौसीकी जगन्नाथ को महाकवि राय का खिताब भी अदा किया था। बहादुर शाह जफर के अहद में तानरफ खान का टूटी बोलता था। तानरफ का असल नाम कुतुब बख्श था। बहादुर शाह जफर ने उसे तानरफ का खिताब दिया और वो इसी नाम से मशहूर हुआ। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तानी मौसीकी से इस कदर दिलचस्पी थी कि वो ख्याल के बोल खुद लिखते थे और इसके लिए शोख रंग तखल्लुफ करते थे। तानरफ इन बोलों को ख्याल गायकी में पेश करते थे। अहद उगरिया के बाद भी हिंदुस्तानी मौसीकी इर्तका की राहों पर गामजन रही और आजादी के बाद क्लासिकी मौसीकी की अजमत और मकबूलियत में इस कदर इजाफा हुआ कि आज हमारे फनकार हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी न सिर्फ अपने फन का मुजाहरा करते हैं बल्कि बैरूनी ममालिक में सैकड़ों शायकीन हिंदुस्तानी मौसीकी सीख रहे हैं।
1: ہندوستانی موسیقی کے حوالے سے آپ نے سنا پروگرام تاریخ ساز، محمود ہاشمی کی تحریر تھی اور پیش کر رہے تھے عبدالجبار۔ یہ آکاش منی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہمارے نشریات جاری ہیں۔

0: इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल का गाया हुआ आवाज को मिले सुर। मेरा तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हुआ, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में। सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण में भागीदारी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज डिवीजन के प्रोग्राम डायरेक्टर युगल किशोर जोशी। कार्यक्रम का संचालन

0: सेवन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: पानी सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जल की कमी, भूजल का लगातार गिरता स्तर, जलवायु परिवर्तन और पानी की दिनों दिन बढ़ती मांग जैसी चिंताओं ने जल संरक्षण को भारत समेत दुनिया भर की सरकारों के लिए बड़ी प्राथमिकता बना दिया है। जल संरक्षण में जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी यानी कि JSJB कार्यक्रम लॉन्च किया था, जो भारत में जल स्थिरता के लिए समुदाय आधारित एक पहल है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आज हम इस पहल के पिछले 2 सालों के सफर, जल संरक्षण में जन भागीदारी की बढ़ती भूमिका, जल संरक्षण में जन भागीदारी की बढ़ती भूमिका और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री युगल किशोर जोशी। जोशी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए।
1: मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि भारत के जल संरक्षण प्रयासों में जन भागीदारी अहम क्यों है?
2: पानी, जैसा हम सब जानते हैं कि एक संसाधन ही नहीं है, बल्कि जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और मानवीय गरिमा का आधार है। और हमारे जैसे विशाल देश में, 140 करोड़ से अधिक आबादी के देश में और इतनी विविधता भरे देश में जल संरक्षण का कार्य, खासकर जब हम अभी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, या तो मार्च की बात अब नहीं होती, अब 9 या 10 दिन में बारिश का पानी आ जाता है और पानी का प्रदूषण के बारे में हर कोई चिंतित हो जानता है, तो ऐसे में यह जल संरक्षण का कार्य केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए जनभागीदारी नितांत आवश्यक है। जनभागीदारी मतलब समुदायों की भागीदारी हो, स्थानीय संस्थाओं की हो, पंचायतों की हो, नागरिक समाज की हो और हर नागरिक की सक्रिय सहभागिता हो। हमारी भारत की हाल की ही जो जल यात्रा रही है, खासकर 2014 के बाद, उसमें भी ये जल यात्रा सुनिश्चित करती है कि कम से कम ढांचागत निर्माण जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जन आधारित जल सुरक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं।
1: जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से पिछले 2 सालों में जल संचय जन भागीदारी जो ये पहल, इसमें कितनी प्रगति हुई है? इसके अंतर्गत कितने स्ट्रक्चर्स बने हैं जो जल संचय के लिए, जल संरक्षण के लिए बनाए गए हैं?
2: जैसे कि आप जानती हैं, 6 सितंबर 2024 से यह आरंभ हुआ था और पिछले साल 2025-26 में बहुत व्यापक रूप से यह पहल आगे बढ़ाई गई और इसके केंद्र में समुदाय के स्वामित्व की भावना है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें बहुत कम लागत वाली जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात है, जिसको हिंदी में भूजल पुनर्भरण कहते हैं, या वाटर कंजर्वेशन की जो संरचनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और जो निष्क्रिय बोरवेल हैं, जो बोरवेल अभी सूख गए हैं, उनको दोबारा से रिवाइटलाइज करना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक समाधान अपनाना, इन पर जोर दिया गया था। तो जैसा कि मुझे अनुमान है, जो JSJB के अंतर्गत जो पहला राउंड अभी 2 साल का हुआ है, 27 लाख से अधिक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं और जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मई 2026 तक करीब करीब 1.5 करोड़ से अधिक की संरचनाएं, और अभी सितंबर के शुरुआत तक के जो आंकड़े आए थे वो था कि 1.58 करोड़ से अधिक जो कृत्रिम भूजल का रिचार्ज है, उस तरह की संरचना रिपोर्ट की गई। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि ये जागरूकता का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज इसको बहुत बड़े ढंग से अपना रहा है और ये एक जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ चुका है।
1: इस साल जून में जल संचय जन भागीदारी को एक और पहल, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसके साथ जोड़ा गया और अब ये अभियान जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन कहलाता है। तो अभियान का दायरा बढ़ाने के पीछे क्या सोच थी?
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी शायद भारतवर्ष के इतिहास में पहले और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जल को लेकर के एक चहुमुखी, एक होलिस्टिक कंजर्वेशन और डेवलपमेंट या वाटर मैनेजमेंट अगर मैं कहूं, उसकी ओर ध्यान दिया। चाहे पिछले 25 वर्षों में उनका गुजरात का मुख्यमंत्रित्व का काल हो या पिछले 12 सालों से भारत के प्रधानमंत्री का, पानी और जल संरक्षण उनकी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। तो जो जल संरक्षण के प्रयास हैं, यह 2014 से ही भारत भर में उनके विजन से आगे बढ़ते रहे हैं और इन वर्षों में हमने देखा है कि बहुत तरह की नई नई इनिशिएटिव्स उन्होंने आरंभ किए, चाहे अटल भूजल योजना हो, चाहे नमामि गंगे प्रोग्राम हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जल जीवन मिशन हो। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक वर्ष 2019 में उन्हीं के नेतृत्व और प्रेरणा से जल शक्ति अभियान शुरू हुआ था, जो बहुत तरह की चीजों को, जिनमें की जलागम विकास होता है, तालाबों का पुनरुद्धार होता है, जल स्रोतों की मरम्मत और जीर्णोद्धार, वर्षा के पानी का संचयन और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ट्री प्लांटेशन और जो पारंपरिक हमारी ट्रेडिशनल वाटर टेक्नोलॉजीज हैं, उनको कैसे पुनर्जीवन दिया जाए, इन सब चीजों पर यह कार्यक्रम जल शक्ति अभियान 2019 में आरंभ किया गया था। उसके बाद

0: अगले साल ये जलशक्ति अभियान कैच द रेन के रूप में और अधिक सशक्त हुआ। इसमें बेसिकली पांच मोटी मोटी चीजों पर ध्यान था कि कैसे पानी का कंजर्वेशन किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को दोबारा से रिवाइटलाइज करें, बोरवेल्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना, ये सब चीजें लेकर के ये चीज हमने उस समय से करनी आरंभ की थी। अब ये जन भागीदारी से इसे जोड़ देने से ये और अधिक सशक्त बनकर सामने आता है। इसमें टेक्नोलॉजी भी है और लोगों का जुड़ाव भी है।
1: जल सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें समुदाय की भागीदारी हमारे लिए यानी कि भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं है। सदियों से हमने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में बावड़ी, टैंक, तालाबों और जोहड़ों के जरिए पानी जमा करने और बांटने के तरीके विकसित किए गए हैं, जो कि दिखाते हैं कि पानी की सुरक्षा हमेशा एक सामूहिक जिम्मेदारी थी। तो जेएसजेबी पहल के क्रियान्वयन और उसकी सफलता में हमारी पारंपरिक प्रणालियों और स्थानीय ज्ञान ने क्या भूमिका निभाई है?
0: कुछ वर्ष पहले मैंने इस पर अध्ययन किया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के लगभग प्रत्येक हिस्से में ट्रेडिशनल वाटर टेक्नोलॉजीज या जो पानी के प्रबंधन की जो मैं कहूंगा लोकलाइज टेक्नोलॉजीज हैं, वो सदियों सदियों से चलती रही हैं। चाहे आप उत्तराखंड जाइए, चाहे आप लद्दाख जाइए, या आप अरुणाचल चले जाइए, या अंडमान जैसी जगहों पर जाइए, हर क्षेत्र में अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी इकोलॉजी और एनवायरमेंट के हिसाब से इस तरह की टेक्नोलॉजी पुनर्जीवित की। अब अफसोस की यह बात है कि जब हमने पूरी तरह पाश्चात्य जो ये वाटर कंजर्वेशन की चीजों का जी खासकर यह भावना आ गई कि सरकार ही इन सबका प्रबंध करेगी, तो लोग इससे विमुख हो गए जो प्राचीन टेक्नोलॉजी थी। अब यह जो नया जेएसजेबी अभियान है, इसमें कोशिश यह है कि पारंपरिक टेक्नोलॉजी को भी न भुलाया जाए, उनका भी जहां जहां हो समुचित उपयोग किया जाए और उनका सशक्तिकरण नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए। देखिए, एक बात बहुत साफ है इस देश में कि बिना जनभागीदारी के कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। वो हमने स्वच्छ भारत अभियान में भी देखा, वो हम जल जीवन मिशन में भी देख रहे हैं, वो हमने आजादी के आंदोलन में भी देखा था। तो इस मिशन में हम दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, पारंपरिक टेक्नोलॉजीज को भी और नई टेक्नोलॉजी को।
1: इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूत जल डेटा गवर्नेंस की जरूरत पर जोर दिया और डेटा इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के उपयोग की भी सिफारिश की। इसके साथ ही इसी साल जून में जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने देश में जल संसाधन प्रबंधन के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष आधारित एप्लीकेशन के इस्तेमाल को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए। तो पारंपरिक जो हमारी जानकारी है उसके साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी समुदायों को पानी बचाने और उसके प्रबंधन के प्रयासों के लिए कितनी जरूरी है और इसमें कैसे मदद कर सकती है?
0: देखिए, जैसे अपने घर का हम बजट बनाते हैं, घर में कितनी कमाई हो रही है और घर का खर्चा कितना है, इसी तरह भविष्य में अगर हमें क्लाइमेट चेंज और बाकी चीजें देखनी है तो हमें देर सवेर पंचायतों में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में या फिर राज्यों में या फिर पूरे देश का अंतत वाटर बजट बनाना पड़ेगा। अब अगर हम जब वाटर बजट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक ब्लॉक या एक पंचायत के पास कितना पानी उपलब्ध है। पानी की उपलब्धता सतह पर भी हो सकती है, पानी की उपलब्धता ग्राउंड वाटर पे भी होगी और पानी की उपलब्धता वर्षा के जल से भी होगी या जो भी और तरीकों से पानी आ सकता है। इसके लिए कि हमें सही क्वांटिटी पानी की अवेलेबिलिटी की पता हो, बिना टेक्नोलॉजी के प्रयास के नहीं हो सकती। आपने बहुत सुंदर बात करी इसरो और बाकी चीजों की, कई तरह तो भुवन आदि पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध भी हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल क्या है। जल शक्ति मंत्रालय के कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह की सूचना को पब्लिकली मुहैया कराते हैं। दूसरा पहलू है कि कितने जल का कहां पर प्रयोग हो रहा है। मैं अपने घर में कितना इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे घर तक कितना पानी आ रहा है पीने का, मेरे लिए जो पशु है किसानों के लिए उनमें कितना यूज हो रहा है, कृषि में कितना यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना यूज हो रहा है। जब तक इस सबका पुख्ता डेटा हमारे पास नहीं होगा, जो कि मेरा ख्याल है डेटा कन्वर्जेंस से नीचे से ऊपर तक कहीं डेटा आने से, टेक्नोलॉजी या आईओटी बेस्ड सेंसर सिस्टम से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें करना पड़ेगा, उसके बिना हम वाटर सिक्योरिटी या वाटर मैनेजमेंट की बात नहीं कर सकते। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारा पानी के बारे में जो डेटा है वो न सिर्फ सही हो बल्कि समय पर भी हमें मिले ताकि उसके हिसाब से प्लानिंग की जा सके।
1: जोशी जी, हम चाहेंगे कि आप जेएसजेबी पहल से जो शुरू हुई कुछ सफलता की कहानियां हैं वो हमारे साथ साझा करें। इन दो सालों में जब से ये पहल शुरू हुई है विभिन्न राज्यों में ये चल रही है, किस तरह की सफलता की कहानियां आगे आई हैं?
0: यहाँ पर दो चीजें तो मैं कहना चाहूंगा। पहली बात कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे जमीनी स्तर पर लोग कैसे आत्मसात करते हैं। जहां तक जल संरक्षण अभियान की बात है, ये 2019 से ही, जब मैं आरंभ में भी इससे जुड़ा था, मेरा ये देखने में आया है

0: देखो देखो के सन जवान से आ रहा था, ये तैयारा रनवे से फिसलकर जमीन पर कई गाड़ियों से जा टकराया। जख्मी होने वाले अफराद में से तीन की हालत तश्वीशनाक है। इमदादी कारकुनों ने तैयारे के पायलट, माविन पायलट, कम अज कम दो ऐसे अफराद को बाहर निकाला जो तबाहशुदा गाड़ियों में फंस गए थे। जाए हादसे पर 200 से ज्यादा इमदादी कारकुन पहुंच गए हैं। अमेजोन और अमरीका के हवाबाजी की वफाइद इंतजामिया FAA ने इस वाक तस्दीक किया और हादसे की वजूहत का पता लगाया जा रहा है। मैक्सिको के टेमास कॉल सिंगो में कल एक मजहबी फेस्टिवल के दौरान आतिशबाजी के सामान में धमाका होने के सबब कम से कम 10 अफराद की मौत हो गई और 64 अफराद जख्मी हो गए। ये धमाके एक चर्च के करीब उस वक्त में जब सैकड़ों लोग आतिशबाजी के लिए जमा हुए थे। धमाके से चर्च की दीवार गिर गई और मजहबी पेशवा जख्मी हो गए। इस धमाके की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। मैक्सिको के अटर्नी जनरल के दफ्तर ने इस वाक की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के बैन अलाकवामी फिल्म फेस्टिवल का आज आगाज हो रहा है। इस चार रोजा फेस्टिवल में 40 ममालिक से 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। मकामी फिल्म साजों और तकनीकी पेशा वराना अफराद ने कहा है कि फेस्टिवल बैन अलाकवामी सिनेमा फिल्म साजी के तौर तरीकों और सनती माहिरों को फिल्मों की स्क्रिप्टिंग के जरिए वसी तर मालूम को मौका फराहम करेगा। फिल्म साज आरिफ बशीर ने कहा है कि ये फिल्म साजी के अमल और सनती इको निजाम को समझने में मकामी फिल्म साजों की मदद करेगा। ओपेक प्लस के साथ असल ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान में कल वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आलमी मार्केट में तालमेल और मजमू हालात का जायजा लेना था। उन्होंने आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार से मुतालिक अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। यह फैसला ओपेक प्लस की तरफ से तेल की पैदावार में सितम्बर के महीने में तकरीबन 188,000 बैरल रोजाना के इजाफे के बाद किया गया है। यह इजाफा तेल की पैदावार में तकरीबन 10,65,000 बैरल रोजाना की रजाकाराना कटौती के अमल को पूरा करने के बाद किया गया है। यह मीटिंग ईरान और अबू हमस के आसपास तलाजी में शामिल मुल्कों समेत तेल बरामदाद में लगातार रखनांदाजी के पस मंजर और मुनद की गई। इस रुकावट की वजह से आलमी तेल सप्लाई, तेल की कीमतों से मुतालिक ओपेक प्लस की पैदावार के फैसलों में मुहित तौर पर असर पड़ा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात इस साल मई में इस इत्तेहाद से अलग हो गया था। उसने कहा था कि वो कौमी मफाद और मार्केट की अशद जरूरतों को पूरा करने के लिए मौसर तौर पर ताबून का पाबंद है। उम्मीद है कि ओपेक प्लस की मीटिंग मार्केट के हालात और पैदावार के सतह का जायजा लेने के लिए अक्टूबर में मुनक्किद होगी। फुटबॉल में भारत ने 20 साल तक की उम्र के AFC एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत को यह कामयाबी 20 साल में पहली बार हासिल हुई है। उसने ताशकंद में ग्रुप बी के अपने फाइनल क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। AFC का 20 साल तक की उम्र का एशियन कप टूर्नामेंट चीन में अगले साल 24 मार्च से 10 अप्रैल तक खेला जाएगा। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस दिफाई शराकतदारी की खास अहमियत है, क्योंकि यह दहरीना सकाफती और सियासी रबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के नायब वज़ीर आज़म ज़ावियर बेटल से बातचीत करेंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के रूस यूक्रेन तनाज़े को खत्म करने की खातिर अमरीका ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव वेटकॉफ और जीडर कुशिंस से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के अपने दौरे के दौरान मध्य प्रदेश को सरमाएकारी के सिलसिले में अहम मकाम करार दिया है। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फ्रांस दिफाई शराकत दारी की खास अहमियत है क्योंकि ये दरीना सकाफती और सियासी राबतों की मजबूत बुनियाद पर कायम है। वजीर खारिजा एस जयशंकर आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम जेवियर बैटल से बातचीत करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमिर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन तनाजा खत्म करने के खातिर अमरीका के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मुत्तहदा अरब अमारात के अपने दौरे के दौरान मध्य प्रदेश को सरमायाकारी के सिलसिले में अहम मुकाम करार दिया। ओपेक प्लस मुल्कों ने अक्टूबर के लिए तेल की पैदावार के निशाने में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। और फुटबॉल में भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश पर 3-0 से कामयाबी हासिल करके 20 साल तक की उम्र वाले एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दूसरी मजलिस के साथ दिन में 3 बजे हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

आपके ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं सही जवाब के साथ, और ये फिल्म ऐसी है जिसके गीत आज भी वही कशिश रखते हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। साल था 1976, फिल्म थी चरस, उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक, जिसका निर्देशन रामानंद सागर जी ने किया था। वहीं रामानंद सागर जिन्हें हम सब जानते हैं रामायण सीरियल के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बॉलीवुड को कई शानदार थ्रिलर फिल्में भी दी हैं। फिल्म में नजर आए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत, अमजद खान, असरानी, टॉम अल्टर, एक से एक कलाकार थे और साथ ही साथ एक से एक इस फिल्म के गीत भी थे। अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र ने सूरज का किरदार इस फिल्म में निभाया था, हेमा मालिनी सुधा के किरदार में नजर आई थी, अजीत कालीचरण बने थे, अमजद खान रोबर्ट के रूप में नजर आए थे, अरुणा ईरानी निम्मू के किरदार में दिखी थी और सेठ वृंदावन के रूप में नजीर हुसैन दिखे थे, असरानी पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम की भूमिका में थे, कैस्ट्रो मुखर्जी ने भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, वहीं सुजीत कुमार लॉरेंस और शेख अब्दुल सत्तार के रूप में नजर आए थे। तो इसके अलावा भी इसमें और भी जो सह कलाकार थे सभी ने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया था।

0: की कहानी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी पर आधारित है। सूरज यानी कि धर्मेंद्र के पिता की हत्या और बहन का अपहरण एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग गिरोह कर लेता है। अपनी बहन की तलाश और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सूरज एक सीक्रेट एजेंट बन जाता है। इस सफर में उसकी मुलाकात रोम में सुधा यानी कि हेमा मालिनी से होती है। धर्मेंद्र का एक्शन और हेमा मालिनी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने थिएटर्स में आग लगा दी थी। ये फिल्म 1976 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल थी। इस फिल्म की शूटिंग इटली यानी कि रोम जैसी खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस पर हुई थी, जो उस दौर की हिंदी फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की रियल लाइफ जोड़ी का जादू इस फिल्म में सर चढ़ कर बोला था।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: अच्छा गुड नाइट।

संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मशहूर संगीतकार जोड़ी ने। गीतों को आवाज देने वाले प्रमुख गायकों में किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज नाम शामिल थे। फिल्म के गीतों ने उस दौर के संगीत की वो खासियत, जो गीत है उनमें वो खासियत सुनाई देती है जिसमें ऑर्केस्ट्रियन धुन और जो गायकी है तीनों का खूबसूरत मेल एक साथ दिखाई देता है। कोई भी गीत ले लीजिए, अपने आप में आज भी वो गीत बहुत ही मधुर है।

जब बात 1970 के दशक की फिल्मों की होती है तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी का जिक्र होना तो स्वाभाविक ही है। धर्मेंद्र अपने दमदार व्यक्तित्व और एक्शन भूमिकाओं के लिए बहुत लोकप्रिय थे, वहीं हेमा मालिनी अपनी खूबसूरती, अभिनय और नृत्य के कारण दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल थी। अब इनके बीच में हम एक नाम को कैसे भुला सकते हैं, वो है अमजद खान। अमजद खान उस दौर में अपनी दमदार अदाकारी से अपनी अलग पहचान बना रहे थे। शोले में गब्बर सिंह की भूमिका के बाद उनका नाम दर्शकों के बीच खास तौर पर लोकप्रिय हो चुका था। चरस में उनका अभिनय फिल्म के रोमांचक वातावरण को और भी ज्यादा मजबूत करता है।

और अब वक्त है कि आपने जो संदेश भेजे हैं उनमें उन संदेशों को लेना और आपके नामों को पढ़ना। तो हमारे पास सबसे पहला जो संदेश आया है वो पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवानगन दुर्गा प्रसाद पराग जी का आया है। अगला संदेश गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें भेज रहे हैं। पदमा टॉकीज नेपन अगर से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर और कुशल जी हमारे साथ हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम रागबिया और शेख मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भावसर जी प्रमिला जी के साथ ढेर सारी जानकारी के साथ वीरनगांव जंक्शन से गुजरात से हमारे साथ हैं। गांवफरा से जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश कमुनेजा पूनम जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी नगर परवीन शेनवास सरफराज परदीन परिवार के सभी सदस्य हैं। डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बटन गेड़ा पंजाब से टिंटू टॉमस पिंकी लबली आरती जी हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमछिम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल कौशल्या देवनगन हेमलता डिम्पल जी हमारे साथ हैं। समरपुर कांकेर से गुणराम ज्योति ओजस्वी यादव जी हमारे साथ हैं। देवशंकर तामुरिया जयदेव जी हमारे साथ डोंजी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा कपिल पूजा ईशान जी हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास सुदर्शन मुखिया नेता सिमरन जी का शांतिनगर सोनीपत से आया है। और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कस्बा गुनेर यूपी से फारूक अली और फैजी फरान जी हमारे साथ हैं। संजय डिंगिया नमन जी अपार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हमें सुन रहे हैं। भबरपुर बसना से चंपा देवानगन राधेश्याम जी हमारे साथ हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन ट्रिकेस्टो रोजी जी हमें सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी जालंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है ये आया है हमारे पास। बहुत सारी जानकारी इन्होंने हमसे शेयर करी है और इनका नाम है अजीत भावसर जी का ही एक और संदेश पहुंचा है। तो आप सभी का हम ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में हम सफर बनने के लिए। कुछ और संदेश भी हैं। पहाड़वल मुल्तानी ढांडा सनी मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक जी हमें सुन रहे हैं। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी

जी हम लता हिना हर्षित जी, हमें हमारे साथ इशक मोहम्मद जी और हमारे साथ छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से जुड़े हुए हैं। टीवी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमें सुन रहे हैं और बसंत कुमार सिन्हा जी दमदम कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा की तरह आपसे हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक अपनी लिस्ट में चरस फिल्म को शामिल नहीं किया तो वक्त निकालिए और इस फिल्म को जरूर देखिए। फिलहाल वक्त हो रहा है आपसे अनुमति लेने का 2:30 पर प्रोग्राम एक ही कलाकार सुनना ना भूलिए और 3:00 आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे मैचिनी मेलोडीज। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि एक अनिश्चितता बारे चिंतित युग विच भारत ते लक्समबर्ग विचकार एक भरोसेयोग रिश्ता है। उन्होंने लक्समबर्ग के उप प्रधानमंत्री ते विदेश मामले बारे मंत्री जेवियर बेटेल नाल मुलाकात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा विच पश्चिमी जोनल कौंसिल की 28वीं मीटिंग की प्रधानगी कर रहे ने। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों उर्दू रोजाना अखबार मशरिक इसके डायरेक्टर तृणमूल कांग्रेस के संसद मैंबर नदीम उल हक न जुड़े एक मामले के संबंध में कोलकाता दिल्ली और रांची छापेमारी। इसरो का कहना है कि पुलाड़ खेतर के सुधार निजीकरण से नहीं सगों इको

0: कहा कि राष्ट्रीय आफत प्रतिकरण बल एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्रवाई विच लगी हुई है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का हो उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस दौरान इमारत मालिक विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर ने किया कि दिल्ली विच गैर कानूनी पांच मंजिला इमारतों को तुरंत सील करने के निर्देश जारी किए गए ने। सीएमओ ने आगे किया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के वसनीकों की सुरक्षा नाल कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही के मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह खबर आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल @AIRRNJLANDHAR। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो ने मीडिया विच फैल रही क्या सराइयां ते गलत जानकारी संबंधी रिपोर्टां ते स्पष्टीकरण जारी किया कि इसरो दा निजीकरण करन जां इसकी भूमिका नूं घटाउण दी कोशिश की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच इसरो ने कहा कि इसका ना तो निजीकरण किया जाएगा अते ना ही इसकी महत्ता नूं घटाया जाएगा। इसने अगे कहा कि पुलाड़ विच निजी खेत्र की हिस्सेदारी का उद्देश इसरो नूं भारत के पुलाड़ प्रोग्राम की अगली पीढ़ी ते होर भी मजबूती नाल ध्यान केन्द्रित करन ते योग बनाउणा है, जदों कि सनत परिपक्व तकनालोजियां अते समर्थावां हासिल करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवी दिल्ली दे राष्ट्रपति भवन विखे डूरंट कप टूर्नामेंट 2026 दा प्रेजिडेंट कप जेतू टीम ईस्ट बंगाल फुटबाल क्लब नूं सौंपिया। डूरंट फुटबाल टूर्नामेंट सोसायटी दे प्रधान चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, आर्मी स्टाफ चीफ आफ आर्मी स्टाफ जनरल तीरथ सेठ, एयर चीफ स्टाफ मुखी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, सोसायटी के प्रधान ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के अधिकारी ते खिडारी इस मौके मौजूद सन। आज शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्थानक फिल्म निर्माताओं और रचनात्मक पेशेवरों को विशाल फिल्म सनत विच उजागर करन अते खेत्र विच निवेश अते रोजगार लिए नवे मौके पैदा करन दे मौके वजो देखा जा रहा है। चार दिन के समारोह में 40 देशों की 135 फिल्म दिखाई जाएंगी। अफगानिस्तान में आज सवेरे 5:36 से भूचाल आया। भूचाल की तीव्रता रिक्टर पैमाने से 4.1 मापी गई। राष्ट्रीय भूचाल केन्द्र मुताबिक भूचाल का केन्द्र 130 किलोमीटर की डूंघाई ते सी। भूचाल नाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आने वाले दिनों में होरमुस पणजोड़ के बाहर एक नवा पाबंदीशुदा जोन ऐलाना जाएगा ते उन्हां नाल तालमेल तो बिना खेत्र विच दाखिल होने वाले किसी भी जहाज नूं ईरानी पाबंदियों की सूची विच रखा जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसल के सकत्र मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने कहा कि यह जोन अमरीकी समुद्री फौज की नाकाबंदी लाइन तो शुरू होगा और फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों में फैलेगा। टेनिस विच मौजूदा चैंपियन एरिना साबलेंका ते कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन दे क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गए ने। कल औरतां दे सिंगल्स दे राउंड ऑफ 16 विच बेलारूस दी चोटी दी दर्जा प्राप्त एरिना साबलेंका ने अमरीका दी खिडारन नूं हटाया। 16 दे होर मुकाबले विच स्पेन दे कार्लोस अल्काराज ने आर्थर एश स्टेडियम विच अमरीका दे टॉमी पॉल नूं हराया। आखिर च खास खबरां, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि एक अनिश्चितता बारे चिंतित युग विच भारत ते लक्समबर्ग विचकार एक भरोसेयोग रिश्ता है। उन्होंने लक्समबर्ग के उप प्रधानमंत्री ते विदेश मामले बारे मंत्री जेवियर बेटल नाल मुलाकात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अज गोवा विच पश्चिमी जोनल कौंसिल की 28वीं मीटिंग की प्रधानगी कर रहे ने। इसरो का कहना है कि पुलाड़ खेत्र के सुधार निजीकरण ते नहीं सगो इकोसिस्टम के पसार ते केंद्रित ने। इस नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
2: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो 35,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में मुनदिम हुई इमारत में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। साउथ जोन एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर 4 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर खाजा डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम जेवियर बेटल के साथ बाहमी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया गैर यकीनी के सिलसिले में फिक्रमंद है, भारत और लग्जमबर्ग के पुरैतमाद रिश्ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा में मगरबी जोनल काउंसिल

0: 28वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। आईएमडी ने कल तक बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट से वाबस्ता एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में जनाब मोदी 35,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तताह करेंगे, उन्हें वक्फ करेंगे और उनका संग बुनियाद रखेंगे। वो 326 किलोमीटर का अहाता करने वाले और 20,700 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत से तैयार मगरबी मालबरदार कॉरिडोर के 3 हिस्सों को भी वक्फ करेंगे। वजीर आजम वडोदरा और टांडा सड़क के दरमियान एक नई रेलगाड़ी और 4 मकामात पर मालबरदार ट्रेन खिदमात को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जोबार टांडा नई रेल लाइन को भी वक्फ करेंगे, जो अलीराजपुर के दूरदराज और कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से मरबूत करेगी। महाराष्ट्र में मुंबई में जनाब मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने सलामती के इकदामात और जारी बचाव कार्रवाईयों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में मुनहदिम हुई इमारत के मकाम का आज एक मरतबा फिर दौरा किया। नगरनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहाइयों पुरानी कसीर मंजिला इमारत के मकाम से तकरीबन 80% मलबा हटा लिया गया है। वज़ीर आला ने मुत्तला किया कि 12 अफराद को निकाला गया था, जिनमें से 7 की मौत हो गई है। मोहतरमा रेखा गुप्ता ने कल भी जायहादसा का दौरा किया था और कहा था कि हुकूमत मुतासरा तलबा के वालदेन से राब्ते में है।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: वजीर आला ने कहा कि यह अलमनाक हादसा इमारत के मालिक की गफलत की वजह से पेश आया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के वज़ीर आला ने मजीद कहा कि इलाके में ऐसी खतरनाक इमारतों की निशानदेही की जाएगी और उन्हें मुनहदिम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि उन अहदेदारान को जिनकी कोताही की वजह से यह हादसा पेश आया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा। दिल्ली हुकूमत के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज जायहादसा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत से मुतालिक कौमी फोर्स एनडीआरएफ की टीम कार्रवाई में मुसलसल मसरूफ है। जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आला ने कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वे इस मामले के जिम्मेदार सभी अफराद को फौरी तौर पर मुअत्तल करें। दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा है कि दिल्ली में गैर कानूनी 5 मंजिला इमारतों को फौरी तौर पर सील किए जाने की हिदायत दी गई है। सीएमओ ने मजीद कहा है कि वजीर आला ने वाजे कर दिया है कि दिल्ली के बाशिंदों की सलामती से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गफलत के मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक इमारत के गिरने के वाकये के बाद जारी बचाव और राहती कार्रवाईयों के पेश नजर आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक मुतासर रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के दरमियान काबिल एतमाद ताल्लुकात हैं। आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेनियर बटिल से मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी, तिजारत, सरमायाकारी और माली इश्तराक के शोबों में मजीद मुस्तहकम हो रही है। इसके अलावा खला, डिजिटल और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी के शोबों में भी बाहमी ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने भारत और यूरोपियन के दरमियान आजाद तजारती समझौते के लिए लग्जमबर्ग की मजबूत हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह समझौता बाहमी ताउन के नए इम्कान और मौके पैदा करेगा। लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जेवियर बेटल आज सुबह 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज पनजी में मगरबी इलाकाई कौंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ये कौंसिल गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा मरकज के जेर इंतजाम इलाकों दादर और नगर हवेली और दमन और दीव पर मुश्तमिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस मीटिंग में गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत, गुजरात के वजीर आला भूपेन्द्र पटेल, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर अफराद शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के नुमाइंदे भी हिस्सा ले रहे हैं। اس میٹنگ میں مرکز ریاستوں کے مشترکہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔

0: इसके अलावा मुश्तरका कार्रवाई की जरूरत वाले मामला भी जेर गौर हैं। बाद में जनाब शाह गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस कलर अवार्ड पेश करेंगे। पढ़ाई से निखिल उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने नौजवानों से अपील की है कि वो मनुष्यात के इस्तेमाल के खिलाफ मजबूत मौकफ अख्तियार करें और मनुष्यात से मुबर्रा मुआशरा बनाने में सरगर्म रोल अदा करें। आज गुवाहाटी में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने मनुष्यात के खिलाफ अहद दिलाया और नौजवानों पर जोर दिया कि वो मनुष्यात के खिलाफ जद्दोजहद के लिए पुरअज़्म रहें। नेपाल की कुदरती आफत के खतरात को कम करने और उसके बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक नेपाल तिब्बत में तबरकुन अचानक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1355 हो गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां खासतौर से भूटिकोशी और त्रिशूली दरिया कॉरिडोर से मुत्तसिल पन बिजली प्रोजेक्टों में लापता अफराद की खातिर तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। नेपाल में सैलाब में जान गंवाने वालों की याद में आज कौमी शोक का एहतमाम किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अखबार मशरक प्राइवेट लिमिटेड, जो एक उर्दू रोजनामा है, न्यूज उसके डायरेक्टर और टीएमसी रुकने पार्लियामेंट नदीमुल हक से मुतालिक एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। ईडी ने कहा है कि उसने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। जांच एजेंसी के मुताबिक यह मामला उन इल्जामात से मुतालिक है जिनमें फिरकावराना कशीदगी को बढ़ाने वाले मफाद के इशात और तशहीर का दावा किया गया है। इस मामले में गैर कानूनी लेनदेन, बेहिसाब नकद लेनदेन और मुश्तबा जराये से फंडिंग के इल्जामात भी शामिल हैं। खवातीन और अतफाल की तरक्की की मरकजी वजारत की जानिब से बुध के रोज नवें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का आगाज किया जाएगा। इस साल इस मुहिम का मौजू है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, और इसके तहत आंगनवाड़ी मराकज के जरिए तगजिए को मुस्तहकम करने, सेहत देखभाल और शुरुआत में ही सीखने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह हर सितंबर में तगजिए को अवामी तहरीक बनाने और सुपोषित भारत को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों के हिस्से के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कल तक बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और मुल्क के शमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का आज आगाज हो रहा है। इस 4 रोजा फेस्टिवल में 40 ममालिक से 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वो 35,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में मुनहदिम हुई इमारत में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। साउथ जोन एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर और 4 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम जीवियर बखीर के साथ बाहमी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया गैर यकीनी के सिलसिले में फिक्रमंद है, भारत और लग्जमबर्ग के पुरातमाद रिश्ते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गोवा में मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत कर रहे हैं और आईएमडी ने कल तक बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadeemul Haq's Urdu Daily over money laundering. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of Northeast till tomorrow. And in tennis, defending champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz storm into quarterfinals of US Open. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. The council comprises Goa, Gujarat and Maharashtra along with the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. We have more from our correspondent.
3: Goa CM Pramod Sawant, Gujarat CM Bhupendra Patel and Maharashtra CM Devendra Fadnavis are among those participating in the meeting. Representatives from Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu are also taking part. Issues of common concern between the center and the states are on the agenda, including matters requiring joint action. After the meeting, Home Minister Amit Shah is scheduled to attend the function for presentation of President's Police Colour to the Goa Police. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panaji.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in an era where the whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Dr. Jaishankar said this while meeting Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of Luxembourg, Xavier Bettel, in New Delhi this afternoon. Dr. Jaishankar recalled his visit to Luxembourg in the beginning of this year. The External Affairs Minister said trade, investment, financial cooperation have been at the heart of the relationship.
4: It's a great pleasure to welcome you and your delegation to India. Your visit, along with, I believe, your Minister of Economy, reflects the growing, deepening partnership between us. Ours is a very trusted relationship. It is a relationship we've done a lot, where we have the confidence in being able to do even more. And particularly, I think in terms of supply chain resilience, diversification, and now with the free trade agreement ratification, likely in the coming future.
2: In his remarks, Xavier Bettel said Luxembourg has a trusted and honest relationship with India.
5: As you said before, we have a good relationship. We have also economic ties. We are building on that. The Minister of Economy has another meeting for the moment where we, I'm sure, will be able to deepen also in the next weeks and months.
2: Mr. Bettel arrived in New Delhi in the wee hours today on a three-day visit to India. The death toll in the Satya Niketan building collapse in New Delhi has reached 7. All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi informed that a total of 12 victims were brought to the hospital. Of them, 6 died and 1 later succumbed to injuries. AIIMS added that 3 individuals who were rescued are in critical condition, while 2 are stable. Of them, 1 has been discharged. Meanwhile, the Delhi government has suspended the NCD Deputy Commissioner of South Zone Rakesh Kumar, Superintending Engineer Ranveer Singh, Executive Engineer Lalit Kumar, Assistant Engineer Sunil Chauhan and a Junior Engineer following the Satya Niketan building collapse. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today again visited the site of the collapse to review safety measures and the ongoing rescue operations. Talking to reporters, she said around 80% of the debris has been cleared from the site of the decades-old multi-story building.
6: Around 80% of the debris has been removed. Only debris equivalent to the basement levels remain. So far, 12 people have been found. We are in touch with the parents of all of them and are making every possible effort to ensure that they do not face any difficulties. Action will be taken against the owner of the building. All dangerous buildings in the surrounding area will also be identified and demolished.
2: Meanwhile, an FIR has been registered against the building owner. The Delhi Chief Minister's office said directives have been issued to immediately seal illegal 5-storey buildings in Delhi. The National Disaster Response Force, NDRF Inspector General Narendra Singh Bundela said the NDRF is continuing its search and rescue operation at the site of the building collapse in New Delhi's Satya Niketan area. Talking exclusively to Akashwani News, Mr. Bundela said NDRF is using specialized equipment to remove concrete slabs and stabilize the collapsed structure.
4: So far, 12 people have been evacuated from that site. We have taken input from the local police administration and the community while doing the rescue operations. So how many are trapped inside? We don't have any specific figure. So we are just going one by one, removing the debris and checking.
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today

0: सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
1: डॉ जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
4: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
5: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा।

0: ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
1: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
2: स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन में बेसिकली ब्लीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो पैसा सीमेंट और कॉन्क्रीट काटने के लिए लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहां पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करते हैं, और डिटेक्शन सिस्टम जिसमें केनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट एआईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
5: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहाँ कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
6: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर

0: भरतपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुए हैं। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में अरिना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त अरिना सबालेंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नम्बर है 01123108123717176 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरिना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, आप अपने घड़ी का वक्त मिला सकते हैं और हमारे स्टूडियो घड़ी में वक्त हुआ है 2:30 और 25 सेकेंड और यह वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। आज के हमारे कलाकार हैं बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर बी आर इशारा।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर दोस्तों इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है कि कलाकार, जिसमें बात हो रही है बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर बीआर इशारा की। दोस्तों बीआर इशारा एक बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और साथ में पटकथा लेखक भी थे, जिन्हें खास तौर पर मुख्य रूप से 1970 के दशक की बोल्ड और लीक सेट कर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने 1964 से 1996 के बीच लगभग 35 बॉलीवुड की फिल्में बनाई और अपनी फिल्में जिनमें चेतना, लोग क्या कहेंगे, मिलाप, मान जाइए, घर की लाज, वो फिर आएगी, सौतेला भाई, दिल की राहें, मेरे हम सफर, दो कैदी, एक नजर, एक नारी दो रूप और धरती कहे

के जैसी फिल्में थी। दोस्तों बिहार इशारा बॉलीवुड के एक पॉपुलर फिल्म मेकर्स में से एक थे और इसके साथ ही वो फिल्म इंडस्ट्री के एक मंझे हुए स्क्रिप्ट राइटर भी थे। 70 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में बोल्ड कंटेंट से धूम मचाई। असल में बिहार इशारा ही वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कम बजट में बोल्ड फिल्में बनाने का जो ट्रेंड था वो फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए थे। उनकी एक ऐसी पहली सुपरहिट फिल्म चेतना थी जो 1970 में रिलीज हुई। दोस्तों एक युवा कॉल गर्ल की इस कहानी ने पूरे देश में उस वक्त तहलका मचा दिया था। फिल्म में रेहाना सुल्तान, शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन जैसे कलाकार थे। आइए आपको सुनाते हैं इसी फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में, जिसे लिखा नक्शलाल पुरी ने और संगीत दिया था सपन जगमोहन ने।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और जिसमें आज बात हो रही है पीआर इशारा की। दोस्तों पीआर इशारा जी का जन्म चिंतपूर्णी ऊना हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर 1934 को हुआ। बॉम्बे में अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर छोड़ने के बाद वो एक फिल्म डायरेक्टर बन गए, पर यह सब

उनके लिए इतना आसान नहीं था। इससे पहले उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में चाय देने तक का काम किया, फिर बाद में फिल्म से जुड़े कुछ छोटे मोटे काम वो करने लग गए। और कुछ उस वक्त कैसे डायरेक्टर्स थे जिनको असिस्ट करने की भूमिका तक वो पहुंच गए। उन्होंने बासु भट्टाचार्य के अलावा दुलाल गुहा जैसे फिल्म डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। उन्होंने शुरुआत में कई लेखकों की मदद भी की और बाद में वो खुद एक बेहतरीन लेखक बन गए। और दोस्तों आपको बता दें कि बीआर इशारा जी का असली नाम रोशनलाल शर्मा था। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बीआर इशारा रखा। दोस्तों अब हम आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में प्रोग्राम का ये अगला गीत।

दोस्तों, प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, बी आर इशारा जी को बोल्ड और समाज में बर्निंग इश्यूज पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में बोल्ड फिल्मों की शुरुआत की। जरूरत और चेतना जैसी फिल्मों से उन्होंने 8वें दशक के आरंभ में हिंदी फिल्मों के जो पारंपरिक ऑडियंस थे उनको झकझोर दिया। वो अक्सर नए कलाकारों को लेकर बोल्ड फिल्में बनाते थे। दोस्तों, बी आर इशारा जी को एक ऐसे डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है जिन्होंने उस दौर में जो स्ट्रगलिंग और न्यू कमर एक्टर एक्ट्रेसेस थे उनको मौका दिया, जिनमें

हैं रेहाना सुल्तान, परवीन बॉबी, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, रीना रॉय, अनिल धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, रजा मुराद, डैनी, विजय अरोड़ा और राज किरण जैसे कलाकारों के करियर के शुरुआती दौर में बहुत बड़े बड़े मौके दिए। और दोस्तों, सुनने में आता है कि एक्ट्रेस परवीन बॉबी को सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो बी आर इशारा जी ने ही दिया था।

दोस्तों, बीआर इशारा जी 70 के दशक के वो फिल्म मेकर थे जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों से क्रांति ला दी। उन्होंने कम बजट में सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाने का जो ट्रेंड है वो शुरू किया। उस दौर में वैश्यवृत्ति जैसे मुद्दों पर समाज की सच्चाई को इतने बोल्ड अंदाज में फिल्मों में प्रस्तुत करना अपने समय से काफी आगे माना जाता था। दोस्तों, बीआर इशारा ने रिश्तों, सामाजिक वर्जनाओं और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को फिल्मों में उजागर किया। उन्होंने साल 1972 में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के साथ फिल्म एक नजर बनाई, जिसमें एक युवा कवि वैश्यवृत्ति को मजबूर युवती से विवाह करना चाहता है। और इसी फिल्म का आखिरी गीत जो इस प्रोग्राम का है वो हम आपको सुनवाते हैं, आवाजें किशोर कुमार और साथियों की है।

और दोस्तों अब अपने दोस्त अनुपम हरियाणवी को इजाजत दीजिए, कुछ ही पलों में आपके लिए मैटिनी मेलोडीज ये प्रोग्राम लेकर आएंगी अंजू पांडे।

हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सामने आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे कहकशां प्रोग्राम के तहत फिल्म आदमी और इंसान की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है अनवार अहमद ने। 4:00 से आप लोग सुन सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले इन प्रोग्रामों का, जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: एम बी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। यूक्रेन ने रूस यूक्रेन लड़ाई को खत्म करने की खातिर कीव में अमरीका के साथ बातचीत की। ईरान ने अब नए हुर्मुज से बाहर एक नए पाबंदी वाले इलाके का ऐलान किया है। नेपाल में आए तबाहकुन अचानक सैलाब में हलाक होने वाली की तादाद बढ़कर 1355 हो गई है। चौथे अक़वामे मुत्तहिदा आबोहवा से मुतालिक हफ्ते का बाकू में आगाज हो गया है, जिसमें आबोहवा से मुतालिक इकदामात के लिए रकम इकट्ठा करने और पेरिस माहदे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। और वजीर खारजा डॉक्टर एजय शंकर ने लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम जीवर बेटेल्ट के साथ बाहमी मुलाकात की। अब खबरें तफसील से। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन तनाजे को खत्म करने की खातिर कल कीव में अमरीका के खसूसी नुमाइंदे स्टीव वनकाफ और जेयर किशन के साथ बातचीत की। इस मीटिंग में इलाकाई मामला सिक्योरिटी से मुतालिक यकीनदानी यूक्रेन के मुस्तकबिल इक्तिसादी बहाली के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वनकाफ ने कहा कि अमरीका सिफारती हल के तहत पुरअज़्म है, जबकि क्वेश्चंस ने रूस के मकासद पर गौर करने की जरूरत पर जोर दिया। सदर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की फौजी ताकत किसी भी सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए मरकजी हैसियत की हामिल होगी। उन्होंने आइंदा मुशावरतों में यूरोप ममालिक की शिरकत का खैर मकदम भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भारत

मनीष यानी अदाकार धर्मेंद्र और जयकिशन यानी अदाकार फिरोज खान बेहद अजीज दोस्त हैं और एक जान दो कालिब की तरह रहते हैं। जय मनीष की माँ यानी अदाकारा रेणु पराय को अपनी माँ की तरह चाहता है और छोटी बहन रेणु को अपनी सगी बहन की तरह अजीज रखता है। जय का छोटा भाई गोपी और रेणु एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और जय को उनकी इस चाहत का अंदाजा है। जय एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है जो तामीरात से मुतालिक है। जय ने कई बड़े बड़े पुल और डैम तैयार किए हैं और सरकारी महकमों में जय को काफी इज्जत हासिल है। जय मनीष को इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए विलायत भेजता है और उसकी गैरहाजिरी में मनीष की माँ और बहन की पूरी देखभाल करता है। मनीष अपनी तालीम मुकम्मल करके हिंदुस्तान वापस आता है तो सब खुशी से फूले नहीं समाते। मनीष और उसकी माँ जय के बेहद एहसानमंद हैं, मगर जय इस सब को एहसान नहीं मानता बल्कि उसे दोस्ती के हक से ताबीर करता है। हिंदुस्तान वापस आने पर मनीष जय को रीटा यानी अदाकारा मुमताज से मिलवाता है जो उसे विलायत पे मिली थी।

फरमाते। मनीष और उसकी मां जय के बेहद एहसान मंद है, मगर जय इस सबको एहसान नहीं मानता बल्कि उसे दोस्ती के हक से ताबीर करता है। हिंदुस्तान वापस आने पर मनीष जय को रीटा यानी अदाकारा मुमताज से मिलवाता है जो उसे विलायत पे मिली थी। रीटा एक आजाद ख्याल लड़की है जो किसी तरह की बंदिशों पर यकीन नहीं रखती और हर लम्हे को महज एक इत्तेफाक में नाम देती है। जय मनीष की वापसी की खुशी में एक पार्टी का एहतमाम करता है और रीटा अपनी जिंदगी की फिलॉसफी को एक गीत की शक्ल में पेश करती है।

जय मनीष को अपनी कंपनी में इंजीनियर की जगह पर फाइज कर देता है। जय जी जान से अपने काम पर लग जाता है। मनीष एक डैम की तामीर करा रहा है जो न सिर्फ कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा काम है बल्कि मुल्क की तरक्की में भी एक अहम किरदार अदा करेगा। इस डैम पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की तालीम और सेहत की जिम्मेदारी एक सोशल वर्कर मीना यानी अदाकारा सायरा बानू ने ली हुई है। वो बच्चों की देखभाल और मजदूरों की फलाह बहबूद में हर वक्त मसरूफ रहती है। बस्ती के सभी मजदूर मीना की बेहद इज्जत करते हैं और कद्र करते हैं। मनीष के दिल में जय के लिए बेहद इज्जत पहले ही थी, मगर इस डैम पर काम करने के बाद मनीष के दिल में जय की अजमत और बढ़ जाती है, क्योंकि जय भी मुल्क की तरक्की को बेहद अहमियत देता है।

वह रीटा को अपनी सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज कर लेता है। रीटा दिन में जय पर फरेफ्ता हो जाती है। जय एक पुख्ता बिजनेसमैन की तरह रीटा का इस्तेमाल करता है और रीटा उसकी बिजनेस के अहम राज अपने दिल में छुपा लेती है। जय और मनीष फैसला करते हैं कि रेनू और गोपी की मंगनी करके दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। गोपी और रेनू की आरजू पूरी हो जाती है। गोपी एयरफोर्स पायलट की

एक मरतबा जय शिमला जाता है जहां उसे सरकारी महकमे से अपने बिल की अदायगी करानी है। मीना के वालिद खन्ना साहब यानी अदाकार मनमोहन कृष्ण इस महकमे के इंचार्ज हैं। शिमला में जय की मुलाकात मीना से होती है और जब उसे मालूम होता है कि वो उसी के डैम के मजदूरों के लिए काम करती है तो उसे हैरत होती है कि ये मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई। जय मीना से शादी करने का फैसला कर लेता है। जय मनीष को भी शिमला बुलाता है और उसे मीना को दिखाता है और अपने फैसले से आगाह करता है। मनीष के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। जय के एहसानात उसके जबान पर ताले लगा देते हैं। शिमला से वापसी पर जय एक पार्टी देता है जिसमें खन्ना साहब और मीना को भी मदऊ करता है और मीना का तारुफ मनीष से कराता है, मगर मीना और जय को नहीं मालूम कि जय का यह फैसला उन सबकी जिंदगियों में एक इनकलाब बरपा कर देगा।

जय मनीष की मां के जरिए मीरा के लिए शादी का पैगाम भेज देता है। खन्ना साहब इस रिश्ते को कबूल कर लेते हैं, मगर जब मीना को मालूम होता है तो वो साफ इंकार कर देती है और जय के ऑफिस में जाकर उसे बहुत सख्त और सुस्त सुनाती है और इस शादी से इंकार कर देती है। रीटा को मनीष और मीना के ताल्लुकात का इल्म हो जाता है और वो ये हकीकत जय पर आश्कार कर देती है। जय मनीष को जिम्मेदार ठहराता है और जय के दिल में मनीष के लिए नफरत पैदा हो जाती है। मीना का इंकार जय के दिल में दोस्ती की जगह दुश्मनी का बीज बो देता है। एक मर्तबा डैम की एक दीवार गिर जाती है और कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं। मनीष काम रुकवा देता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि मिलावटी माल का इस्तेमाल किया गया है। इस मसले पर जय और मनीष में तनाजा हो जाता है और जय मनीष को नौकरी से निकाल देता है। जय के दिल में नफरत इस शिद्दत से घर कर लेती है कि वो अपने छोटे भाई की रेनू से मंगनी भी तोड़ देता है और मनीष से कंपनी का घर भी खाली करवा लेता है और यूं जिंदगी एक नए रंग में सबके सामने नमूदार होती है, एक ऐसे रंग में जिसका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया था।

0: मनुष्य दूसरी नौकरी की तलाश में भटकता रहता है मगर उसे कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि जय ने अपने अस्त्र रसूख से सबको जय के खिलाफ वरगला दिया है मगर जय भी हिम्मत नहीं हारता। एक सरकारी महकमे में इंजीनियर की जगह के लिए अर्जी देता है। जय यहां भी कोशिश करता है कि मनीष को कामयाबी न मिले मगर जय की काबिलियत के आगे जय का मंसूबा नाकारा साबित होता है और वो खन्ना साहब के महकमे में फायर्स कर दिया जाता है। गुलाम रसूल मुल्क में रिश्वत के बाजार पर अपने खैरात का इजहार करता है और कुछ देर के लिए मनीष के दिल से गमों का बोझ हल्का हो जाता है।
1: बिना सिफारिश मिले नौकरी बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुगनाम।

एक मरतबा जय की कंपनी के ठेकेदार सभरवाल यानी अदाकार मदनपुरी का तैयार किया हुआ पुल टूट जाता है। हुकूमत इस पुल के टूट जाने की वजूहात मालूम करने के लिए एक तफ्तीश कमेटी बनाती है, जिसमें जस्टिस देसाई यानी अदाकार नाना पलसेकर के साथ मनीष इंजीनियर की हैसियत से शामिल है। दरहकीकत जय सभरवाल के साथ मिलकर सरकारी माल की चोरी करता है और तामीरात में गैर मियारी माल का इस्तेमाल करता है। तफ्तीश के लिए जस्टिस देसाई सभरवाल को बुलाते हैं। सभरवाल ये जान लेता है कि वो एक बहुत ही ईमानदार इंसान है और उन्हें किसी भी सूरत में खरीदा नहीं जा सकता। सभरवाल और जय एक मंसूबा बनाते हैं और जस्टिस देसाई का कत्ल करा देते हैं। मनीष को जस्टिस देसाई की एक डायरी मिलती है, जिसमें सभरवाल के खिलाफ उन्होंने काफी सबूत जमा हो जाने का जिक्र किया है, मगर मनीष को अभी भी जय के बारे में कुछ इल्म नहीं है। मनीष इस तफ्तीशी कार्रवाई को मुकम्मल करने का अज़्म करता है। अब सभरवाल मनीष को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले उसे वो डायरी चाहिए जो उसको मुजरिम साबित कर सकती है। इसके लिए वो एक रोज मनीष को अपने यहां बुलाता है और रीटा की मदद से उसे देर रात तक अपने यहां रोक लेता है, ताकि उसके आदमी मनीष के घर की तलाशी लेकर वो डायरी हासिल कर सकें।

मगर सभरवाल के आदमियों को मुकम्मल डायरी नहीं मिलती और उसके अहम सफे मनीष को मजीद सबूत जमा करने में मददगार साबित होते हैं, जिन्हें वो पहले ही डायरी से निकाल चुका है। मनीष तमाम सबूत जमा करके खन्ना साहब को फोन कर देता है कि उसने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और वो मुजरिमों को बेनकाब करने आ रहा है, मगर वापसी पर ट्रेन में उस पर कातिलाना हमला होता है और तमाम सबूत उससे छीन लेने की कोशिश की जाती है। इस हमले में रीटा भी शामिल है। मनीष इस कातिलाना हमले से खुद को बचा लेता है, मगर रीटा की हकीकत उस पर आश्कार हो जाती है। वो रीटा को बेहद शर्मिंदा करता है और उसे सरकारी गवाह बन जाने की हिदायत करता है, मगर रीटा मनीष से इस तफ्तीश को बंद कर देने की ताकीद करती है और उसे बताती है कि इस तमाम सिलसिले की सबसे अहम कड़ी खुद उसका दोस्त जयकिशन है। अगर उसने वो तमाम सबूत पेश कर दिए तो वो एहसान फरामोश कहलाएगा। मनीष को एक धक्का सा लगता है और उसे यकीन नहीं आया कि जय मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। मनीष कमिश्नर के सामने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करता और बताता है कि पुल का गिरना एक कुदरती हादसा था। खन्ना साहब और तमाम कमीशन के मेंबर मनीष को झूठा मानते हैं और उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का हुक्म देते हैं। उधर सभरवाल और जयकिशन अपनी कामयाबी पर खुशियां मना रहे हैं। मीना जय के पास जाती है और उसे बताती है कि किस तरह उसने मनीष की जिंदगी खराब कर दी। मीना यह भी बताती है कि मनीष मीना से प्यार करता था और जय उन दोनों के दरमियान में हायल हो गया था। इस गलतफहमी को दूर होते ही जय को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अदालत में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जब वो अपने और साथियों के नाम बताने ही वाला था तो सभरवाल उसे गोली मार देता है। जय मनीष और मीना से माफी मांगता है और शर्मिंदगी का एहसास अपने साथ लिए इस दुनिया फानी से कूच कर जाता है। और यूं एक आदमी के मरने के बाद एक इंसान का जन्म होता है।

घी का क्या कसूर इस फिल्म का नाम आप सुन रहे तेल का याग्निक और कुमार सानू के बाद मौसीकारी नदीम शर्वन और सामने सुनिए राजेश रोशन की मौसीकी से जय नगमा किशोर कुमार की आवाज में फिल्म है याराना।

0: रेडियो दा सिराई की प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजर है तुहाडी सेवा विच सिराई की प्रोग्राम घिन के। उम्मीद करेंदी हां तुसा सारा ठीक ठाक होसो। तवला शुरू करेंदी हां प्रोग्राम। आज मैं तुहा को सब तो हल्ला एक वार्ता सुनवेंदी पई हां। साडे धरोहर लाल किला दिल्ली, वार्ताकार हिन सुदर्शन सतीजा।
1: धोने ते भरा आप सब को सुदर्शन सतीजा दी नमस्ते। भारत दा लाल किला सिर्फ दिल्ली दा ही नहीं, एक पूरे भारत दी शान है। नाल ही ए पूरे मुल्क विच एक मन्नी हुई इमारत है। वैसे ते हिंदा असली नाम किला ए मुबारक है, लेकिन आजकल ही को सारे लाल किले दे नाम तो जानते हैं। मुगल शासन दे शाही परिवार दे लोग हिकु मुबारक किला भी आखेंदे हन। ए लाल किला इतिहास दी बड़ी बड़ी घटनावां दा गवाह है, क्योंकि हिने बहु कुछ दिठे। दिल्ली दा लाल किला पुरानी दिल्ली दे चांदनी चौक दे सामने है। आज ए भीड़ भार आले इलाके नाल घिरया होया शांत खड़ोते। सन 1627 विच जनन मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी ते बैठे हन, ता हुन टाइम मुगल साम्राज्य दी राजधानी आगरा है। लेकिन बादशाह को आगरा दी गर्मी रास ना आई, ता उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनावन दी सोची। सवाल पैदा थया कि दिल्ली वे किला किथे बनाया वने। बहुत सोच विचार दे बाद दिल्ली दे तालकटोरा ते रायसेना दी पहाड़िया ते किला बनावन दी सोची। लेकिन बादशाह दे दू नामी कारीगर उस्ताद हमीद ते उस्ताद अहमद ने सुरक्षा को देखदे हुए जमुना नदी दे किनारे किले को बनावन दी सलाह दिती, जो बादशाह को बहुत पसंद आई। तदू आर्किटेक्ट उस्ताद हामिद ते उस्ताद आसिफ ने हिंदा नक्शा बना के हिंको असली जामा पवा दिता। बादशाह को लाल ते चिट्टा रंग बहु पसंद आई, नाल ही वड्डी वड्डी इमारतां बनावन दा भी शौक आई। 13 मई सन 1638 विच लाल बलवा पत्थरा नाल किले को बनावन दा काम शुरू कर दिता। ए किला सलीमगढ़ दे किले दे नाल ही बनन लग पया। 10 सालां तक कारीगरां ते शिल्पकारां दी कई मेहनत दे बाद लाल किले दी आलीशान इमारत बन के तैयार थी गई। हिंदे सामने एक शहर वसाया गया, जिना ना शाहजहांआबाद रखा गया, जेको असे आज दिल्ली दे नां तो जानदे हां। ही आलीशान किले दे तैयार थेवन दे टाइम बादशाह काबुल विच हन। खबर मिलदे ही बादशाह उत्थो चल पए ते जोशिया ते नजूमिया दे कड़े होए मुहूर्त ते जमुना दे सामने बने लकड़ी दे पुल तो थींदे होए दरियाई दरवाजे तो किले विच पहुंच गए। उन्हां दे स्वागत वास्ते किले विच एक बहुत वड्डा स्वागत समारोह किया गया। ही समारोह दी शानो शौकत ते सजावट देखने वाली है। सुरक्षा को देखते हुए कि किले ते कोई आक्रमणकारी चढ़ाई ना कर सके, हिंदा निर्माण किया गया। ही करके जमुना नदी दे सामने किले दी दीवार दी ऊंचाई 60 फुट ते बाकी 3 पासियां दी दीवार 110 फुट ऊंची रखी गई। किले दे एक पासे ते जमुना नदी हाई ही ते बाकी 3 पासे चोई खंदक बनाई गई। खंदक विच पानी भरिया होया है ते रंग बिरंगिया मछलियां भी हन। हिंदे सामने मैदान विच हरी हरी घास आई। 110 फुट दी दीवार 75 फुट खंडक दी सतह तो उत्ते ते बाकी थल्ले है। लाल किले ते सलीमगढ़ दे किले को आपस विच जोड़न वास्ते एक पुल बनाई गई। सलीमगढ़ दे किले को शेरशाह सूरी दे पुत्र सलीम शाह ने सन 1546 विच बनवाया है। बादशाह शाहजहां ने सलीमगढ़ दे किले को कैद खाने वास्ते इस्तेमाल किया है। सुरक्षा को भी देखते हुए कि किला आक्रमणकारियों को दिखाई ना देवे, ते हिंदे सामने एक आड़ वास्ते दीवार औरंगजेब ने बनवा दी। ही दीवार को घोंडाली दीवार आखेंदन। किले दा मुख्य दरवाजा लोहरी गेट है, क्योंकि बादशाह को लाहौर नाल बहुत प्यार है। ही करके मुख्य दरवाजे दा नाम लोहरी गेट रखा गया। किले दे दक्षिण पासे आले दरवाजे दा नाम दिल्ली गेट रखा गया। ए दरवाजा जामा मस्जिद दे सामने पौंदे। बादशाह दिल्ली गेट तो ही जामा मस्जिद विच नमाज पढ़न वास्ते वेंदे हन। सन 1903 विच लॉर्ड कर्जन ने ही दरवाजे दे दुआ पासे पत्थर दे दू वड्डे वड्डे हाथी खड़े करवा दिते हन। हुण ही किले दिया कुछ बड़ी गाली भी तुहाडे सामने पेश करेंदी हां। ही किले दे 5 दरवाजे हन, लेकिन मुख्य दरवाजा लोही गेट ही है। ही दरवाजे तू अंदर वंज के छत्तर बाजार आंदे। छत्ते बाजार दे दुआ पासे दुकाना ते विच बंडा सारा चौक है। हूं टाइम हिना हटिया ते लोड़ दा सारा समान मिल वेंदा है, लेकिन आजकल सैलानिया दा आकर्षण केंद्र है। इत्थो अगे नकार खाने दी दो मंजिला इमारत है। हिंदे मैदान दे विचो विच एक नहर बांधी है, जेकू नहर ए

0: कायम है। हर साल स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हिंदी प्राचीर उत्ते देश दे प्रधानमंत्री तिरंगा फरेंदे हन ते देश दी जनता दे नाते संदेश भी देंदे हन। इत्थां के हुन हर रोज शाम को लाइट एंड साउंड दा प्रोग्राम भी थिंदे जिंदे विच लाल किले दे इतिहास को दस्या जांदा है। ए भारत ते भारत वासियां वास्ते बहु खुशी ते गर्व दी गल है कि सन 2007 विच दिल्ली दे लाल किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच शामिल किया गया। इत्थों ही पता चल दे कि ए किला पूरे संसार विच मनी हुई एक आलीशान इमारत है।
1: साडे धरोहर लाल किला दिल्ली। हुने तुसा सुदर्शन सतीजा दी ए वार्ता सुनदे पए हवे। ए वार्ता तुहा को किंज दी लगी साको खत घाल के दसना। हुन सुनेंदे हां कुछ सिरैकी गीत। सुनो गिनो हे गीत, लगी वाले नु नींद ना आंदी, तेरी किवें अख लग गई। कलाकार हिन अबिदा परवीन।

0: आप निकली जाती हाँ डार्लिंग पता मैंने तो हम थोड़ी होर भी निगरानी रखनी पै रही है
1: निगरानी
0: पढ़ो कि जाओ जी भोले ना पढ़ो थोड़े वर्ग दिल फैक पति जहनमिक पर्सनैलिटी तेरी पत्नी है जेडी निगरानी नहीं करेगी और कि तू मेरी साउंड कर
1: तुम मस्ती कर दी मंजू तुम क्या सड़िया लस्सी भी फूका मार मार के पींदा है बाकी पर्सनैलिटी वाकई मेरी लगती है नाले गंज करके तो मेरा रूप कुछ ज्यादा ही बदल जाना सुना तो
0: लोग कहते ने गंजापन अमीरी की निशानी
1: ठीक कहते ने मैं कहना गरीब हूं चंगी नौकरी है कार है कुर्सी है
0: ठीक है जी यार पर देखो ना मिसेस वर्मा उस दिन मैं ताना दे रहे सुन के तुसी कंजूस हो
1: कंजूस तू तो अपने पति बारे सब कुछ
0: हुआ नहीं डार्लिंग मैं किस तरह सुन सकती सा मैं उसने काफी सुनाई पर डार्लिंग प्रैक्टिकल प्रूफ तो देना ही पैदा है ना
1: प्रैक्टिकल प्रूफ
0: हाँ प्रैक्टिकल प्रूफ इस वास्ते आज मैं मिसेस वर्मा नाल शॉपिंग पे जा रही हूँ दिखा जाऊंगी उन्हें असी कंजूस नहीं डार्लिंग डार्लिंग मैंने 1000 रुपया तो देना
1: सा 1000 रुपया है ही नहीं
0: चेक कट देना
1: चेक अच्छा अच्छा चेक तो मैं कट देना कितने डार्लिंग चेक तो मैं कट देना पर देखो मेरा 500 नाल काम नहीं बनेगा
0: 500 रुपए
1: प्लीज 500 रुपए देखो ना पिछले हफ्ते उसी शॉपिंग पे
0: ठीक है चलो 500 रुपए का ही कट दो
1: चलो चेक चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ
0: Bye-bye.
2: Hello, Rajesh. भाई की गल है
1: बड़ा मुंडा लटकाया आज अपने गल झगड़ा हो गया कुछ ना कुछ यार मैं तो दुखी हो गया
2: तुम दुखी
1: वेरी स्ट्रेंज मेरे वाल देख यार अपनी बीवी नाल कितनी अंडरस्टैंडिंग है मेरी ओ मेरी हर गल मनती है कभी कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं लो वृक्ष किस्मत है वर्मा के तेरी बीवी तेरी हर गल मन जाती है अच्छा तो सदा हूं मैनू ओदी ही मननी पैंदी है कभी जबरदस्ती तो कभी चिकनिया चोपड़िया गल सुन वर्मा तू अपनी बीवी की शॉपिंग की आदत ते तेन कोई एतराज
2: नहीं बिल्कुल नहीं एब्सोल्युटली नॉट ताइए बच्चों ताइए दूजे का घर बर्बाद कर रहे
1: हैं मतलब सारा स्यापा तेरी मोटी का पाया होया अज तेरी मेन साहब साड़ी मेन साहब नाल शॉपिंग जा रही है
2: क्या शॉपिंग जा रही है
1: हाँ
2: शॉपिंग कर जान तो रोकना मेरा कूड़ा हो जाएगा मैं अज भी मैं अपनी तनखा चेक दे के आया
1: मैं तो सस्ते चुट गया
2: सर
1: 500 रुपए च
2: मैं तो 500 रुपए का चेक
1: चेक तुम ही दिता तो मैं भी चेक ही दिता आई
2: तरकीब
1: हाँ गल सुन जे असी बैंक दे मैनेजर नू फोन करके चेक दी पेमेंट रुकवा दी है तो फिर शायद दोनों शॉपिंग ते नहीं जान गया
2: ठीक है चल छेती कर फोन कर दे कितने पहले ना पैसे कटवा लेन
1: हाँ आ करते हैं हेलो मनीष साहब जी नमस्ते मैं राजेश बोल रहा हाँ जी ये कम से छोटा जा कि आज थोड़े को दो चेक पेश होंगे एक मेरा ते एक वर्मा दा
2: हाँ
1: मिस्टर सीडी वर्मा दा इन दोनों की प्लीज जरा स्टॉप पेमेंट करवा देना शामी मैं तुम दस जाएगा की गल सी बाकी जरा पुन्ना ने हूने बुलवा लो अपने जरा क्लर्क नूं कह दियो थैंक यू सो मच थैंक यू यार वर्मा लगता मंजू कर रही है
2: हाँ यार साड़ी तरकीब कामयाब रही है
1: हाँ भाई हफ्ता आइडिया किधर सी मेरा मंजू डार्लिंग मंजू कितने हो तुसी
3: कमिंग

0: वर्मा जी भी नाल में। नमस्ते वर्मा जी।
1: नमस्ते भाभी जी, सुनाओ की हाल चाल ने।
0: ठीक है राजेश डार्लिंग, आज बड़ी अजीब गल हुई। ओ जरा चेक तुसी दिता सी ना, ओ डिसऑनर हो गया।
1: सच्चे चेक डिसऑनर हो गया?
0: मजे की गल है कि मिसेस वर्मा ने भी पेमेंट नहीं मिली चेक ते।
1: सच भाभी जी? थैंक गॉड।
0: करना की से तुहाडा नाम कट सी, एडे वड्डे अफसर, एडे मशहूर आदमी, एडे ग्रेट पर्सनैलिटी दी बीवी होके उधार ना मिले। दुकानदार तो कहंदे ने बीवी जी भावे तुसी लाख रुपए का सामान ले जाओ, उधार ले आए।
1: तो तुसी उधार लेके आए हो?
0: हाँ डार्लिंग, पर डार्लिंग उधार उधार कर दे ना, पता ही नहीं चलिया किन्ने दी शॉपिंग हो गई। घर आके देखिया तो पता लगा, अज तो मैं 2000 तो भी वध दी शॉपिंग कर ली।
1: 2000 रुपए मारे गए
0: डार्लिंग? देखिया तुहाडा नाम, किसे होर नूं 2000 रुपए दा उधार थोड़ी मिल जांदा है।
1: ते भाभी जी फिर ना
0: वर्मा जी, मिसेस वर्मा ने तो कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली सी, सो उन्होंने टैक्सी करके घर जाना पिया।
1: क्या टैक्सी? मारिया गया, मैं लुटिया गया। राजेश देख, तनखा बचाना बचाना, राजेश कि तनखा तो हाथ तो बैठा। आए पानी,
2: आए शॉपिंग,
1: पानी शॉपिंग, पानी
2: शॉपिंग।

गुलों का आज है तुसी सुन रहे हो मीनू पुरुषोत्तम की आवाज। मीनू पुरुषोत्तम ते महेंद्र कपूर की आवाज आज तुसी सुनिया फौजी चाचा फिल्म चो गीत। मीनू पुरुषोत्तम की ही आवाज च सुन दिया अगला गीत आवाज ने मीनू पुरुषोत्तम दिलराज कौर ते महेंद्र कपूर दिया। फिल्म का नाम फौजी चाचा।

0: एक गुलोकार सस रहता है तुसी सुन रहे हो मीनू पुरुषोत्तम हरानो मीनू पुरुषोत्तम हरानी आवाज से सुन दिया अगला गीत फिल्म का नाम रांचन मेरा यार
1: नहीं किथे चली है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुद्दुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुद्दुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: समारोह गोवा के तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रूपये से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लक्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम, राम। और शाहिद भाई, जो कृषि का व्यवसाय है ना, वो इंसानों का सबसे पुराना व्यवसाय है। सबसे पहले उन्होंने कृषि ही करनी शुरू की, उसके बाद कृषि से ही अन्य व्यवसाय आरंभ हुए हैं।
1: वीरेंद्र भाई, बड़े पते की बात बताई आपने, 100% एकदम सही बात बता रहे हैं। और वाकई कृषि से पुराना कोई इतिहास है ही नहीं। मानव सभ्यता जब शुरू हुई, बल्कि इंसान धरती पे किसी भी रूप में आया, पैदा हुआ, उसके बाद पहला इतिहास कृषि का है। और अगर पहली तलाश करें तो आवश्यकताएं, चूंकि आविष्कार की जननी है, तो वो भोजन और पानी की तलाश है
0: जी।
1: ये दो चीजें बड़ी अहम है
0: जी। शाहिद भाई, जितनी भी अगर हम पुरानी सभ्यताओं को देखें, तो वो नदियों के किनारे ही पनपी, जहां मीठे पानी की नदियां थी, उनके पास ही सभ्यताएं बनी। और वहां सबसे पहले क्या हुआ कि खेती करनी शुरू की।
1: फिर उसके बाद धीरे धीरे कुनबे जुटे, धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन, और एक तरीके से कह लीजिए ना कि वो पूरा समुदाय बना, और इसी तरीके से पूरी दुनिया जो है कि परिष्कृत होती गई, विकसित होती गई, और आज यहाँ तक हम पहुँचे
0: जी। शाहिद भाई, जो खेती बाड़ी है वो दुनिया का आधार है, इसी से पूरी दुनिया का जो चक्र है वो चलता रहता है। और अब खेती भी इतनी बदल गई है कि इसमें किसान जो है नए तरीके अपनाते हैं,
1: आवश्यकताओं के अनुरूप जो है ना, कई तरह के रिसर्च होते हैं, संवर्धन होता रहता है, और ये सतत प्रयास है, सतत प्रक्रिया है। और इसी के नतीजे में आज ये देखिए कि हम गेहूं कितना ज्यादा उत्पादित कर रहे हैं। एक दौर था परदादा के जमाने में, लोग बताते थे कि इतना कम आटा पैदा हो, इतना कम गेहूं पैदा होता था कि कभी कभार जो है कि वो जब मेहमान आते थे, गेहूं की रोटी बनती थी, बाकी मोटा अनाज खाया जाता था, वो भी पूरा नहीं होता था
0: जी। शाहिद भाई, ऐसे ही जो हमारी खेतीबाड़ी की फसलें हैं, उनमें कई बार मूल्य कम होने की वजह से किसान है ना, उसको करना नहीं चाहते। लेकिन अगर उन्हें सही समय पे और उनकी फसल का सही मूल्य मिल जाए तो पौ बारह हो जाती है।
1: अरे बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मेरे पास बिल्कुल इसी मुद्दे पे एक जानकारी है ना, वो जानकारी जो है कि डॉक्टर श्रुति सेठी दे रही हैं, जिनसे बात कर रहे हैं अमित तेवतिया, और इस विषय का नाम है फसलों के मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक आमदनी
0: जी। तो सुनवाते हैं आपको ये बातचीत।
2: नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में कोई न कोई वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और ऐसी जानकारी साझा करते हैं जिसमें हमारे किसान भाई बहन हों, हमारे युवा साथी हों, जो आज कहीं भी रोजगार की दृष्टि से अपने को कुछ नया सोचने की श्रेणी में रखते हैं, तो हमारा कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आज हमने अपने कार्यक्रम में डॉक्टर श्रुति सेठी को आमंत्रित किया है। आप प्रधान वैज्ञानिक

0: से शुरू करते हैं कि मूल्य संवर्धन है क्या।
1: जी आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि क्या चीज होती है मूल्य संवर्धन। जब हम मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो उसका ये मतलब है कि हम किसी भी खाद्य उत्पाद को जो हम कटाई के बाद लेते हैं या जैसे हम दूध लेते हैं गायों से, उनको कैसे हम उपभोक्ता तक नए नए तरीके से पेश करें, कैसे उसको ऐसे एडिबल फॉर्म में दें। जैसे आपने धान की खेती करी तो धान आया आपके पास, वो खाने योग्य तो नहीं होता है, लेकिन जब तक हम उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो उसको हम खाने योग्य नहीं बना सकते। तो ये एक प्रकार का मूल्य संवर्धन है, कैसे किसी जो खाद्य उत्पाद है उसको हम कैसे खाने योग्य बनाएं। दूसरी चीज ये है कि हम उसकी कैसे भंडारण अवधि को बढ़ाएं। जैसे जब हम दूध दोते हैं तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता है, लेकिन जब हम उसकी पैस्टराइजेशन कर देते हैं या कम ताप पे रखते हैं तो वो हम ज्यादा देर तक उसका रख रखाव कर सकते हैं। ऐसे ही फल सब्जी, उनको ज्यादा दिन रखना है तो हमें कुछ प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण करना है ताकि हम ज्यादा दिन तक रख पाए। इससे क्या होगा, जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, मूल्य संवर्धन मतलब हम उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। जो भी आपकी उपज आई उसमें जितने की होगा उससे आपको कभी कभी 5 गुना या 10 गुना आमदनी होती है, तो वो मूल्य संवर्धन।
0: यानी कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि फसल को किसी अन्य उत्पाद के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाना मूल्य संवर्धन है। तो अब हम जब इतना समझ रहे हैं तो हमें सीखना है या हम कोशिश करेंगे कि जो मूल्य संवर्धन है वो किन किन फसलों में किया जा सकता है।
1: जी देखिए, सारी फसलों में हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। आजकल आप देखिए बाजरे का बहुत प्रचलन है, तो बाजरा आप ऐसे नहीं खा सकते
0: जी।
1: उसका आपको बाहर का छिलका उतारना है या उसके कोई प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने हैं, वो भी एक मूल्य संवर्धन है। कोई फल सब्जी जैसे टमाटर, आंवला, या अगर हम गोभी की बात करें, इन सब का अचार चटनी बनता है। फल लेंगे अगर तो जैसे सेब है, सेब का जैम बहुत प्रचलित है, या हम आम ले, आम का अमचूर सबसे ज्यादा प्रचलित है। हर घर में अमचूर इस्तेमाल होता है, हर घर में अचार आम का इस्तेमाल होता है। तो आप कोई भी फसल लें उनका आप मूल्य संवर्धन जरूर कर सकते हैं।
0: यानी कि हम तो कह सकते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, चाहे वो अपने खेतों में कोई भी फसल लगाए हुए हैं, बागवानी कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें आप मूल्य संवर्धन कर सकते हैं।
1: जैसे अभी देखिए गेहूं की बात करें, अगर हम गेहूं से हम आटा बनाएंगे तो वो एक मूल्य संवर्धन है। आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उससे जो आटा बनेगा उससे मैदा बनेगा, और मैदा से आगे जाके देखिए कई सारे बेकरी के उत्पाद बनते हैं, या आप भटूरा देखेंगे मार्केट में मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको अलग अलग विविध प्रकार के प्रोडक्ट्स देती है, ये एक मूल्य संवर्धन।
0: तो डॉक्टर साहब, जब हम मूल्य संवर्धन करने का विचार करें तो सबसे पहले आता है करें कैसे
1: जी।
0: तो जो हमारी वैज्ञानिक सोच है, जो आप अनुसंधान कर रहे हैं, लगातार देश के बेटे बेटियां लगे हैं अनुसंधान के क्षेत्र में, और आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो हम अपने किसान भाई बहनों तक कैसे पहुंचाएं कि हम किस प्रकार से मूल्य संवर्धन शुरू करें।
1: देखिए, सबसे पहली बात है, किसान भाई बहन अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो एक छोटी इकाई लगाएं और ये देख लें कि उनको कौन सा रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा उपलब्ध है। क्योंकि क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कत आती है, कहीं से दूर जगह से अगर आपको रॉ मटेरियल लेना है तो दिक्कत आएगी। आपके आसपास के खेत में क्या चीज अवेलेबल है, कौन सी क्रॉप अवेलेबल है, तो वो उसको लेके फिर मार्केट डिमांड देखें कि मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा प्रचलित है, उपभोक्ता को कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, उस चीज का व्यवसाय शुरू करना फायदेमंद होता है। क्योंकि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन आप हमारे किसान भाई बहन अगर पैसा खर्चेंगे तो उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा उनको, इसलिए जो आसपास फसलें उग रही हैं उन्हीं का चयन करें और उनको हम ये बोलते हैं कि प्रोसेसेबल वेराइटी लें। ताकि जैसे आम के केस में हमें ये चाहिए, अगर अचार डालना है तो उसका जो गिटक है वो पतली होनी चाहिए, गूदा ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे वो वेराइटी का चयन करें जो प्रोसेसेबल हो, जिससे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उससे आपको मुनाफा हो पाए। तो आसपास देखना पड़ेगा,
0: सीधा कहें कि लागत कम आए और उत्पादन अच्छा मिले, तो यही अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है कि किसान भाई घर बैठे अधिकतम लाभ कैसे कमाए। यही सोच है और इसी को लेकर के मूल्य संवर्धन पे बात चल रही है डॉक्टर श्रुति सेट्टी से। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की जब बात आती है
1: जी,
0: तो जो हमारे अनुसंधान संस्थान हैं या कृषि वैज्ञानिक केंद्र हैं, ऐसे में हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई बहन कहाँ संपर्क कर सकते हैं कि कैसे करें इसको, यदि वो सीखना चाहते हैं तो कहाँ इसका प्रशिक्षण मिल सकता है।
1: देखिए, हमारे भारतवर्ष में इतने सारे केवीके हैं, तो जिस भी राज्य से कोई भी किसान भाई बहन हमारा शुरुआत करना चाहते हैं प्रोसेसिंग की, कोई भी व्यवसाय लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो सबसे पास वाले केवीके में संपर्क करें
0: जी।
1: या कोई भी इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग कराती हैं, वहां पे शुरुआत करने से पहले आपको ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे, छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी, तब तक आप

0: क्वालिटी का ध्यान नहीं रख पाएंगे, एक अच्छा प्रसंस्कृत उत्पाद नहीं बना पाएंगे। अभी हमारे संस्थान में अगले महीने सितंबर में 8 से 13 तारीख तक हम लोग एक एडीपी चलाने वाले हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंतर्गत हम पूरे देश से एप्लीकेशन इन्वाइट करते हैं और ये 5-6 दिन की ट्रेनिंग होती है। उनमें हम अलग अलग चीजों का ज्ञान देते हैं, जैसे आपने बोला साइंटिफिक तरीके से ज्ञान देते हैं, ताकि जो भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहे वो कर पाए। और इसके अलावा हमारे यहाँ स्टार्टअप्स बहुत आते हैं, हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है हमारे पूसा संस्थान में, वहां पे आके भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं।
1: तो इसमें डॉक्टर साहब यदि हम बात करें, बहुत सारे हमारे जब कार्यक्रम किसान भाई बहन सुनते हैं तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो किसान ही हो, हमारे जी युवा साथियों के लिए भी आप सरकार इसमें क्या कुछ योगदान दे रही है और क्या सरकार का है कि हमारे युवा साथी इससे जुड़ें और रोजगार लें, इसके विषय में आप क्या कहना?
0: देखिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने चलाए हुए हैं, हमारे यहाँ संस्थान में भी बहुत है। हमारे यहाँ ZTMU करके एक यूनिट है जो इन स्टार्टअप्स को एकत्रित करके उनको थोड़ा ये पैसा देके उनसे ये उनको मदद करते हैं, ताकि वो अपना जो भी आइडिया है
1: जी।
0: क्योंकि आजकल युवा वर्ग में बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया है कि कैसे हम लोग प्रसंस्करण में जाएं या कोई बहुत ही अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएं, तो उसके लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं, हमारा संस्थान सपोर्ट करता है और उनके आइडिया को हम आगे ले जाते हैं। फिर कभी कभी हम मार्केट से भी उनको संपर्क कराते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से आगे चल सके।
1: तो डॉक्टर साहब, जब मूल्य संवर्धन की बात आएगी तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कृषि यंत्रों की आवश्यकता है, तो उसमें भी सरकार योगदान करती है, आप उसमें क्या सलाह हमारे साथियों को देना चाहेंगे?
0: देखिए, जब भी कोई आपको प्रोसेसिंग का कोई प्लांट लगाना है तो कैपिटल कॉस्ट में आपको अलग अलग जगह से 35% तक सहायता मिल सकती है। किसान भाई बहन जैसे MSME है, ऐसे कई सारे संस्थान सरकार के जो आपको मॉनिटरी हेल्प करती है ताकि आप अपना एक इकाई लगा पाएं, तो उसके लिए आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान तैयार होना चाहिए जो आप वहां पेश करेंगे, ताकि उनको लगे कि हाँ इसमें दम है, तभी तो सरकार हेल्प करेगी ना आपको। और इसके लिए आपको बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आपका प्रशिक्षण नहीं है, तब तक आपको आगे बढ़ने में भी मुश्किल आएगी। तो सबसे पहले प्रशिक्षण लें और आप प्रोजेक्ट बना के आप प्रपोज करें, तो उससे आपको सहायता मिलेगी।
1: डॉक्टर साहब, कई बार जब बैंक में जाते हैं हमें लोन चाहिए, तो कई बार देखा गया है कि जो प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं, यदि प्रशिक्षण का कोई प्रमाण पत्र हमारे पास है, कोई सर्टिफिकेट है, तो उस पर बैंक आसानी से लोन दे देते हैं और युवा साथी काम में लग जाते हैं। तो क्या आपके माध्यम से भी, या हम कहें सरकार के माध्यम से भी, जो आपके प्रशिक्षण संस्थान है उसमें हमारे युवा साथियों को इसमें लाभ मिलेगा?
0: देखिए, हम तो प्रशिक्षण दे सकते हैं और जो आपको अच्छे से प्रशिक्षण देने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम ये कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, आपको लोन लेने में भी सहायता मिलेगी, तो वो आप कर सकते हैं।
1: तो हम तो यही कहेंगे कि चलते चलते आप एक बार और हमारे सभी युवा साथियों को कहें कि भाई जो मूल्य संवर्धन है, इससे आप जो रोजगार के संसाधन जुटा सकते हैं, इसमें क्या टिप्पणी आपकी रहेगी?
0: देखिए, मैं तो सबसे पहले जो भी अपना इकाई लगाना चाहे या अपना प्रसंस्करण का यूनिट लगाना चाहे, तो यही सलाह दूंगी कि आप सबसे पहले ट्रेनिंग लें, एक नॉलेज गेन करें, पहले मार्केट देखें कि आपको किस चीज पे व्यवसाय शुरू करना है, ताकि आगे जाके जब भी आप एक व्यवसाय शुरू करें, हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो।
1: बिल्कुल।
0: तो ये ना हो कि आपको बीच में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं, इसलिए पहले ही आप नॉलेज गेन करें और उस चीज में जाएं जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिस जो प्रोडक्ट आपको लगता है मार्केट में बहुत अच्छी तरह चलेगा। तो और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है, क्योंकि FSSAI का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, वो लें और फिर ही कोई बिजनेस शुरू करें।
1: यानी कि सीधी बात है, पहले सीखना और सीखने के बाद उसको कैसे हमें अप्लाई करना है, तब कमाना शुरू होगा। डॉक्टर श्रुति सेठी, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे बातचीत, विशेषज्ञ थी डॉक्टर श्रुति सेठी और आपसे बात कर रहे थे अमित तेवतिया। विषय था फसलों के मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक आमदनी। और साथियों, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान करना चाहे और नहीं कर पाएगा, धरातल की जानकारी आपको होनी चाहिए।
3: बिल्कुल वीरेंद्र भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो धरती है ना, ये हकीकत में ये धरती सोना देती है, धन धान्य देती है, सब कुछ उगाती है, सब कुछ पैदा करती है, बस हमें चाह होनी चाहिए
2: जी।
3: और देखिए ये जो उत्पादकता की बात जो कह रही थी, जो संवर्धन की बात कर रही थी श्रुति शेट्टी, वाकई उनकी बात 100% मैं तो सही मानता हूँ कि

0: आदमी अगर लग जाए, हमारे बहुत सारे युवा साथी लगे हुए हैं, बहुत सारे पारंपरिक खेती करने वाले किसान भाई भी लगे हुए हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं।
1: जी, और बात चली है धरती की, और धरती पे इतने सारे काम हैं और उन कामों की भी बात चली और उनके प्रारूप के बदलने की भी बात हमने
0: भाई
1: सुनी।
0: इसी को तो कहते हैं धरती की माया और धरती की छाया, सब कुछ है।
1: जी, तो धरती की माया है, धरती की छाया है, तो अब वो भी सुनवा देते हैं जो धरती के बारे में अतुल कुमार ने गाया है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।

0: साथियों, धरती की विविध निराली है, कहीं पे धरती भूरी है, कहीं पे काली है, कहीं पे रेगिस्तान है और कहीं पे हरियाली है।
1: बिल्कुल वीरेंद्र भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धरती की माया जो है ना, वो अपरंपार है। और धरती देखिए, जो जैसा चाहता है उसको वैसा देती है। जितनी मेहनत करता है, जितना डालता है, उतना उगाता है।
0: जी बिल्कुल, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा।
1: हाँ जी। और देखिए, उसी को लेके जो है ना, जब आप खेती करते हैं, आप कई तरह की जो है कि उसमें दुश्वारियां झेलते हैं, और फिर भी कोई कोर कसर बाकी रह जाए, कोई जानकारी न मिले, कोई जो है कि व्यवस्था आप न कर पाए, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है।
0: जी शाहिद भाई, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जो सही तरीके से जानते नहीं है कि खेतीबाड़ी तो रिस्क का सौदा है। वो भैया ऐसी बात नहीं है, जो सरकार है वो बहुत जागृत है और किसानों का बहुत ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री

0: बीमा योजना का नाम ना सुना है अभी उन्होंने, है ना।
1: ये आपने बड़ी प्रति की बात कही। देखिए फसल बीमा योजना जो है ना, सही तरीके से खेती को और अपने किसान भाइयों को ना ये सपोर्ट करने की, मदद करने की योजना है। मतलब आप किसी भी तरह से, वो चाहे छोटे से जीव कीट पतंगों का जो है कि हमला हो जाए, चाहे जो है कि मौसमी बीमारियां हो जाए, चाहे जो है कि आपदा आ जाए,
0: ठीक है,
1: सूखा पड़ जाए, बाढ़ में डूब जाए, तो जितना भी,
0: जो भी कुछ है,
1: ओला पड़ जाए, बिस्टी हो जाए, तो अगर फसल का नुकसान होता है तो क्या है कि बीमा योजना जो है उसका आपने अगर बीमा करा रखा है फसल का, तो उसका लाभ आपको मिलना है, यानी आपकी मेहनत जाया नहीं जाने वाली।
0: जी शाहिद भाई, और जो भी साथी इस बीमे को करवाना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है उस पे जा सकते हैं, और इसमें शाहिद भाई बहुत सारी जो मतलब क्लॉज रखे गए हैं, जो चरण रखे गए हैं, ऐसा हो वैसा हो तो सब चीजों के लिए सोचा है सरकार ने, सूखा हो, बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो, और भी जो भी कुछ है, बुआई से लेके और कटाई तक इसका जो है बीमा किया जाता है।
1: बड़ी चीज यह है वीरेंद्र भाई कि इसमें हर फसल का चक्रवार जो है ना बीमा करने की व्यवस्था दी गई है, उसका टाइमिंग दिया गया है कि कब से कब आप बीमा कराएंगे और कितना इसमें आपको जो है कि कवरेज मिलेगा, कितना प्रीमियम तो बहुत नाम का होता है।
0: जी बिल्कुल, इसका जो प्रीमियम है वो खरीफ और रबी दोनों के लिए ही होता है। और एक खास जानकारी बता दूं शाहिद भाई अपने सुनने वालों के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, कि 10 सितंबर 2026 जो है वो अंतिम तिथि कर दी गई है बढ़ाकर।
1: जी हाँ, मतलब इस सीजन की जो बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं बीमा योजना में रजिस्टर करा सकते हैं 10 सितंबर तक।
0: जी, और शाहिद भाई जो हमारे फसल पे है ना, हम ही निर्भर नहीं करते हैं, हमारे जो इतने सारे अन्य जीव जंतु हैं वो भी, चिड़ैया चिड़िया ये भी निर्भर करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिड़े भी निर्भर करते हैं, चिड़िया भी करती हैं।
0: जी।

0: तो अभी आप सुन रहे थे ये रागनी मनोज कारणा की आवाज में।
1: और साथियों, इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। सभी सुनने वाले साथियों को राम
0: राम राम।
1: राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक
0: शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर, 18,819 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओ लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार में फोटो ले लो। आप कौन?
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस। RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नगर निगम से यह भी पता लगाने को कहा है कि इमारत का निर्माण और संचालन वैध अनुमति के साथ किया गया था या नहीं। न्यायालय ने नगर निगम को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेइंग गेस्ट, PG आवास और छात्रावासों का 1 सप्ताह के अंदर व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
8: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी PG और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी PG आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
7: दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दक्षिण जोन के दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायता अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा इमारत के कथित मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पूरी दिल्ली में उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आसपास के PG और इमारतों को भी बारीकी से जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई नीति लाई जाएगी जिसके अंतर्गत PG, नर्सिंग होम, स्कूल और अन्य संस्थानों की इमारतों का समय समय पर संरचनात्मक ऑडिट और इमारत सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य किया जाएगा। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सत्य निकेतन घटना के प्रकरण में दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों का निलंबन दिल्ली सरकार की जवाबदेही और निर्णायक कार्यशैली का प्रमाण है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि घटना के लिए केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

0: अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली के सांसदों और विधायकों की बैठक में कल की घटना पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई। उपराज्यपाल सचिवालय में आज सत्य निकेतन क्षेत्र की दुर्घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद शामिल रहे। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सूद ने बताया कि बैठक के दौरान पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती तथा आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को और कम करने के उपायों पर विचार किया गया। श्री सूद ने बताया कि सभी विभागों के साथ जरूरत के अनुसार अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात की छूट देने और मौजूदा हॉस्टलों के पुनर्विकास के लिए अधिक फर्श क्षेत्र अनुपात की मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जस्टिस गुहा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए जा रही रिपोर्ट के अनुसार पीजी और कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए उपायों पर भी विचार किया गया।
1: सभी विभागों की एक साझा बैठक जिसमें पुलिस, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की जगह जगह प्लेसमेंट, हमारा रिस्पांस टाइम और कम कैसे हो, और जो बड़ी तादाद में एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज का गैप है उसको पूरा करने के लिए एफएआर में जरूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए एफएआर में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना।
0: श्री सूद ने सत्य निकेतन की दुर्घटना के बाद पिछली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से चली आ रही उपेक्षा और कुप्रशासन के कारण दिल्ली में बुनियादी ढांचे और व्यवस्थाओं की स्थिति खराब हुई है। श्री सूद ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास छात्रों के लिए संचालित पीजी आवासों को विनियमित करने के लिए कोई प्रभावी नियम कायदे नहीं बनाए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने सत्य निकेतन दुखद प्रकरण में विद्यार्थियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस संबंध में आज कुलपति द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान दुर्घटना में मृत विद्यार्थियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों की जान का नुकसान दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ा है। श्री सिंह ने सभी प्राचार्यों से अपने अपने महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदू कॉलेज समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 6 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान हिंदू कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज, मिरांडा हाउस और रामजस कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद महादेव डोंबरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सुचारू यातायात और सीमा चौकसी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार बैठक में गाजियाबाद और नोएडा पुलिस के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने, अपराधियों और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया सूचनाएं साझा करने तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच करने पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान हवाई निगरानी और दिल्ली गाजियाबाद व नोएडा पुलिस के बीच बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन पर भी रणनीति बनाई गई। बैठक में वीआईपी रूट मैनेजमेंट, गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन तैयारियों पर भी समीक्षा की गई। दिल्ली पुलिस ने संबंधित सहायता पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov

0: www.imagineradio.in पर जाएं।
1: दिल्ली नगर निगम एमसीडी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से आज नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली के सुभाष नगर स्थित एमसीडी पश्चिमी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल तथा टिकाऊ प्रभावों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य विषय निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल प्रदूषण कम करने तथा बायोमास जलाने के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर केंद्रित रहा। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली सचिवालय में मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 और डेंगू को लेकर जनप्रतिनिधियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पार्षद, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जन प्रतिनिधियों को H1N1 और डेंगू के लक्षणों, रोकथाम, समय रहते पहचान और उपचार के बारे में व्यावहारिक जानकारी देना था। कार्यशाला के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी पहुंचाने और रोकथाम के उपायों के लिए नागरिकों को एकजुट करने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमारी की रोकथाम को केवल अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसके लिए समुदाय स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। उन्होंने पार्षदों से स्वास्थ्य विभाग और फील्ड टीमों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी राजधानी के हर वार्ड, मोहल्ले और हर घर तक प्रभावी तरीके से पहुंच सके। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सावधानियां और संदेशों को अधिक प्रचारित करें तथा H1N1 से जुड़ी गलत धारणा को दूर करने का प्रयास करें। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली पुलिस ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सजग के अंतर्गत 72 घंटे का गहन परिवर्तन अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना, सेंधमारी और चोरी पर रोक लगाना, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध रूप से रह रहे प्रवासी से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण तथा अवैध हथियार रखने वालों के विरूद्व कार्रवाई करना था। इस दौरान पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया। राजधानी में आज तेज धूप के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ बहुत हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ, 5,000 बच गए।
5: तो नहीं सही लिए?
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और?
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को पढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
0: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर

जब खूबसूरत गीतों का साथ होना तो संगीत की खूबसूरत सी दुनिया में ना खो जाना चाहिए और कुछ पल ना सब कामों को छोड़कर बस उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल को जो सुकून मिलता है ना, और दिल को सुकून मिलने वाले गाने हम सुनते हैं ना तो वाकई मजा आता है। और अब एक और गीत जो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएगा, लेकिन हाँ आपको बहुत मजा आएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

0: अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
4: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
5: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible.

0: possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
2: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
0: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि जांच में यह देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुनें।
3: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
4: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
5: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
3: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: negative as shares of 2,571 companies declined, 1,925 advanced and 233 remained unchanged.
1: और अब जानेंगे रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में अपरिवर्तित रूप से 94.49 रूपये पर बंद हुआ. इसी के साथ कोलकाता से पहली कॉल हम ले रहे हैं. इनका नाम है अरिजीत. अरिजीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछे.
2: थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू मार्केट मुद्रा एंड शरद जी, वेरी बिग फैन. सर, मेरा दो सवाल है आपसे.
3: जी,
2: पहला तो ये है कि प्रोविडेंट फंड का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी करेंटली, और पहले और सेकेंड मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा एक प्रोविडेंट फंड और एक शेयर का एक बात है, तो वो दे आर इन द प्रोसेस, मगर जो लोग डील करे कर रहे थे वो लोग बोल रहे कि मेरा कोई एज मेरे फैमिली में कोई जिंदा नहीं है, तो मेरा कोई नॉमिनी नहीं है. मतलब अगर नॉमिनी का नाम मैं नहीं डालूं तो वो गवर्नमेंट से वो पैसा रिलीज नहीं करेंगे, क्या ये सच है या झूठ?
3: देखिए अरिजीत, अगर आप पहले आपका दूसरा वाला सवाल लेते हैं, अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो इसमें फिर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि आपको कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट फिर लेना पड़ता है, और उस कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके उसके आधार पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. तो बेहतर तो यही है कि आप नॉमिनी रखें, या फिर जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का जो इंटरनल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का आपको ध्यान रखना चाहते हैं और लिखना चाहिए. और दूसरा आपका पहला सवाल पीएफ का, पीएफ का इंटरेस्ट रेट तो मेरे ख्याल सभी लोग जानते हैं. आई थिंक इट इज अबाउट 7. पीपीएफ का 7.1 है, पर पीएफ का शायद ये पूछ रहे हैं. पीएफ का 8.25 के आसपास है. पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है. आप ये शायद प्रोविडेंट फंड का जानना चाहते थे. 8.25 के आसपास है, पर आप मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं वहां संपर्क करें, क्योंकि कई दफे क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पोस्थ्यूमस प्रोसेस अलग होते हैं. बाकी जो लीगल प्रोसेस है वो या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके होता है या फिर आप नॉमिनी के थ्रू उसको ले सकते हैं.
0: राइट, टॉकिंग ऑफ द मार्केट्स टुडे शरद जी, व्हाट वी आर विटनेसिंग ओवर द पास्ट फ्यू सेशंस ऑफ कोर्स इज not surprising though, but still there is some element, some factor of concern as well. How do you visualize this? How do you perceive this?
3: Well, I think Nishit, the markets are looking right now more outwards. If markets look internally to the country, we had 7.8% GDP. We had all the four cylinders of the economy, the private consumption, government expenditure,
1: right.
3: Private investments, exports, they are all shining. But somehow I think I was talking to another platform today, and I said the market seemed to be looking more outwards, because the markets look at West Asia, crude oil prices, aggression between Iran and US, bond yields, dollar index. I think those are the factors which are sort of overshadowing our internal growth at this point of time. So I'm sure, in fact, through Market Mantra today, I'm sure there are a lot of market operators who listen to this program. I would like to request to please start looking inwards. Look at what is happening within the country. They seem to be becoming more international, but in the process, they are looking at all the negative things which are coming out. Obviously, it does depress the sentiment, but within our country, we are doing fairly okay. So I think the day we start looking inwards, you will find the market today broke a very important technical level of 23,850 on the technical charts. This becomes a matter of concern, because there could be further slide, I hope. And the crude oil prices, look at them, they were getting closer and closer to 100. The Indian basket of crude is beyond 100 now. In fact, we are heading for a time where the oil marketing companies may have to at some point of time take a call to invoke another rise in petrol and diesel prices. So those concerns are, I think, counting on the minds.
1: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई.
0: लेट्स नॉट फॉरगेट द ब्लैक शीप इन द लॉट, मिस्टर ट्रंप एज वेल.
3: ओह यस, ही इज ऑलवेज इन द न्यूज.
1: आगे बढ़ते हैं और अगली कॉल लेते हैं. ये है मुंबई से रत्नाकर. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि ये जो फोरेक्स ट्रेडिंग जो होता है
3: जी,
4: उसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए, समझो कॉमन मैन को उसमें एंट्री करना है, तो कैसे कर सकते हैं, और वो डिजिटली प्लेटफॉर्म क्या है उसका, और उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़े बताइए. और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो अभी एक न्यूज आई थी कि जीडीपी रेट अपना बढ़ने वाला है 7 और कुछ, तो उसका कॉमन मैन के ऊपर, नहीं तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर है

0: प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी आप करते हैं, तो थोड़ा सा जोखिम भरा काम है क्योंकि इसमें बहुत शार्प मूवमेंट्स होते हैं और बहुत तेजी से मूवमेंट होते हैं और 24 घंटे होती है ये। तो आप तो रात को सो रहे होते हैं, मैं उम्मीद तो यही करता हूं। तो जब आप सो रहे होंगे और रात को उस समय मान लीजिए कीमत जो आप तलाश रहे हैं वो कीमत उस समय आई, आप कैसे उसमें से निकल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। तो उसमें बहुत ही एक्टिव और 24 घंटे की मॉनिटरिंग उसमें चाहिए होती है। और दूसरा आपने पूछा जीडीपी का 7.8% का कॉमन मैन पर, जीडीपी का देखिए रत्नाकर जी उसका इम्पैक्ट लगभग लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ता है, और चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो यू नो डिफेंस सेक्टर हो, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ती है तो वो ओवरऑल बढ़ती है, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर बढ़ता है, हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग किस्म का होता है। तो इसलिए संक्षेप में तो मैं यही बता सकता हूं, बाकी आपने जो सवाल पूछा उसका बहुत विस्तृत जवाब है और बहुत लंबा डिस्कशन मांगता है। मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे कि दो लोग और क्यू में हैं, तो
1: बिल्कुल शरद जी क्योंकि समय की परिधि है और भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं। तो दिल्ली से प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
1: जी,
0: जी प्रकाश जी बताइए।
2: हाँ जी मार्केट मंत्र टीम पे नमस्कार।
0: नमस्कार
2: शरद जी को भी नमस्कार सर।
0: बिल्कुल नमस्कार
2: सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है क्या वो नेग्लिजिबल भी हो
0: जी,
2: तो भी क्या उसके लिए ITR 2 भरना पड़ता है? क्योंकि अगर कोई मैं SIP कर रहा हूँ और जो इंस्टॉलमेंट एक साल के कम अवधि की है वो मैं रिडीम कर देता हूँ, तो वो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जरूरी है कि ITR 2 भरा जाए?
0: नियम तो यही है प्रकाश जी के, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 भरना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और एक मकान हो और 50 लाख से कम आए हो तो आप जो सरल फॉर्म है फॉर्म 1, बाकी नियम तो यही है। पर प्रकाश जी आपके मुझे लग रहा है आपका कंसर्न शायद इसलिए है, और मैं प्राची और निशित को भी बताऊं, क्योंकि ITR 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, पर आपको सच बताऊं तो तभी तक कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आपने उसको खोल के नहीं देखा। बहुत बहुत प्रोग्राम्ड है, हर चीज का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आगे क्या करना है ये लिखा हुआ है, उसको इतना सिस्टमैटिक बना दिया गया है। तो प्रकाश जी घबराइए नहीं, आप ITR 2 भरिए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई परेशानी आती है तो आप अगले कार्यक्रम में हमसे दोबारा यहां मार्केट मंत्रा में जुड़ के कभी भी पूछ सकते हैं।
1: जरूर, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, अपना सवाल।
3: हाँ नमस्कार सर, कोहली सर से मेरा प्रश्न सर ये है सर कि 2025 फर्स्ट क्वार्टर में हमारी GDP 6.9% थी सर
0: जी,
3: और 2026-27 में अभी हम पहले तिमाही 7.8 पे आ गए हैं
0: जी।
3: तो मैं सर यही आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से की फैक्टर, कौन से मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, या फिर IIT का डेटा बढ़ा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर इतने तेजी से बढ़े हैं ताकि हम 6.9 से 7.8 आए। हालांकि अच्छी चीज है, गुड है। और सर एक MTF सॉरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा सवाल है सर
0: जी।
3: तो मेरा शंका ये है सर कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी अच्छी चीज है कि कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री हमारा सामान दूसरे देश में, दूसरे सामान के देश हमारे देश में आ जाएंगे, हमारी पहुंच बढ़ेगी, लेकिन सर मुझे ये भी डर लगता है कि हम जिन देशों से आयात निर्यात कर रहे थे तो इससे ट्रेड बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे मान लो हम 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट करते हैं सर, तो हम टैक्स रेवेन्यू हमारे 20% के हिसाब से 20 रुपए बनता है मान लीजिए, और हम उनसे आयात करते हैं 50 रुपया का, तो उनको हम 20% अगर हम टैक्स देते हैं 10 रुपए का टैक्स देते हैं, ओवरऑल में हमें 10 रुपया नेट प्रॉफिट में आता है, तो ये ट्रेड बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हो सकता सर? धन्यवाद सर।
0: चलिए, इनका पहला सवाल जीडीपी से संबंधित है, अभी पिछले श्रोता में भी शायद उन्होंने रत्नाकर जी थे उन्होंने ही पूछा था। तो देखिए बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जब अमित देखा जाता है इसमें हमारा जो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बढ़ा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने फायर किया है वो सिलेंडर भी बढ़ा है, हमारा सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ा है, सबकी परसेंटेजेस हैं जो बढ़ा है। उसके अलावा 4 सिलेंडर्स की मैंने बात करी थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट केपेक्स, कंजम्पशन हमारी बढ़ी है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी हमारे 10% बढ़े हैं। तो चारों इंजन्स ने फायर किया। और मैं यहां पर प्राची और निशित की इजाजत से यह भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे कि भाई 7.8 बढ़ी है तो फील गुड फैक्टर नहीं है। तो आप अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो उनके नंबर्स को हमें देखना चाहिए, और भारत जैसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हर व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि 7.8% मेरी जेब में आया कि नहीं आया, जबकि ऐसे नहीं होता। ये अभी एक क्वार्टर की है, कालांतर में जब लगातार तेज बढ़ती है तो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है। इनका दूसरा सवाल FTA था, कोई ट्रेड बैलेंस नहीं बिगड़ेगा हमारा, हमें इससे तो उल्टा सुधरेगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कम होता है क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा

0: करेंगे और इंपोर्ट तो हमें जितना जरूरत है उतना करेंगे, पर हमारा सामान यहां से 860 बिलियन डॉलर का हम साल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसकी उसकी गिनती बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और भारतीय एमएसएमई के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। आप डर दिमाग से निकाल दीजिए, हमें तो आपके मन में आपने कहा कोई डर है, कोई डर नहीं है, तो प्रशंसा की बात है, तारीफ की बात है, खुश होने की बात है।
1: दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है वत्सराज। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम।
1: नमस्कार
2: शरद कोहली जी को प्रणाम।
0: प्रणाम।
2: सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा शरद कोहली जी को, क्योंकि जितनी सरल भाषा में ये सारी चीज हमें बताते हैं वो बिल्कुल खाने में बैठ जाती है।
0: धन्यवाद। सवाल पूछिए।
2: मैं सर आपकी एक सहमति चाहता हूँ। पिछले आपके सेशन में एक क्वेश्चन आया था
0: जी,
2: और उसका आपने आंसर किया था। एक क्वेश्चन था कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक एसईसीजी या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आदमी को अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है
0: जी।
2: तो मैं सहमति ये चाहता हूँ कि मिनिमम या इतना बुक कर लेना चाहिए जितना गवर्नमेंट हमें रिबेट देती है, 1 लाख या 1.25 लाख के करीब जो रिबेट देती है उतना तो मिनिमम बुक कर लेना चाहिए। क्या मैं इस मामले में सही हूँ?
0: वत्सराज जी, ये इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं जो आप कह रहे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो 1,25,000 का इक्विटी पे हमको छूट मिलती है, पहले सेक्शन 112A उसको कहते थे, जो पुराने एक्ट में भी लोगों के मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, तो मैं नए सेक्शन अभी नहीं बोल रहा हूं। तो कर लेना चाहिए, पर इसमें खाली टैक्स वत्सराज जी एक कंसिडरेशन नहीं है। मैंने जो बताया था, क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से इस समय बिहेव कर रहा है, हो सकता है कोई वेस्ट एशिया से अभी जो खबरें आ रही हैं शायद और मामला बिगड़ जाए, क्रूड ऑयल की कीमतें 100 के आसपास जा रही हैं, तो टैक्स तो एक मैटर होता है। और मैं समझता हूं आप जो बात कह रहे हैं वो सामान्य परिस्थिति में होता है कि आपने टैक्स हार्वेस्टिंग कर ली, कि आपने बुक कर लिया और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। पर इस समय अगर प्रॉफिट अच्छा है, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है वत्सराज जी आपका, अगर कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, अलग होगा। पर मैं ये मानता हूं प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मुझे लग रहा है अगर ऐसे वक्त में मुनाफा है तो बुक करके चलना चाहिए। इस समय 1,25,000 टैक्स को आप सेकेंडरी कंसिडरेशन रखिए और प्रॉफिट को आप मुख्य रखिए। मुख्य और गौण कहते हैं अगर हिंदी में, मेरी हिंदी अगर ठीक मुझे बता रही है, तो मुख्य रखिए आप प्रॉफिट को, टैक्स को गौण रखिए, पर 1,25,000 अगर हो रहा है तो अच्छी बात है।
1: आइए जानते हैं क्या है अगला सवाल। नोएडा से हमारे साथ विनय कुमार जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे मार्केट मंत्र टीम का अभिनंदन करता हूँ।
0: धन्यवाद।
3: शरद कोहली साहब का मैं भी एक फैन हूँ।
0: माय प्लेजर।
3: मेरा प्रश्न आज ये है कि अभी पूरी शेयर मार्केट में काफी अनिश्चितता है और आज काफी बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल भी 23,850 का टूट गया है। तो इस समय में रिटेल इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर?
0: बहुत अच्छा सवाल है विनय। देखिए, मार्केट के बारे में मेरा नजरिया अभी तक जो रहता था, प्राची निषेध जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता था कि मार्केट में आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। थोड़ा सा ये जो हाल में डेवलपमेंट्स हुए इसमें मेरे नजरिए में मैंने समय अनुसार बदलाव किया है और मैं आज इनकी इजाजत से वो बदलाव बताना चाहूंगा। बदलाव ये है कि मुझे यहां से मार्केट के लिए थोड़ा सा आगे वाले कुछ समय टफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, जियो पोलिटिकल जिसको कहते हैं, और भू आर्थिक परिस्थितियां जो बन रही है जिसको जियो इकोनॉमिक कहते हैं, वो परिस्थितियां बहुत अनुकूल मुझे यहां से नहीं नजर आ रही है। रशिया नेटो में टेंशन है, ईरान इजराइल कभी खत्म ही नहीं होने में आ रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए, 4.5 साल रशिया यूक्रेन को हो गए। तो मुझे लग रहा है विनय, यहां पर रिटेल निवेशकों को जो बहुत अच्छे वैल्यूएटेड शेयर्स हैं, जहां एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशन हैं, उसमें तो आप उसको लेकर रख सकते हैं। पर ज्यादातर कभी कभी क्या होता है, मैं हालांकि ये कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं, कभी कभी ना इन्वेस्ट करना भी विनय एक स्ट्रैटेजी होती है। निवेश करना तो स्ट्रैटेजी होती है, पर कभी कभी दूर बैठ के और तमाशा देखना भी एक एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप दूर बैठ के ऑब्जर्व करिए। तमाशा शब्द मैं एक हल्के अंदाज में, मतलब आप उसको ऑब्जर्व करिए। थोड़ा सा मार्केट का फैब्रिक जब सुधरेगा विनय, तब आप उसमें एंटर करिएगा, क्योंकि अभी हमें मार्केट का यहां से बॉटम नहीं मालूम है। और ये जो मैंने बात करी ये सभी श्रोताओं के लिए है। अब कोई कहेगा कि कोहली साहब तो पहले कहते थे कि भाई आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, 5 साल 10 साल बने रहिए, पर अब परिस्थितियां जिस हिसाब से बदलती हैं आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। मैं तो निवेश के लिए बात कहता हूं कि आपको हर 3 महीने में अब रिव्यू करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए विनय, मैं उम्मीद करता हूं आपको संदेश मिल गया होगा और आप उसके अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेने चाहिए और जो शुरू में डिस्क्लेमर और आखिर में डिस्क्लेमर पढ़ा जाता है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। श्रोताओं, एशिया के शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%

0: प्रतिशत से अधिक बढ़ा, जबकि जापान के निकेई सूचकांक में 2% से अधिक वृद्धि हुई।
1: शरद जी, हाउ डू वी सी दिस एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बीइंग इंसुलेटेड टुडे व्हेन कंपेयर्ड टू द यूरोपियन मार्केट? KOSPI 4.6, Japan Nikkei 2.1% up.
2: Well, we were very keenly observing KOSPI since morning, and we found Hynix and Samsung, they were doing great. So I think there was excitement which was technology driven, and in the Nikkei we observed SoftBank taking the lead. So I think there were 2-3 companies. It was AI driven, it was tech driven, it was chip demand, semiconductor demand, which drove these markets contrary to the global sentiment. Also, we should not forget, I think the American markets are closed today because of the labor day.
0: Right.
2: So they had their day where they could think independently without taking cues. I was joking at my office, you know, with our stock market team, that today, you know, the cat is away and the mouse will play. You know, no cues from America, so you just do whatever you want to for a change. Otherwise, the markets normally follow. And main to mazak mein kai baar kehta hu ki aisa lag raha hai ki karwa chauth hota hai na hamare, to uska chand nikalta hai to ark dekh ke pani piya jata hai. Aisa lagta hai hamari market subah chand nikalne ki zara American market kab khule to hum pani piye. Is tarike ka mahol mujhe दिखाई दे रहा, तो आज तो कोई दिक्कत नहीं थी।
0: बेहतरीन आपने उपमा दिया है। और गाजियाबाद से हमारे साथ इसी के साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, और कोहली जी को भी बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार मनीष।
3: सर, अभी आपको सुन रहा था, आपने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई, बता रहे थे कि कभी कभी ना नहीं इन्वेस्ट करना, बेचना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। आई थिंक ये रिटेल के लिए आपने रिटेल इन्वेस्टर को माइंड में रख के बोला होगा, लेकिन उनके लिए जो एक एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड पे रेगुलर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी क्या एप्लीकेबल होगी? दे शुड स्टॉप एसआईपीज और वॉच, और दे शुड कंटिन्यू एज दे आर डूइंग? मतलब बेसिकली अ गुड अमाउंट ऑफ आर सेविंग्स आर गोइंग इन एज ए एसआईपी, तो अभी का जो एज ए मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से तो जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एफआईएस जिस तरह से वो पैसे निकाल रहे हैं आ रहे हैं, बट जो लोकल जो है उनकी तो एसआईपी ठीक ठाक आ रही है। तो एज ए मिडिल क्लास मैं समझना चाहूँ, क्या स्ट्रेटजी उनके लिए भी है या दे शुड?
2: देखिए मनीष, अगर तो आपकी एसआईपी जो आपने म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, अगर वो एनएवी अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है, तो फिर मैंने जो अभी पहले बोला था वो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए अगर आप रोक भी देंगे तो कोई मुझे इतना इसमें खराबी नहीं दिखाई देती है। पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, एनएवी आपकी इस टाइम बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर प्रॉफिट हो रहा है, मेन बात जो मैं कहना चाहता था प्राची और निशित, कि प्रॉफिट हो रहा है तो इस समय थोड़ा सा बुक कर लीजिए। और अगर आपकी एनएवी, अब ये मनीष मुझे नहीं पता आप कौन से फंड में हैं, कितनी एनएवी है, तो ये थोड़ा सा अब इसमें स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा। आपकी बात का बहुत सटीक उत्तर तो तब दिया जा सकता है, पर अब तक जो मैंने बोला है आप सुन रहे थे, मैंने आपकी बातों से लगा उसमें से आप अंदाज निकाल सकते हैं।
0: मथुरा से हमारे साथ कुंज बिहारी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये अपना गोल्ड कौन सा समय ठीक महसूस करें, जैसे आपका उतार चढ़ाव चल रहा है, और दूसरा सवाल शेयर मार्केट के अलावा और कोई अच्छी जगह है जहां हम सेफ अपना इन्वेस्ट करें? और तीसरी एक छोटी सी बात अपने कोहली सर से है, ये पूछना है इनसे कि अगर ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म हो जाता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो जाता है, इसमें इन दोनों चारों पार्टियों को किसको क्या बेनिफिट मिलेगा इतना बर्बादी होने के बाद?
2: चलिए, गोल्ड का आपने कहा, गोल्ड का तो मुझे भविष्य उज्जवल नजर आता है, क्योंकि आपने तीन पूछे तो मुझे छोटे छोटे जवाब देने पड़ेंगे। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे। शेयर मार्केट के अलावा आपने पूछा और कहां, तो ऐसे समय में जब निवेश करना हो तो आप जो फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, आरबीआई के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तब तक के लिए निवेशक एक तरह से रिसेस ले सकते हैं। रिसेस होती थी ना जब स्कूल में हम छुट्टी हो जाती थी, कुछ टाइम के लिए पढ़ाई बंद हो जाती थी, तो आप एक रिसेस तौर पे इन पे ले सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है। दूसरा इन्होंने पूछा, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो आपके मुंह में पहले तो घी शक्कर, अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है, और फिर क्या आपस में ये गले मिल लेंगे? अब तो मैं यही कहूंगा कि अगर खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुंज बिहारी जी, मुझे यहां से कुछ बहुत ज्यादा अभी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। काश आपकी बात सत्य हो, आप पहले बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो कह रहे थे कि ये लोग आपस में गले मिल जाएंगे, पर अभी मुझे कोई ऐसा आसार तो नहीं नजर आ रहे। निश्चित और प्राची, मेरे ख्याल में
0: कहने का तात्पर्य ये था कि अगर इस तरीके की जो युद्ध चल रहे हैं वो अगर सेटल हो जाते हैं तो किसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये किस चीज, ये कौन से नाक की लड़ाई,
2: क्या खोया क्या पाया बाद में? देखिए, मुझे लगता है युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, केवल मानवता हारती है, नुकसान जानमाल का नुकसान होता है, तो एक लाइन में जवाब दूं तो ये

0: Right, and on to some other stories. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai tomorrow evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is Potential to Impact Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance. According to an official press release, GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The discussions will focus on how AI, programmable finance, quantum technologies and other critical and emerging technologies can create trusted, inclusive and measurable outcomes for citizens, enterprises and economies globally. Since 2020, Global FinTech Fest has emerged as a leadership platform bringing together policymakers, regulators, central banks, financial institutions, fintechs, technology companies, investors, academia and other global stakeholders to discuss and shape the future of finance. The 7th edition will run till 11th of September 2026 in Mumbai.
1: Delhi se Deepak hamare saath jud rahe hain. Deepak ji, sanshipt mein apna sawal poochiye please.
2: Namaskar ma'am.
1: Ji.
2: मेरा कुछ नहीं है, जैसे मार्केट डाउन होती है तो लिक्विड फंड के जो इंटरेस्ट है वो भी डाउन होता है या वो सेम चलता रहता है?
3: दीपक, लिक्विड फंड्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो उस पर रिटर्न होता है, वो वेरी करता रहता है. वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे, कि कितने लोग लिक्विड फंड्स. मैं जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए जल्दी से मैं बता दूं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो 2-3 दिन के लिए आप पैसा रखते हैं, उसमें आपको अमूमन मैंने देखा है करीब 6 से 7.5% डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई इतना रिटर्न आता है. तो वो ऊपर नीचे होता रहता है दीपक उसमें, पर वो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं. और बहुत ही छोटे टर्म के लिए जब किसी को पैसा रखना हो तो बजाय इसके कि सेविंग्स में पड़ा है, तो बहुत लोग इसमें इसको खेल को करते हैं और बड़ा कामयाब तरीके से करते हैं.
0: Moving on to crude, the global crude oil prices climbed to near 6-week high as renewed strikes over the weekend in the Strait of Hormuz heightened concerns over supply disruptions. Brent crude was trading 1.1% up at $97.37 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 0.8% up at $92.20 per barrel when reports last came in.
1: Bharatiya Sarafa Bazaar mein 24 carat sone ki keemat aaj lagbhag 1.5% phisal kar 152,703 rupaye prati 10 gram ho gayi. Wahi chandi ki keemat 1.5% se adhik badhkar 231,650 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई. शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: धन्यवाद. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स स्लिप्स नियरली 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,800. The global crude oil prices rise and Prime Minister Narendra Modi to address the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
1: Samir, आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा जी आकाशवाणी है. आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की अशरियात. जी समीर पेश है फरमाइश फिल्मी नकों पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद. आइए अब तमाम सामीन की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब.

बढ़िया से बढ़िया। मयंक सुरेश मारुति, वर्षा मारुति, श्रद्धा मारुति और इनके एक और के साथी साई किशिंडी महाराष्ट्र से फरमाइश करते हैं। गुलाब कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से मीना राजेश रिंकी और एक और साथी विनायक अकोर्स विनायक बड्डे मंगला बड्डे शुभम बेड़े नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शनी मिर्गे और प्रियंका काल पांडे। और ये फरमाइश हमें साल की अमोल लोखंडे, शारदा लोखंडे, आरती लोखंडे नेवासा से महाराष्ट्र, इनके साथ एक और साथी हैं वसीम अकरम, सालिया खातून और गुड़िया खातून, बेतावरी लिसनर्स क्लब, न्यू मार्केट, पटना, बिहार से। खान मंजिलगंज द्वारा से आगा खान, आगा भाई उद खान और बेबी अमल खान, नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन साथ में, और भी रामपुर लिसनर्स क्लब, नालापार, बाग, छोटे साहब रामपुर से। आइए अब आपको सुनाते हैं और भी फरमाइश। कहलगांव अहलिया नगर से भाऊ साहेब नवथर अक्षय चंदन, ये फरमाइश हमें ऐसा की है। मानवा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकित और अनिकेत भटकर, और जवाहर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी, हर्षगांव राजगांव के अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रावेकर, हर्ष रावेकर, अक्षय रावेकर। और समीन बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुक्म करमारकर, सुनीता करमारकर, हार्दिक और तनु। तो ये समीन आप सबकी पसंद पर ये दो गाना आप सबकी खिदमत में, जिसे आवाजें दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, और इसके अलावा फिल्म का नाम है गीत, नगमनिगार हसरत जयपुरी और मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

हेलीकॉप्टरों, ट्रैवल टैंक और सारावाता ब्रिज निजाम की सरकारी खरीद की तजवीजें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुधा रडार की सरकारी खरीद और मेरिन गैस टरबाइन के डिजाइन और तैयारी नीज इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज को भी मंजूरी दी गई है। अरुधा रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नसब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हज़ार कम हो जाएगा। इधर भारतीय फजाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ तजवीजों को मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदे जैमर की सरकारी खरीद और दफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निजाम नसब करने की भी मंजूरी दी गई है। दफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनातों से की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वजीर आजम गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC के 3 अहम सेक्शनों को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जो 326 रूट किलोमीटर का इहाता करते हैं। आज अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामा निगारों को जानकारी देते हुए रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि बारबरदारी के लिए मखसूस मशरकी और मगरबी कॉरिडोर मुल्क के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक शोबे के लिए एक अहम वसीले के तौर पर काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर तकरीब से खिताब करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरवकार सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसों में से एक GFF 2026 का मौजू है सलाहियत से असर पजीरी तक। इस बारे में जारी की गई सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक GFF 2026 का मकसद डिजिटल अदायगियों और मालियाती शमूलियत में भारत की क्यादत को परवान चढ़ाना और सलाहियत से असर पजीरी तक ले जाना है। वजह दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की दफाई पॉलिसी रद्द अमल में कार्रवाई करने वाली से आगे बढ़कर पेशबंदी की कार्रवाई करने वाली पॉलिसी बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क दफा के शोबे में खुद कफील और पुर एतमाद बनकर उभर रहा है। आज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में भारत के शामिल होने के बाद से मुल्क ब्रह्मोस मिसाइल की सलाहियत बढ़ाने में कामयाब रहा और यह वजीर आजम की सरगर्म सफारतकारी और उनके नजरिया साज क्यादत का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर का तस्करा करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के मौसर होने की सलाहियत सामने आ चुकी है। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गोवा के पनजी में मगरबी जोनल कौंसिल की 28वीं मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि अब मगरबी खित्ते की रियासतों के माबेन किसी तरह का कोई तनाजा नहीं रह गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जोनल कौंसिलें तनाजात के तस्वीर के फॉर्म से आगे बढ़कर अब अवामी बहबूद की स्कीमों पर अमल दरामद की निगरानी के प्लेटफार्म बन गई हैं। जनाब अमित शाह ने कहा कि आज की मीटिंग में जिन मामलात पर तबादला ख्याल किया गया वो सभी निगरानी से मुतालिक हैं। उन्होंने कहा कि जोनल कौंसिल में दरियाओं के मामले पर रियासतों के दरमियान कई तनाजात भी हल कर लिए गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गोवा में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब के दौरान गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुरवकार पुलिस परचम पेश किया। जनाब अमित शाह ने शहरियों और सयाहों को फौरी इमदाद फराहम करने की खातिर 12 जुबानों में साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 के लिए एआई पर मबनी वॉइस असिस्टेंट का आगाज भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने गोवा पुलिस की खिदमात पेशावराना सलाहियत दिलेरी और डिसिप्लिन के लिए उसकी सताइश की। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने आज कहा कि

0: मरकज ने सभी तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी रिफिल बुकिंग के 25 दिन के नजरसानीशुदा वक्फे को शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसा तौर पर फौरी नाफिज करें। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोपी ने कहा कि एलपीजी सप्लाई की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और रिफिल बैक लॉग में नुमाया कमी आई है। वहीं मरकज ने इस बारे में आयद पाबंदी में नरमी की है। उन्होंने कहा कि शहरी और देही जुमरे से कतई नजर अब सभी घरेलू एलपीजी सार्फीन 25 दिन के वक्फे के बाद ही गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मशरक वस्ता में जंग की वजह से एलपीजी सप्लाई पर दबाव के सबब शहरी इलाकों में रिफिल बुकिंग का वक्फा 25 दिन और देही इलाकों में 45 दिन कर दिया गया था। इंतखाबी कमीशन ने आसाम के नागांव लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाबात का आज ऐलान कर दिया है। वहीं इंतखाबी कमीशन ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की दो दो असेंबली सीटों और पुदुचेरी की एक सीट के लिए जिमनी असेंबली इंतखाबात का भी ऐलान किया है। कमीशन ने कहा है कि तमिलनाडु के मदुरांतकम और धरमपुरम सीटों, मगरबी बंगाल की राजीनगर और नंदीग्राम और पुदुचेरी की थंडाचार्य डे असेंबली सीटों पर जिमनी इंतखाबात होंगे। लोकसभा और असेंबली जिमनी इंतखाब दोनों के लिए नोटिफिकेशन बुध के रोज जारी किया जाएगा। 16 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। रायदही 6 अक्टूबर को होगी जबकि वोटों की गिनती अगले महीने की 9 तारीख को होगी। बिहार में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। कई मकामात पर गंगा और कई दीगर बड़े दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं जिससे रियासत के वसी इलाके मुतासिर हुए हैं। अब तक 29 लाख से ज्यादा लोगों पर सैलाब का असर पड़ा है। पैरा तीर अंदाजी की मौजूदा आलमी चैंपियन शीतल देवी ने आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे मरहले के तीसरे दिन खवातीन के कंपाउंड इंफरादी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए तमगा यकीनी बना लिया है। ऑल इंडिया सेमीफाइनल में बाजों से महरूम जुम्मू की शीतल देवी ने सरिता को 143 के मुकाबले 145 से शिकस्त दी और सोने के तमगे के लिए होने वाले फाइनल मुकाबले में पहुंच गई। फाइनल में शीतल देवी का मुकाबला कजाकिस्तान के आईजादा सैदान से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल ने 1,10,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वडोदरा के मुकाम पर 35,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जोनल कौंसिलें तरक्की और अवामी बहबूद का अहम वसीला बन गई हैं। उन्होंने गोवा पुलिस को सदर जमहूरिया का पुलिस परचम भी पेश किया। एलपीजी का अगला सिलेंडर बुक करने का 25 दिन का वक्फा अब शहरी और देही दोनों इलाकों के लिए अक्सर रहेगा और अहमदाबाद में आलमी तीर अंदाजी पैरा सीरीज में शीतल देवी खवातीन के कंपाउंड इंफरादी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई हैं और भारत को तमगा मिलना तय है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। फरमाइश फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तामीर इरशाद के बाकी नगमे हैं।

पसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

समीर आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में बैराग फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे। नगमा निगारानंद बख्शी और मौसीकार कल्याण जी आनंद जी फरमाइश आप सबके लिए मौसूरी बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम कारमारकर सुनीता कारमारकर हार्दिक कारमारकर नागचुंद्रेड़ रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब अब्दुल हक डावर जियाल हक डावर और ये फरमाइश हमें मौसूल हुई सुशांत प्रिया झा या मास्टर नवेश कुमार लड्डू कुमारी टिम्बा मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से गावरा थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवी जसी सीता गीता इम्तियाज इमाम आतिश ताहिर परवेज आतिश डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा आतिश रेडियो सर्कल बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से पानीपत से आशा गुगलानी संदीप गुगलानी और श्रावण गांव फराना से हिजार से राजकुमार दुद्दी पुष्पेंद्र कुमार दुद्दी प्रमोद कुमार दुद्दी ताज मंजिल अक्र बाजार खंडवा से मोहम्मद रफी पवार बेनजीर कोदर मोहम्मद हसनैन पवार गांधी रोड गंज डुडवारा से मोहम्मद अजीम मोहम्मद जावेद मुन्ने सलमानी मोहम्मद अनीस मोहाल मोहम्मद दानिश मोहाल मोहम्मद रफीक पवार बाजार फैश गांव महाराष्ट्र से फरमाइश आई है सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंचन सुनार कुसुम और सरोज सुनार नबी हसन अब्बासी नवेद सुहेल अब्बासी अनम यशफ अब्बासी महाराजा दरवाजा एटा से ये फरमाइश हमें साल करती है टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे रमताई डोंगर दिवे

हमेशा डोंगरे देवी और उनके साथ घर के और भी दोस्त अहबाब साथी छिपकवानी खटवा से मोहम्मद यूनुस खत्री मोहम्मद सादिक खत्री अयूब खत्री वर्ल्ड टाउन करनाल से सुधीर नूतन सुनीता जैन सुनीता शर्मा और ये फरमाइश हमें इस साल की है कुलावरी दादाजी मार्ग खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद हसनैन हसु बाबा साफिया अरहान खोखर और समीन ये फरमाइश पश्चिम थोक गंज डुडवारा से मौसूल होती है मास्टर अली मिर्जा सिद्दीकी मास्टर मनोहर हुसैन अंसारी फैजुल अलीम सिद्दीकी किशन सबकाल किशन सबकाल आशा सबकाल सोनिया विशाल सबकाल शास्त्री नगर बीडी शहर से खिराला शरीफ जिला खंडवा से सुल्ताना माइनूर सुल्ताना मोहम्मद और समीन ये फरमाइश हमें इस साल करते हैं डॉक्टर शबन अनवार डॉक्टर दबीर उल हसन और बेगम शबन अनवार भुवन प्रकाश गौतम अमीर खुसरो रोड गंज डुडवारा से जगदीश जोई पूजा पायजोरी काटला बंदरगाह कच्छ से फरमाइश साल की है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा बंदे प्रदेश से आनंद जोशी तनुज जोशी फाल्गुनी जोशी और ये फरमाइश हमें इस साल की है इनके नाम इस तरह से हैं उत्तर दिल्ली से बुधराज खोरवाल कमला रानी वरुण प्रकाश गीतिका खोरवाल राहुल मनोहर सल्ला मनोहर मेरी प्यारी शाहनगर यवतमाल से अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाशपुर माली दीपक माली और वैदिका फूल माली ठीक है मध्य प्रदेश से शबनम अक्रम और दोनों बच्चे उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमलानी भानु प्रकाश ये फरमाइश भाटापारा के बच कामल मोतीलाल और बसंत भिरकिया में मौसूल हुई आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौर तन्मय पूर्वी गौर सुयश आशीष गौड़ मोहम्मद कासिम मोहम्मद अनीफ पेंटर बाबू खत्री कॉलोनी खंडवा से गांधीग्राम गुजरात से परमवीर सोनी करावती सोनी और प्रथम सोनी ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा और घर के दीगर दो अफराद है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पालेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये फरमाइश हमें मौसूल हुई कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमकार गायकवाड़ ये फरमाइश हमें भेजी है नोहर जिला हनुमानगढ़ स्थान से नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमांशु सुथार ने जफर मौजम शेख फलक तबसम शेख और बेबी अलिशवा शेख रघुवीर नगर दिल्ली से ये फरमाइश हम इरसाल करते हैं राजधानी रायपुर से नीलू में एक डॉक्टर वंदना कुमार बिट्टू कुमार नंदा बोड़खे उत्तम जमदाड़ी शाहजी बोड़खे हिंगोली महाराष्ट्र से फरमाइश इरसाल हुई है इरसाल की गई है बल्कि जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना उमा राज और दिव्या भारती असिया भी मंसूरी अमीरा भी मंसूरी रफीक मंसूरी पालदना का इंदौर मध्य प्रदेश से तस्नीम अहमद फारूकी मोहनपुर कमाल गंज फारूकाबाद से फरमाइश इस साल कर दी है नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर निर्मला नावकर विशाल नावकर मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले सोपानताय आशीष मोहिकर ऐसे में प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं दिल अपना और प्रीत प्राई फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ हसरत जयपुरी ने बोलो कलम मत किया मौसीकी सजाया है शंकर जय किशन ने और फरमाइश आप सब की जानिब से सौराष्ट्र राजकोट से जुली जगदीश गुजराती जनीश गुजराती और लड्डू कुमारी नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान सबिया जुबैर अंजुमन आरा शेरवानी स्कूल गंजवाड़ा से आफ्ताब अहमद अंसारी रियाज अहमद अंसारी अनवर मास्टर

0: ადამიანის ძინავის და ფრანჩი ფილმი და ყურმა მი პროგრამ და მე შადო ხატმ მოტაი. ია კაშმარია აბსოლუტურად ორდოს თავის კეშრია. ლიზამენა პეშე პროგრამ სურხიომე.
1: სურხიომე. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
2: नौवां बेंगलुरु स्पेस एक्सपो BSX 2026 7 से 9 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, जिसका थीम है हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस इनोवेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026 में

0: कहा कि नासा ने आधिकारिक तौर पर इसरो को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
1: India is a proud signatory of the Artemis Accords, and NASA has officially invited ISRO to join us in the moon base program. Make no mistake, we're going back to the moon, and we want India by our side on the lunar surface. The moon may be our destination, but the engine of this journey is ground-level innovation, right here in our labs, startups, and commercial markets. India's bold space sector reforms ignited a commercial awakening.
0: इसमें जो चर्चा हो रही है उसमें स्पेस इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। वर्तमान आकार और लक्ष्य बीएसएक्स के अनुसार भारत का स्पेस सेक्टर लगभग 8.4 बिलियन का है और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में इसकी हिस्सेदारी करीब 2-3% है और 2033 तक इसे लगभग 44 बिलियन डॉलर तक ले जाने और करीब 11 बिलियन एक्सपोर्ट्स हासिल करने का लक्ष्य माना गया है। पर प्रश्न जनरल भट्ट यहां पे ये है कि क्या भारत 8-10% ग्लोबल स्पेस मार्केट शेयर हासिल कर सकता है?
2: मेरा जवाब ये होगा कि 8-10 नहीं हो सके, और अगर सब चीजें ठीक से चलेंगी तो ये 10 से ज्यादा भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आगे आ रही हैं रॉकेट लॉन्च में, सैटेलाइट्स में और एप्लीकेशंस में, मेरा तो ये विश्वास है कि ये 10% फिसलने से भी ज्यादा बढ़ेगा।
0: हम इसरो की बात यहाँ पे करते हैं। इसरो और इंडस्ट्री ने साथ मिलकर, अभी आपने प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की, इसरो को R&D स्ट्रेटेजिक मिशन और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का भी नेतृत्व हासिल है, जबकि रूटीन मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल एक्टिविटी में प्राइवेट इंडस्ट्री की भूमिका बढ़ रही है। आपने भी अभी चर्चा की कि उसकी भूमिका और भी अधिक होने वाली है। प्राइवेट पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में?
2: भारत की अगर स्पेस का इतिहास देखा जाए तो जब से इसरो बना और तब से 2020 तक सिर्फ इसरो ही सब स्पेस एक्टिविटीज में भारत में लीड कर रहा था, चाहे वो लॉन्च व्हीकल बनाना हो, चाहे वो सैटेलाइट्स करना हो, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, ये इसरो के ही द्वारा किया जाता था। हाँ, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अपने सब असेंबली और कंपोनेंट्स के वेंडर्स के तरीके से इस्तेमाल करते थे, पर प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता। 2020 में हमारी सरकार ने यह निश्चय लिया कि अब समय आ गया है जबकि प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस में सारी एक्टिविटीज करने की अनुमति दी जाए, और इस डिक्लेरेशन के बाद 2023 में नई स्पेस पॉलिसी बनाई गई जिसमें कि इसरो का एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इन स्पेस, NSIL, जिसका मतलब है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसरो की पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये मतलब उनका कमर्शियल काम करने के लिए, और साथ ही नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, जिसका मतलब प्राइवेट सेक्टर, इन सब के रोल काम को डिफाइन किया गया और उसमें ये कहा गया कि इसरो आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लैनेटरी साइंस यानी कि मंगलयान, शुक्रयान और ऐसे मिशन, गगनयान जैसी गगन यात्रियों को भेजना, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, चांद में जाना, ऐसी कार्रवाइयां इसरो करेगा, और जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, जो काबिलियत जिनको कमर्शियल करना है, उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। तो जैसे कि इसरो के पुराने चेयरमैन के शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं तो उनका कहना था कि स्पेस जो कि सिर्फ इसरो लीड करता था, अब स्पेस एंटरप्राइज बन गया है, और स्पेस एंटरप्राइज में कौन कौन है लीड में? इसरो, साथ में एकेडमिया, साथ में स्टार्टअप्स, साथ में प्राइवेट सेक्टर, ये सब मिलकर अब आगे के स्पेस को आगे बढ़ाएंगे। और ये एक जरूरी भी इसलिए हो गया क्योंकि सैटेलाइट बनाने की जरूरत, एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ इसरो में न सीमित करके इसको और बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर को पूरा खोल दिया गया।
0: जनरल भट्ट, 2026 तक भारत में लगभग 400 से अधिक प्राइवेट स्पेस कंपनीज और स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम विकसित हो चुका है। लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट की बात आपने की, प्रोपल्शन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें इनमें समावेशित हैं। तो लॉन्च इकोनॉमी, अभी आपने भी चर्चा की लॉन्च इकोनॉमी की, आपने बात की, और एक तरह से भारत को लॉन्च प्रोवाइडर से भी आगे जाना होगा लॉन्च इकोनॉमी बनने के लिए। पीएसएलवी LVM3 की विश्वसनीयता भारत की ताकत है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगला अवसर लो कॉस्ट लॉन्च, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स और हाई लॉन्च इसके इकोसिस्टम में है, कैसे देखते हैं? लक्ष्य केवल दूसरे देशों को सैटेलाइट लॉन्च करना ही नहीं बल्कि ग्लोबल

0: स्पेस लॉजिस्टिक्स मार्केट में भी बड़ा हिस्सा हासिल करना होना चाहिए, कैसे देखते हैं इसे आप?
1: तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लॉन्च इकोनॉमी नहीं, मतलब इतनी अहम नहीं है। क्यों अहम नहीं है? क्योंकि जो पूरा ओवरऑल स्पेस सेक्टर की इकोनॉमी में है उसमें लॉन्च की परसेंटेज बहुत ही कम है, यानी कि लॉन्च से जो पैसा मिलता है वो और चीजों के वनस्पत, एप्लीकेशन के वनस्पत काफी कम है। ज्यादा पैसा, ज्यादा कमाई सैटेलाइट से डेटा जो आता है उसकी एप्लीकेशन में है, न कि लॉन्च व्हीकल में। पर हाँ, अगर किसी भी देश को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का हिस्सा बनना है तो उनके पास लॉन्च की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और हम गर्व से कह सकते हैं कि इसरो के होने की वजह से हमारे पास पीएसएलवी, एसएसएलवी और एलवीएम 3 होने के कारण ये काबिलियत है। पर एक चीज और हुई है दुनिया में और वो है रीयूजेबल रॉकेट्स। आज के दिन में रीयूजेबल रॉकेट्स ने स्पेस लॉन्च की कीमत को काफी कम कर दिया है, और उसमें एक दो कंपनियां आई हैं दुनिया में जिसमें से लीड कंपनी स्पेसएक्स है, और ज्यादातर दुनिया की सैटेलाइट आज उनसे लॉन्च हो रही है। तो फ्यूचर में अगर हमको लॉन्च में ग्लोबल पार्टनर बनना है तो हमको सिर्फ एलवीएम 3 तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, हमको रीयूजेबल रॉकेट बनाना है, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये ऐसा भी।
0: अभी आपने वो लॉन्च इकोनॉमी की आपने बात की कि सिर्फ लॉन्च इकोनॉमी तक ही नहीं सीमित रहना है, इससे आगे भी बढ़ना है। तो भारत की अगली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रॉकेट्स होंगे या सैटेलाइट्स होंगे या स्पेस डेटा आधारित सर्विसेज होंगे, इसके बारे में इसरो या ऐसी एजेंसीज और क्या आगे काम कर रही है, आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे इस पे?
1: देखिए, अगर आज के दिन में भी ग्लोबल मार्केट देखा जाए, पूरा की वही जितना भी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा पैसा है सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके अलावा लोकेशन बेस्ड सर्विसेज पर, और सैटेलाइट्स के डेटा के एप्लीकेशंस जो कि एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, हर एक अनेक जगह उनका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास एक फायदा है कि जैसे कि जब आईटी रेवोल्यूशन हुआ तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारी ईस्टर्न एजुकेशन में इतने स्टूडेंट्स हैं कि हम उस बूम का इस्तेमाल कर पाए। तो इसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि एप्लीकेशंस ही भारत की स्ट्रेंथ होगी। ये जरूरी है कि लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट बनाने की काबिलियत तो होनी होनी है, पर जहां पैसा है, जहां पर ज्यादा ग्लोबल मार्केट में हम कॉम्पिटेटिव होंगे, वो है मल्टीपल एप्लीकेशन।
0: अभी आपने थोड़ी देर पहले गगनयान, चंद्रयान की बात की, तो गगनयान के आगे स्पेस स्टेशंस, लूनर एक्सप्लोरेशन और डीप स्पेस मिशंस भारत के लिए केवल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि नई इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज के तौर पर भी उभर कर आई हैं, और हाईटेक सप्लाई चेन्स के भी काफी अवसर हैं यहाँ पे। अभी ये बीएसएक्स में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और डी स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी प्रमुख विषय बनाया गया है, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, एक तो बहुत ही एक अच्छी चीज हुई है कि भारत की सरकार ने और इसरो ने ये डिफाइन किया है कि 2040 तक हमने क्या करना है, और उसमें सबसे पहले अपने गगनयात्री मतलब ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेजना है, जिसकी शुरुआत इस साल के आखिरी में होगी, जब हो सकता है पहला रोबो गगनयात्री जाए, 2-3 अनक्रूड फ्लाइट होने के बाद में क्रूड फ्लाइट आएंगी, और हो सकता है अगले साल के आखिर और या 2028 तक हमारा पहला गगनयात्री स्पेस में होगा। पर बहुत अहम है कि साथ ही भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2028 और 2035 के बीच में बनेगा, और 2040 में भारत से लॉन्च हुई हुई लॉन्च व्हीकल्स में पहला इंडियन चांद पे जाएगा। नाउ ये सब जो मिशंस हैं, ये सिर्फ साइंटिफिक मिशंस नहीं है, पूरी दुनिया में ये फ्यूचर में अगर देखा जाता है स्पेस का, और ये कहा जाता है कि अगले 30-40-50 साल में स्पेस क्या होगा, तो जैसे आप कह रहे हैं अर्थ की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्पेस में बहुत सारी एक्टिविटी होंगी, वो होंगी एस्ट्रॉइड माइनिंग की, वो होंगी पावर एनर्जी को नीचे, सोलर एनर्जी को नीचे अर्थ में भेजने के लिए, डाटा सेंटर्स के स्पेस में बनने के लिए। तो बहुत सी जो इकोनॉमी की एक्टिविटीज हैं, अर्थ के लिए जो एक्टिविटीज हैं, वो स्पेस में की जाएंगी, और उसको करने के लिए क्षमताएं अभी से शुरू हो जाएंगी, और उसी में पहला गगनयात्री जाना है, अंतरिक्ष स्टेशन बनना है और चांद में जाना है, उसके आगे चांद में कॉलोनी और उससे आगे मंगल पे जाना। ये सब एक्टिविटीज सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए नहीं बल्कि नई फ्यूचर की इकोनॉमी का हिस्सा रहने के लिए, और जैसे इसरो ने हमें आज हाई टेबल पे रखा हुआ है स्पेस के, हम कुछ ही देशों में से हैं जिन्होंने साउथ पोल

0: पर चांद के लैंड किया है। तो ये काबिलियत इसरो हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा, बनाता रहेगा।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देश को अपनी सॉवरेनिटी बरकरार रखने और उसे और मजबूत करने का पूरा हक है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। और तो ग्लोबल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें जनरल भट्ट, तो भारत को यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों के साथ टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन्स और ज्वाइंट मिशन में सहयोग करते हुए देखा जा सकता है। हाल में ही कई देशों के साथ हमने ऐसे पैक्ट और ट्रीटी और डील भी किए हैं। और बीएसएक्स 2026 में यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ डेडिकेटेड इंटरनेशनल सेशंस भी रखे गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे?
0: देखिए, स्पेस की एक डोमेन है दुनिया में जहां की हमेशा ही ग्लोबल कोऑपरेशन रहा है। और अगर हम अपने स्पेस के इतिहास को देखें तो जब पहला स्पेस रॉकेट हिंदुस्तान में भेजा था, वो स्पेस रॉकेट हमको अमेरिका ने दिया था। उसको थुम्बा तक पहुंचाने की काम एक रशियन हेलीकॉप्टर ने किया था और उसके ऊपर जो रॉकेट साउंडिंग का जो वो था वो फ्रांस से आया था
1: जी।
0: तो हमारी भारत की फ्रांस के साथ में, जापान के साथ में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में और अमेरिका के साथ में रशिया के साथ में भी हमेशा स्पेस में कॉपरेशन रहा है। और दूसरा, आज के दिन में जैसे बीएसएक्स में इतने विदेशी देश इसलिए आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ क्षमता और काबिलियत है। यहाँ ऐसे को प्रोडक्शंस, ऐसे को फ्यूचर के लिए ऐसे चीजें, कार्रवाइयां हमारे स्टार्टअप्स और हमारी कंपनियों के साथ कर सकती हैं जिससे कि ग्लोबल पार्टनरशिप्स बन पाए। और इसरो ने पहले से शुरू किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब किसी देश में जाते हैं तो स्पेस रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा होता है और ये कोऑपरेशन दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है।
1: जनरल भट्ट, अभी आपने काफी उभरते हुए क्षेत्रों की बात की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि कोई भी आज के डेट में स्पेस वो अनछुआ नहीं रह सकता है और होना भी नहीं चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें या कुछ और भी ऐसे जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं इसकी बात करें, तो इसमें स्पेस मिशन या स्पेस इकोनॉमी या हमारा जो प्रोग्राम है स्पेस का, वो कैसे किस हद तक मदद कर सकता है?
0: देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जिसने सबसे बड़ा चेंज लाया वो है मिनिएचराइजेशन। सैटेलाइट जो कि एक बड़ी कोठी के बराबर होती थी, छोटी इतनी एक फ्रिज से भी छोटी हो जाती है
1: जी।
0: जो कि एक बहुत मिनिएचराइजेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। साथ ही एआई और एमएल का इस्तेमाल काफी आगे तक।
1: जनरल भट्ट, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: समय आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं और द सर्विस की नशरियात। जैसा मैंने पेश है कव्वालियां, आइए मैं था फरीदी कव्वाल और हम नवाओं से नातिया कव्वाली सुनते हैं।

0: अमवात चितवन में हुई है, जबकि नवाल पारसी ईस्ट में 222 अफराद की मौत हुई है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने कल कहा कि मरकज ने सभी तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी रिफिल बुकिंग के 25 दिन के नजरसानी शुदा वक्फे को शहरी और देही दोनों इलाकों में यकसां तौर पर फौरी नाफिज करें। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोपी ने कहा कि एलपीजी सप्लाई की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और रिफिल बैकलॉग में नुमाया कमी आई है। वहीं मरकज ने इस बारे में आयत पाबंदी में नरमी की है। उन्होंने कहा कि शहरी और देही जुमरे से कतए नजर अब सभी घरेलू एलपीजी सारिफीन 25 दिन के वक्फे के बाद ही गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। मशरिक वस्ता में जंग की वजह से एलपीजी सप्लाई पर दबाव के सबब शहरी इलाकों में रिफिल बुकिंग का वक्फा 25 दिन और देही इलाकों में 45 दिन कर दिया गया था। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इन इतलात को गलत करार दिया है कि इसरो की निजकारी की जा रही है। कल बेंगलुरु में सीआईआई के जेर एहतमाम एक नुमाइश के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए इसरो के सरबराह ने कहा कि इसरो एक सरकारी इदारा है और इसे प्राइवेट हाथों में देने का सवाल ही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी को हिदायत दी है कि कौमी राजधानी में सत्य निकेतन के मकाम पर एक इमारत के ढह जाने के वाकये की आला तरीन एग्जीक्यूटिव सतह पर इंक्वायरी कराई जाए और इस बात की भी जानकारी दी जाए कि आया ये इमारत तामीर करने के लिए मंजूरी ली गई थी या नहीं। पैरा तीरंदाजी की मौजूदा आलमी चैंपियन शीतल देवी ने कल अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे मरहले के तीसरे दिन खवातीन के कंपाउंड इन्फरादी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए तमगा यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के अपने हम मनसब जेवियर बेटिल के साथ दो तरफा बातचीत की और कहा कि आलमी गैर यकीनी के हालात में दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तल्लुकात हैं। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज के रास्ते आर्जी महफूज राहदारी के बारे में ओमान के साथ बातचीत हतमी मरहले में पहुंच गई है। जनूबी लबनान में इसराइल के हमलों में 12 अफराद मारे गए हैं और अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में शीतल देवी खवातीन के कंपाउंड इन्फरादी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई हैं और भारत को तमगा मिलना तय है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, सुनिए आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। जिसमेना पेश है क्लासिकी मौसीकी। इस प्रोग्राम के तहत सुदीप्त शर्मा का सितार पर बजाया राग खमाज सुनते हैं।

शर्मा का सितार पर बजाया राग खमाज सामिन आप सुना। इसके साथ ही क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। यह सामिन पेश है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब। तमाम सामिन की खिदमत में एक बार फिर अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब।

इसके और तरफ मैं हूँ उनकी आवाजों में अजीब लड़की फिल्म का दुगन आप सुन रहे थे। आइए अब फैशन फिल्म का दुगना आप सबकी नजर गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाजों में।

सुमेन चार मीनार फिल्म में आपने सुना आशा भोसले की आवाज में ये नगमा, आइए अब मोहम्मद रफी का गाया हुआ नगमा, फिल्म है खोटा पैसा।

आरजू फिल्म की ये गीत आपने सुना और लीजिए अब आपको सुना रहे हैं मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म का गीत आवाज मोहम्मद रफी की है।

लता मंगेशकर की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीत सुनहरे होता है यहीं संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दुबई में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पारदर्शी नीतियां, सुशासन और निवेश के अनुकूल माहौल के साथ विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की मजबूत सड़क और रेल संपर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कृषि उद्योग, सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए ताकि वह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शा सके। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरान ने अमरीका को चेतावनी दी है कि अगर उसके ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी तेल और गैस प्रतिष्ठानों समेत ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की इजाजा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Defence Acquisition Council (DAC) has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN Recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war fighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multi-purpose jammer and installing Defence Forces secure access card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN Recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu, Saqlain Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC, covering 326 route kilometers. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport yesterday, Railway Minister Ashwini Vaishnaw emphasized that the Eastern and WDFC will serve as crucial backbone for the country's transport and logistics sector. The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand North, New Makarpura, New Umargaon and New JNPT Mumbai. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. UN Home Minister Amit Shah yesterday chaired the 28th meeting of Western Zonal Council at Panaji in Goa. Addressing the gathering, Mr. Shah said there are no longer any disputes among the states of the Western region, which is a major achievement. He emphasized that the Zonal Councils have evolved from forums for dispute resolution into platforms for monitoring the implementation of public welfare schemes. Mr. Shah said that all the issues discussed in yesterday's meeting were related to monitoring. He noted that several disputes between states over rivers have also been resolved in the Zonal Council. Deputy Prime Minister of Luxembourg, Xavier Bettel, today met Commerce and Industry Minister Piyush Goyal in New Delhi. In a social media post,

ในฐานะ

amanah.

0: इसके साथ ही आज का नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का ये कार्यक्रम होता है यही संपन्न। ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए अब सुनिए समाचार। रात्रि के 3 बजने वाले हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाये। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंकिंग क्षेत्र के हित में संवाद और आपसी सहमति के जरिए मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के

0: 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 7 से 9 सितम्बर तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी तथा वीडियो विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: न्यूज रेड बाय आर एस राघु। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी हैज क्लियर्ड कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ ओवर 1,10,000 crore रूपीज फॉर द डिफेंस फोर्सेज। Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
2: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN Reiki vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war fighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multi-purpose jammer and installing Defence Forces secure access card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN Reiki vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones and inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC, covering 326 kilometers. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport yesterday, Railway Minister Ashwini Vaishnav emphasized that the Eastern and WDFCs will serve as a crucial backbone for the country's transport and logistics sector. Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand, North New Makarpura, New Umargaon and New JNPT Mumbai. The Prime Minister will also lay the foundation stone for 3 railway projects costing more than 9,700 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah yesterday chaired the 28th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa. Addressing the gathering, Mr. Shah said there are no longer any disputes among the states of the Western region, which is a major achievement. He emphasized that the zonal councils have evolved from forums for dispute resolution into platforms for monitoring the implementation of public welfare schemes. Mr. Shah said that all the issues discussed in yesterday's meeting were related to monitoring. He noted that several disputes between states over rivers have

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 3:10 और 10 सेकेंड। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गजल और गीत का।

AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल और गीत। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बजने को है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।

0: साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत अभी आप सुनेंगे सुधा रघुरमन द्वारा गाया राग कंबोजी।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। 5:20 से आप देशभक्ति गीत का आनंद उठा सकते हैं।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नकुल मल्होत्रा द्वारा गाया राग ललित। सुबह 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना।

0: सुबह के 5 बजने को है ये सुनते हैं समाचार।
1: गुरु रामदास सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बला शरण सबल।

कलन भगत फलन कान कुवर नह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बरह जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार ही ये तार तज बिकार मन गए अंदर सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो हमें अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाद बिखा बिख खाई माया मोह परम पूले सत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राख

अरुषण परस गुरु जनन मरण दुख सुख दुख सन्दी मोर अरसं कुरसं तदठी सती पातुष मल जनम जनम दी सजन सच्चा पातिश हुसिद संद जिस पास बैठिया सोहिया सब नांदा सजन

ਸਿਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ।

0: feeling.
1: जन्म जन्म के लागे दुख मोरता लग संगत साध सवारी जाओ कंचन बसंतर काया मल काटे कटता उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर और तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हम मारी हर हर आगम आगाद बोधा अपरंपर पुरख अपारी जन का कृपा करहु जग जीवन जन नानक पाद सवारी हर हर आगम आगाद बोधा अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करहु जग जीवन जन नानक पाद सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमाश्री महला चौथा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दोहर सोह संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख

ਤਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਵਾਹੇ।